दोस्तों, ताजी हवा में सांस लेना आत्मा के लिए औषधि के समान होता है। ताजी हवा में गहरी सांस लेने से ना केवल फेफड़े भर जाते हैं बल्कि मन भी शांति से भर जाता है और खुशियां ही खुशियां चारों ओर छा जाती है। तो क्यों ना हम भी ताजी हवा में सांस लें।

दोस्तों, बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जो केवल संगीत ही नहीं बल्कि जीवन जीने के गहरे और प्रेरणादायक सबक भी सिखाती है। ये हमें अहंकार त्यागने और हमेशा मधुर स्वभाव रखने की प्रेरणा देती है। बांसुरी के भीतर कोई गांठ नहीं होती। ये सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, द्वेष या बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। जब आप बांसुरी में फूंक मारते हैं ना, तो वो खुद को पूरी तरह से खाली कर देती है। इसका अर्थ है कि जब तक हम अपने दिमाग से पुराने विचारों का बोझ और अहंकार खाली नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान और सफलता रूपी संगीत जीवन में नहीं उतर सकता। बांसुरी में जितने भी छेद होते हैं, वे चाकू या गर्म लोहे से छेद कर बनाए जाते हैं, यानी उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब उससे धुन निकलती है ना, तो वो हमेशा मीठी और सुरीली होती है। ये सिखाती है कि चाहे कितने भी दुख या परेशानियां क्यों ना आए, अपनी बोली और कर्म में हमेशा मिठास बनाए रखें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे कार्यक्रम का विवरण। अर्पण कार्यक्रम का समय रहेगा 6:10, श्री रामचरित मानस आप सुनते हैं 6:45 पर। गोल्ड सुप्रभात ये कार्यक्रम होगा 7:10 पर। म्यूजिकल दिल लगी का समय रहता है 8:45 और 9:10। दिल का मेलबॉक्स रिक्वेस्ट बेस्ड ये कार्यक्रम होगा 10:30 पर। तस्वीर ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 11:25 पर। एक कदम बुजुर्गों की ओर स्पेशल प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स आप सुनते हैं 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 1:10 पर।

आप सुनते हैं 4:20 पर पानी पर लिखी कहानी। उस रात वो अकेली लड़की। स्वर और आलेख कुसुमलता, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती। सांझ ढले कार्यक्रम सुनिएगा 7:25 पर।

हर सिंगार यह कार्यक्रम पेश किया जाएगा 10:23 पर। रात 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा। गीत मेरे मनमीत यह कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:40 पर। यह था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त

0: करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
2: I know that the paper leak is not a normal issue. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife, Geetanjali Angmo, and senior leaders of APEC's body of Leh Ladakh were also present at the hospital. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Meanwhile, Prime Minister Modi has urged Mr. Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. The Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of Officer Anu Grover Baliga at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear the cases under the Public Examinations Act along with the connected offences. The move is aimed at ensuring the expeditious adjudication of cases related to unfair practices in public examinations. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in the examination paper leaks. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. today till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Jhandewalan, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jorbagh, and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The centre has appointed secretaries in different ministries and departments. Vineet Joshi, who is presently Secretary, Higher Education in Ministry of Education, has been appointed as the Secretary, Ministry of Panchayati Raj. Naresh Pal Gangwar will be the new Secretary, Higher Education. T.K. Anil Kumar will be the Secretary, School Education and Literacy. The Appointment Committee of the Cabinet approved these appointments. And that is the end of this news bulletin.

भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

साथियों, जीवन की राहें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में हरि का नाम हो तो हर कदम आसान लगने लगता है। संसार की दौड़ में हम यकीनन बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो शांति ईश्वर के चरणों में बैठकर मिलती है वो हमें कहीं और नहीं मिलती।

साथियों, समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं और परिस्थितियां भी बदलती हैं, पर जो नहीं बदलता वो है राधा कृष्ण का प्रेम। ऐसा प्रेम जो किसी शर्त का मोहताज नहीं, जो केवल अपनापन और समर्पण सिखाता है। 6:22 और 35 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

साथियों, कहते हैं कि धन तभी सार्थक है जब धर्म भी साथ हो, विशिष्टता तभी सार्थक है जब शिष्टता भी साथ हो, सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र भी शुद्ध हो, संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य भी उत्तम हो, और देव स्थान गमन तभी सार्थक है जब हमारे हृदय में भाव हो। शक्ति, भक्ति और श्रद्धा, इन सभी से परिपूर्ण ये है कार्यक्रम अर्पण। 6:30 और 50 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर अर्पण में आज आपका साथ दे रही हूँ। गोल्ड स्टूडियो से मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

6:39 पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। साथियों, तुलसीदास जी कहते हैं कि ना कर्म ना धर्म और ना ही कठिन साधना से, बल्कि केवल राम नाम के स्मरण से ही मनुष्य संसार रूपी सागर से पार हो जाता है।

साथियों, राम नाम के इस जाप को आइए इसी तरह जारी रखते हैं 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। 6:43 और 16 सेकंड अब समय हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय पाठ का। तो आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं रामचरितमानस के इस पाठ को।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कवीश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ वाण और धनुष शोभित हैं, उन रघुवंश नाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

नमामि रामम रघुवंश नाथम, इसी राम नाम का जाप और स्मरण किया हमने रामचरितमानस के इस सुंदर संगीतमय पाठ के जरिए। आज जो प्रसंग आपने सुना इसे अयोध्या कांड से लिया गया था। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। लेकिन कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है और आपसे यही अनुरोध है कि आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब हम जानेंगे देश और दुनिया का हाल समाचार बुलेटिन्स के जरिए। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन्स के बाद 7:10 पर आपसे एक बार फिर भेंट होगी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग,

0: जीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव बनाए गए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, Government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately. The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts.
2: मैंने fast-track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: The Prime Minister said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. He said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. The Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said that the court of Officer Anu Grover Baliga at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear cases under the Public Examinations Act along with connected offences. The move is aimed at ensuring the expeditious adjudication of cases related to unfair practices in public examinations. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife, Geetanjali Angmo, and senior leaders of APEC's body

जनाब, आज अगर सुबह की चाय में मिठास थोड़ी कम रह गई है या फिर टोस्ट थोड़ा ज़्यादा कुरकुरा हो गया है, तो ये इरिटेशन और ये झल्लाहट क्यों? हो सकता है कि ज़िंदगी आपको याद दिला रही हो कि स्वाद सिर्फ मिठास से नहीं बल्कि नज़रिए से भी आता है। दोस्त, जीवन का सबसे बड़ा जादू यही है कि ये हर दिन हमें एक और अवसर देता है सीखने का, मुस्कुराने का, माफ़ करने का और आगे बढ़ने का। तो आज का ये दिन शिकायतों की नहीं बल्कि संभावनाओं की डायरी बन सके, उसके लिए आज किसी से मुस्कुराकर मिलिए, किसी की हिम्मत बनिए और सबसे ज़रूरी बात, खुद पर विश्वास रखिए। 7:11:55 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

1952 में आई आइकॉनिक फिल्म बैजू बावरा से ये गाना था लता जी, रफ़ी साहब और शमशाद बेगम की अमर आवाज़ों में। और आवाज़ सिर्फ बोलने का ज़रिया नहीं होती दोस्त, बल्कि ये हमारी पहचान, हमारी फीलिंग्स और हमारे अस्तित्व की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति होती है। और आवाज़ की तो खूबसूरती भी यही है सबसे बड़ी, कि ये हमें जोड़ती है, दूरियों को कम करती है, रिश्तों में मजबूती लाने में मददगार साबित होती है और अकेलेपन में साथ का एहसास कराती है। इसीलिए 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड की आवाज़ रहती है आपके साथ 24 घंटे। तो फिर आज आगे आने वाले घंटों में कौन कौन से प्रोग्राम्स और कौन कौन सी आवाज़ें रहेंगी आपके साथ, ये सब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल मेरे सामने स्क्रीन पर है 1955 में आई फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का एक खूबसूरत गाना, और आवाज़ एक बार फिर से है शमशाद बेगम की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
6: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
5: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
6: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें, ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
5: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

जनाब, ऐसे ही मुस्कुराते हुए आपका आज का दिन आगे बढ़े अपने सफर पर, ऐसी हमारी कामना है यहाँ 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं मेट्रो से, तो फिर ज़रा न्यूज़ सुनकर बाहर निकलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो करंट सर्कमस्टांसिस हैं उसको ध्यान में रखते हुए 16-17 मेट्रो स्टेशंस आज भी बंद रहेंगे। तो प्लीज़ आप जो ट्रैफिक की रियल सिचुएशन है उसको ध्यान में रखकर बाहर निकलिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 7:25 और 57 सेकंड हो गए हैं। ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात, 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और ये रहेगा आपके साथ इसी तरह हमेशा मुस्कुराते हुए गाते हुए और गाते गुनगुनाते। बहुत सारे प्रोग्राम्स आज आपके साथ होंगे जिनमें आपके साथ रहेगा 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली का पहला सेगमेंट, जिसमें आपका साथ दूंगी मैं, और 9:10 पर इंदु पांडे होंगी आपके साथ म्यूजिकल दिल्ली के दूसरे सेगमेंट में और करेंगी बहुत सारी बातें। 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद, 11:25 पर तस्वीर में आज हम आपको महाराष्ट्र में खंडाला लेकर चलेंगे, 12:10 पर एक कदम बुजुर्गों की ओर, 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज अभिनेता मनोज कुमार के बारे में बात करेंगे, 2:30 से 3 दोपहर में आप सुनेंगे प्रोग्राम उन्नत किसान, जिसमें आज का विषय रहेगा पूसा संस्थान द्वारा विकसित आम की उन्नत किस्में और उनकी विशेषताएं, और इसमें शामिल होंगे स्टूडियो से हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर निमिषा शर्मा, जो वैज्ञानिक हैं पूसा संस्थान नई दिल्ली में, और 5:10 पर आप सुनेंगे पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आज की कहानी रहेगी उस रात वो अकेली लड़की, 6:30 मार्केट मंत्रा, 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा, 10:30 हर सिंगार, और 11:40 पर गीत मेरे मन मीत। और आज के मौसम का जिक्र करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हवा की गति करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, और ह्यूमिडिटी 86% के आसपास रहेगी। और एक और

खूबसूरत गाना आपको यहाँ भेंट करते हुए फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि इसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे और फिर न्यूज़ बुलेटिन के उस पार आपसे फिर मिलूंगी प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली में 8:45 पर। तो आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग द गोल्डन म्यूजिक।

नमस्कार सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहतनाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी तन्वी। आज के अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। सुबह के 7:30 हो चुके हैं तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यार भरे नगमे के साथ जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने।

0: फिल्म है द बर्निंग ट्रेन, बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमें याद दिलाता है कि यकीन है असली मालिक ईश्वर है और हम आप सिर्फ उस ईश्वर की एक रचना है। क्यों तन्वी?
1: Absolutely, such a brilliant song and it gives you hope. Yes, there is God and we should never feel hopeless or disappointed because yes, life is beautiful. Good morning to each and every listener of ours too, and you tune to Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. Well, Farhat has already informed you that this is our daily news magazine program Aaj Savere, and we have a lot in store for all of you till 8 a.m. So stay with us and enjoy the program. Today is 24th of July 2026 and it's also a Friday. So I would suggest live more, laugh more, enjoy. Who knows, कल हो ना हो।
0: बिल्कुल कल हो ना हो, इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मुख्य समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही

इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की औपचारिक वापसी यात्रा कराई जाएगी। बहुधा यात्रा उड़ीसा की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और भक्ति, समावेशिता और सामाजिक सद्भाव के शाश्वत संदेश को दर्शाती है।

0: the vendors to cook with care for the customers. He urged the vendors to adopt clean methods while cooking vegetables and use safe oil, store food properly, and stop using carcinogenic substances. He said that those who are handling food should undergo frequent health checks. He also said that the government has planned to roll out a healthy food street project, a model to be set up in 6 districts with standardized carts, uniforms and shared toilets and drinking water. Moving towards Delhi, what do you have, Farhat?
1: जी तन्वी, दो खबरें मेरे पास हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 महामारी के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर के परिजनों को वर्षों से लंबित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है।
0: And moving towards Bangalore, Karnataka Deputy Chief Minister Dr. G. Parmeshwar has said that the government has no dearth of funds to manage the drought situation effectively. Speaking to media persons in Bangalore, he said each MLA will be provided with 1 crore rupees and in addition 5 crore rupees is provided to every district to ensure adequate supply of drinking water. He also added that 329 crore rupees is already available in the personal deposit accounts with the district administration. And we have some more news from Bangalore itself. Karnataka Large and Medium Industries Minister M.B. Patil has informed that a 200-acre semiconductor park will come up at Queen City near Bangalore under Phase 1 and be operational by December this year. Speaking at the inaugural session of 15th Strategic Electronics Summit in the state capital, he said that 2 years ago, investment proposals worth 23,000 crore rupees were approved to set up the facilities under the semiconductor and advanced electronic system design and manufacturing sectors.
1: और तन्वी, अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। ये सेवा एक ही मोबाइल ऐप के जरिए कार, ऑटो और बाइक टैक्सी की सुविधा देगी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती को 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ शौचालय चित्र योजना में जनता की निरंतर भागीदारी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे जुड़े फास्टैग रिचार्ज पुरस्कार का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। और अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही अधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित करेगा। श्रोताओं, अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। आज मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान लगाया है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बारिश का दौर रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और कोलकाता की अगर बात करें तो वहां पर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
0: एंड चेन्नई, पार्टली देयर विल बी पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन और ब्रीफ शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 28 डिग्रीज व्हाइल द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज सेल्सियस। फॉर बेंगलुरु देयर विल बी पार्टली क्लाउडी स्काई विद द चांस ऑफ आइसोलेटेड लाइट शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस। एंड इन हैदराबाद देयर विल be partly cloudy sky with haze. The minimum temperature is expected to be around 25 degrees, while the maximum will be around 36 degrees.
1: और तन्वी, अब हम पलटेंगे इतिहास के कुछ पन्नों को। आज है 24 जुलाई 2026
0: एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, 24th ऑफ जुलाई। यस, बट टुडे इज इनकम टैक्स डे, दैट इज आयकर दिवस। लेट मी आस्क यू फरहत, हैव यू फाइल योर आईटीआर?
1: जी, सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ।
0: ओके, एंड आई एम प्रिटी लेट बिकॉज आई एम येट टू फाइल इट बिकॉज माई लास्ट डेट इज 31st of August। सो टुडे इज इनकम टैक्स Day, and let me remind each and every income tax person that you have to file your ITR by the end of either 31st of July or 31st of August. This day commemorates the introduction

0: of income tax in the country by Sir James Wilson in 1860. The first income tax was implemented in 1860 to compensate the British government for the losses incurred during the 1857 First War of Independence. The Income Tax Department celebrates this milestone to promote voluntary tax compliance and acknowledge taxpayers' contributions to national development.
1: और तन्वी हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि इस सोमवार को हमने अपने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा भी प्रसारित की थी, तो इससे जुड़े जो भी आप प्रश्न हैं, अगर आप दोबारा सुनना चाहते हो, किस तरह की समस्या आपको है आईटीआर भरने में, कि ये कब भरी जाएगी, कैसे भरी जाएगी, तो आप ये परिचर्चा सुन सकते हैं। आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
0: Wonderful. And there is one more day that we are celebrating today, and that is International Self-Care Day. So Farhat, we all take care of ourselves and we take care of our hygiene and what not, right?
1: बिल्कुल, अपना खास ख्याल रखेंगे अगर आप, तभी आप अपने आप को बेहतर और खूबसूरत महसूस कर सकते हैं.
0: True. It is observed annually on 24th of July to promote personal health habits 24 hours a day, 7 days a week. Self-care is any action that an individual takes to look after their own health based on the knowledge and information available to them. This practice can also occur in collaboration with healthcare professionals whenever needed. Actively managing your own health and well-being through self-care has numerous benefits, including better choice between healthcare options, better care for individual well-being, and also better value for governments and health systems worldwide.
1: तो अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आज ही के दिन 1999 में ब्रिटेन के लिवरपूल में प्रथम सार्वभौमिक महिला धर्म सभा का आयोजन किया गया।
0: In 1911, American explorer Hiram Bingham rediscovered Machu Picchu, the lost city of the Incas.
1: सन 2004 में इटली ने भारतीय पर्यटकों के लिए 7 वीजा कॉल सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया।
0: In 1923, the Treaty of Lausanne, the final treaty concluding World War I, was signed at Lausanne, Switzerland.
1: तन्वी, बाद सन 2005 की कोरियाई क्षेत्र को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए उत्तर और कोरिया के बीच आम सहमति बनी।
0: And in 1969, Apollo 11, the US spacecraft that had taken the first astronauts to the surface of the moon, safely returned to Earth.
1: और 2008 में एक बेहद दुखद घटना हुई। फ्रांस के ट्रिकेस्टेन परमाणु संयंत्र में हुए रिसाव से लगभग 100 व्यक्ति प्रभावित हुए। और अब आइए हम अपने आखिरी सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को।
0: Let's begin with the big name, and we are talking about Manoj Kumar. Yes, his real name is Hari Krishna Giri Goswami. I am not sure whether you are aware of this name, but you all definitely know Manoj Kumar, an Indian actor, director, screenwriter, lyricist, and editor who worked in Hindi cinema. He's regarded as one of the greatest and most accomplished actors of Indian cinema. And Manoj Kumar reminds us of the achievements of India. So let's just hear them out.
1: जी बिल्कुल।

मनोज कुमार ने लोगों को देशभक्ति की भावना का गहराई से एहसास कराया। मनोज ने शहीद जैसी कालजयी फिल्म में देश के इस अमर सपूत के किरदार को जीवंत करने की प्रेरणा दी थी।

पे हम भेंट। 1992 में मनोज कुमार को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मनोज कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फैशन के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा। तो क्यों ना सुन लेते हैं फिल्म क्रांति से उनका ये गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में।

मनोज कुमार ने वो कौन थे, हिमालय की गोद में गुमनाम, दो बदन, पत्थर के सनम, यादगार, शोर, सन्यासी, दस नंबरी और क्लर्क जैसी अच्छी फिल्मों में काम किया, तो क्यों ना फिल्म हिमालय की गोद में से ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: उनकी आखिरी फिल्म थी मैदान-ए-जंग। बतौर निर्देशक उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म जय हिंद 1999 में बनाई थी।
1: And the next person in our list is Amelia Earhart. Today is her birth anniversary. An American aviator and aviation pioneer who became one of the most celebrated figures of early flight. In 1928, she was the first female passenger to cross the Atlantic by airplane. In 1932, she became the first woman to make a non-stop solo transatlantic flight and was awarded the Distinguished Flying Cross for her achievement. She was one of the first aviators to promote commercial air travel, wrote best-selling books about her flying experiences, and helped found the 99s, an organization for female pilots.
0: और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था पंडित पन्नालाल घोष का। वास्तविक नाम था इनका अमूल ज्योति घोष। पंडित पन्नालाल ने को बांसुरी के मसीहा भी कहा जाता था। पन्नालाल जी ने कई फिल्मों में बांसुरी बजाई जो आज भी अद्वितीय है, जिनमें मुगले आजम, बसंत बहार, बसंत दुहाई, अनजान और आंदोलन जैसी कई प्रसिद्ध फिल्में शामिल हैं। और इसके संगीत के साथ पंडित पन्नालाल घोष का नाम भी जुड़ गया। तो आइए सुन लेते हैं मुगले आजम से ये गीत, जहाँ पर उनकी बांसुरी की धमक साफ सुनाई पड़ती है।

0: And today is the death anniversary of Sir James Chadwick, a British experimental physicist who received the Nobel Prize in Physics in 1935 for his discovery of the neutron. And it's also the birthday of Pankaj Advani, an Indian billiards and professional snooker player.
1: और भारतीय सिनेमा में हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार ने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा. बहुत सारी लोकप्रिय फिल्म इन्होंने हमें दी, जिसमें बिपाशा, जीवन तृष्णा, सागरिका शामिल रहीं. अमानुष, आनंद आश्रम काफी लोकप्रिय रहीं. तो सबसे पहले अमानुष का गाना सुन लेते हैं.

0: तो इसके साथ ही तन्वी और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
5: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
7: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
7: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा

0: कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन

0: स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश। सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kg thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said, "This draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today." He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
3: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
2: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the public examinations prevention

0: after receiving a bye. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Pramod. PM promises new law to tackle paper leaks. Cabinet meeting today, headlines the Hindustan Times. The Pioneer headlines, PM announces fast-track courts in paper leak cases. While the Hindu headlines, PM reaches out to students. Sonam Wangchuk ends fast. The Indian Express headlines, PM steps in. Fast-track court to punish exam paper leak guilty. Tough new law on the way. All papers have on their front page that amid the ongoing protests over NEET UG paper leak issue, the government names new secretaries for higher and school education departments. And finally, justice was served in a murder case in Mohali thanks to a pet dog. The Times of India in a story says the dog would reportedly go to a spot and sit down, alerting the cops who dug up and found the victim's body. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने की खातिर मुतल्लिका महकमों को फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के लिए एक तजवीज तैयार करने की हिदायत दी थी और इन महकमों ने लगातार काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसव्वदा पेश कर दिया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सजा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबीना साथियों की तजवीजें शामिल करने के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि पीर के रोज पार्लियामेंट इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही सरकार मस्कूरा बिल को ऐवान में जल्द से जल्द मंजूर कराने की भरपूर कोशिश करेगी।
3: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेपर लीक होने के वाकये के बाद से गुज़श्ता 2.5 महीने के दौरान कई इकदामात किए गए हैं। कसूरवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में बंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना था कि तलबा का तालीमी साल ज़ाय न हो और इसीलिए बिला ताखीर इम्तहानात कराना जरूरी था।
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विधि कदम उठाए।

0: लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। इस इकदाम का मकसद इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों से मुतालिक मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नई तश्कील दी गई यह फास्ट ट्रैक अदालत जुडिशल अफसर अन्नू ग्रोवर बालिगा की सरबराही में राउस एवेन्यू कोर्ट्स में काम करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये अदालत इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के एक्ट के तहत दर्ज किए गए केसों और दीगर मुतालिका मामलात की समाअत करेगी। मस्कुरा इकदाम का मकसद इम्तहानात में नामुनासिब तौर तरीकों के इस्तेमाल से वाबस्ता मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। इम्तहान के पर्चे लीक होने के मामलात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तेजी के साथ सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के मरकज के फैसले के बारे में वजीर आजम के ऐलान के चंद घंटों के अंदर ही ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 रोज के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता पार्लियामेंट के 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे या भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए खतों पर दस्तखत कर चुके थे। जनाब वांगचुक ने कहा कि मुख्तलिफ सूरतेहाल पर तवील बातचीत के बाद ऐसा हुआ है। उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह का तशद्दुद न होने देने के लिए हर किसी से बहुत मुस्तैद रहने पर जोर दिया। जनाब वांगचुक ने निजाम तालीम में इस्लाहात और पेपर लीक के सिलसिले में जवाबदेही तय करने के मुतालबात करते हुए पिछले महीने की 28 तारीख को भूख हड़ताल शुरू की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान से काम करने वाले उन 480 सोशल मीडिया हैंडल्स की निशानदेही करके उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है जो एक मुनज्जम तरीके से गलत जानकारी फैलाने की मुहिम में मुलव्वस थे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी सुमित झा ने बताया कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स तलबा और नौजवान को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठे दावे फैलाने में मुलव्वस थे। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो किसी भी तरह की जानकारी पर भरोसा करने और उसे शेयर करने से पहले जानकारी की तस्दीक कर लें।
2: हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से मजीद हिदायत जारी होने तक बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। डीएमआरसी ने अलबत्ता ये भी कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। मरकज ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में सेक्रेटरियों की तकरीरी की है। विनीत जोशी जो इस वक्त तालीम की वजारत में आला तालीम के सेक्रेटरी हैं, उन्हें पंचायती राज की वजारत में सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। नरेश पाल गंगवार आला तालीम के नए सेक्रेटरी होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली तालीम और खानदगी के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। केशव चंद्र कानून की वजारत जबकि चंद्रभूषण कुमार मेहनत और रोजगार की वजारत में सेक्रेटरी होंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अंदरून मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ के गैस टर्बाइन तहकीक ई इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि डीआरडीओ के डिजाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निजाम की दस्तियाबी से मुल्क की दिफाई सनत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनती बिरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई वर्षों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में यह कामयाबी हासिल हुई है। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने तवील दूरी के जमीन से फिजा में वार करने वाले मिजाइल कुशा की पहली कामयाब

0: आजमाइश की है। ये तजुर्बा ओडिशा के साहिल के नज़दीक एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। वजारत दिफा ने कहा है कि यह पहली आजमाइश बुलंदी पर तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक हदफ को निशाना बनाकर कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। वजारत ने कहा है कि कुशा मिजाइल निज़ाम लड़ाका जेट, हवाई जहाजों, मिजाइलों, ड्रोन और दुश्मन के बड़े हवाई जहाज समेत फिजा में मुख्तलिफ तरह के खतरात को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए DRDO और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह कामयाबी भारत की दिफाई तहकीक और तरक्की में एक अहम संग मील है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हमनसब निकोसर डैन के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकत दारी ज्यादा मकासद, मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरक नजरिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हमनसब ने एक बामानी और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया बरसों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सदर मुर्मू ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी मुतल्लिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है।
2: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 बरस में बाहमी तिजारत को दुगुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती मुहिदा सनतों और हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए बेशुमार इम्कान पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैन्युफैक्चरिंग, अद्वियात, सेहत की देखभाल, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, ज़रई पैदावार, खाद, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रोमानिया के बुखारेस्ट से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ओडिशा के पवित्र साहिली शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता बहुधा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडिचा मंदिर में 1 हफ्ते के क्याम के बाद वापसी का सफर करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर में वापस आएंगे। इस तरह सालाना यात्रा इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 48 घंटों में गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ समेत वस्ती और जनूबी खित्तों के मुख्तलिफ अजला में शदीद तौर पर पानी जमा हो जाए और अचानक सैलाब की सूरतेहाल पैदा हो गई है। 23वें दौरत मुश्तरका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया है। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचमबरदार मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की क्यादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए OVO हाइड्रो अरीना में दाखिल हुईं। इफ्तिताही तकरीब से पहले ही दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों के मामले में भारत ने अपना खाता उस वक्त खोला जब ओलंपिक में मेडल जीत चुकी मुक्केबाज लवलीना सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने पेपर लीक मामले में वजीर आजम मोदी के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, पेपर लीक के मुलजमान को जल्द सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। अखबार ने मरकजी वजारत दाखिला के इस बयान को नुमाया किया है कि वह सैलाब से मुतासर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जरूरी इमदाद फराहम कर रही है। अखबार इनकलाब लिखता है, आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 41 हो गई, 6 लाख अफराद मुतासर। अखबार प्रताप ने हुकूमत की इस वजह

0: को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि E20 पेट्रोल महफूज है, इंजन पर मनफी असरात का कोई साइंसी सबूत नहीं।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौरे मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 और 10 सेकंड पर गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

जी हाँ जनाब, कर ले यकीन जो कल गया वो आता नहीं, क्योंकि जो आज है वो है तेरा। इसलिए कहते हैं कि नो गिला शिकवा फ्रॉम जिंदगी। कभी कभी हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात कह देने से बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है ना वो चुटकियों में सुलझ जाती हैं। ख़ास तौर से अगर वो समस्याएं क्लोज रिलेशंस में रहने वालों के बीच में हों तो। और हम सभी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती ही हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि कई बार हम अपनी ईगो को इतना बड़ा बना लेते हैं कि अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है, और फिर यहीं से शुरू होती है एक के बाद एक प्रॉब्लम्स। इसलिए खुश रहना है अगर आपको, तो फिर अपनी इन्फ्लेटेड ईगो को कम करना होगा और वास्तविकता को पहचानना होगा। ये रियलाइज भी करना पड़ेगा कि दो लोग हमेशा हर बात पर सहमत हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सम्मान देना ज़रूरी है, भले ही हम उससे सहमत ना हो। फिलहाल अच्छे गीत, संगीत, म्यूजिक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारी आपकी सहमति बनी हुई है 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। 8:50 और 51 सेकेंड, ये है म्यूजिकल दिल लगी और एक खूबसूरत गाना आपके लिए फिल्म क्वीन से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

8:57 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्लगी और आप ट्यून इन हैं मेरे साथ यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा के साथ, लेकिन वक्त बहुत कम है, इन दो स्टूडियो में आ गई हैं और म्यूजिकल दिल्लगी इसी तरह जारी रहेगा 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर समाचारों के उस पार भी। लेकिन जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात इस माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहेंगी कि बदलते मौसम में हम अक्सर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं दवाओं को लेकर, यानी गला ख़राब होना और नाक के ज़ुकाम जैसी जो समस्याएं हैं वो बहुत कॉमन हो जाती हैं और हम ऐसे में अक्सर ये करते हैं कि डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर देते हैं और ख़ास तौर से बच्चों को लेकर भी हम कई बार लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन एक स्टडी में ये बात अभी सामने आई है कि बच्चे जो हैं उन पर बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने से एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा हमने करना नहीं रोका तो फिर आगे आने वाले समय में जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं उन पर भी एंटीबायोटिक्स का जो असर है वो कम होने की संभावना है। इसलिए ज़रूरत ये है कि हम जिसका जो काम है उसको वो करने दें, यानी खुद डॉक्टर ना बने और बिना डॉक्टर की सलाह के हम किसी भी दवाई का इस तरह इस्तेमाल ना करें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जो भी आप

काम करें, जिन बातों पर भी आप ध्यान दें, ये मत भूलिएगा कि म्यूजिक और गोल्डन म्यूजिक खास तौर से रहता है आपके साथ 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर हमेशा 24 घंटे। तो इसी तरह आपको जुड़े रहना है हमारे साथ और देश दुनिया के हाल के साथ साथ एंजॉय करना है मौसम को, मूड को, म्यूजिक को और हमारे साथ को। और आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे मेल आईडी fmgoldair@gmail.com के जरिए। तो फिर इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए म्यूजिक को और हमेशा आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ को। फिलहाल आपसे लेनी होगी इजाजत, मुझे फिर मिलती हूँ यहीं 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। टिल देन कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक। बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगी और सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्रुदयान और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंदेनू से मुलाकात करेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन ठप है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: भारी वर्षा के कारण दक्षिण गुजरात में स्थानिक नदियां और जूझ तथा केलिया सहित कई बांध उफान पर है, जिससे नवसारी, वलसाड और सूरत में बाढ़

0: से स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रभावित जिलों में व्यापक राहत और बचाव अभियान जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रभावित क्षेत्रों से हजारों फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित राज्य के अधिकतर जिलों में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य प्रशासन ने नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की अपील की है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा संपन्न होगी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने लघु तिरंगे लहराते हुए स्पॉट से एरेना में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
2: The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear the cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of Officer Anu Grover Balega at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear cases under the Public Examinations Act along with the connected offences. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi police

आगे चले हम म्यूजिकल दिल्ली में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। देखिए, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ये भी एक तरह की एक्सपेक्टेशन है। और ये जो फल की चिंता जो होती है ना हमें पहले, वो सब कुछ दी एंड कर देती है, हमें भी, मन को भी, तुमको भी, प्यार को भी। और उसके बाद बच जाता है सिर्फ यही। गाइए आप और मुस्कुराइए।

घूमिए फिरिए, कुछ भी चीज़ें आप खरीदिए। कोशिश अगर हमारी ये हो कि भाई हम पैसे अपने जो जोड़ के रखें, जो सेविंग्स हैं उसी के ऊपर डिपेंड रहें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास शौक पूरा करने की और उसके बाद चुकाने की ये जो प्यारी सी सुविधा है, इसको क्यों न ले लिया जाए। पर फिर भी इस पे सोचने और समझने की ज़रूरत है अभी।

हम तुम सनम से एक बात याद आई और वो ये कि अब उधार प्रेम की कैंची नहीं रह पाई। शौक पूरा करने के लिए कर्ज मांगने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं अब, और ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये जो बदल रहा है कि हम अपने शौक को तुरंत पूरा करना चाहते हैं। इस तरह से जो हमारी फैमिली है, इंडियन फैमिलीज, उसमें तेज़ी से कर्ज के जाल में वो लोग फंसते जा रहे हैं। और कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो तुरंत हमें यही मन करता है कि भाई ले लिया जाए और उसके बाद देखी जाएगी। और ये जो देखी जाए होती है ना, उसमें हम कब ट्रैप हो जाते हैं पता नहीं चलता है।

लेकिन अगर खुशी आपको मिलती है ऑनलाइन शॉपिंग करके, बहुत ज्यादा हो रही है तो भी कुछ तो बात है। रात को अचानक आपको लगता है कि भाई चलो कुछ खाने के लिए मंगाया जाए, या फिर सेल्फ केयर के नाम पे बहुत सारे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो भी कुछ सोचने की बात है। कपड़े बहुत सारे खरीदे जा रहे हैं और उसके बाद खामोशी भी है और बहुत सारी चीज़ें अंदर शोर मचा रही हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं एंजाइटी। आपके आसपास अगर ये काम कोई कर रहा है तो ध्यान दीजिए कि सारी चीज़ें सिर्फ शौक नहीं होती हैं, कभी कभी कुछ और भी चल रहा होता है जिसकी

और जो दिल बोले वो हर बार सही हो, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। जहाँ दिल लगाना है वहाँ हम दिमाग लगाते हैं, और जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ पे कई बार लग जाता है हमारा दिल। और ये जो खींचतान है दिल की और दिमाग की, ये बस चलती रहती है। वैसे हमने भी सुना है कि मार्केट में आजकल तारे बिक रहे हैं, आपको कोई तारा गिफ्ट में मिला कि नहीं? और इनकी कीमत भी बड़ी शानदार है। पता कीजिए तो सही कि भाई ये जो तारे हमें दिखाए जा रहे हैं या जो बिक रहे हैं उनकी जो कीमत है उसे हम खरीद सकते हैं या नहीं। फिलहाल दिन में तारे देख लेना बड़ा आसान होता है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये है म्यूजिकल दिल्ली। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:30 और ठीक 40 सेकेंड्स।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: पापा के ऊपर बड़ा प्रेशर था, लेकिन पापा ने जो हमें पॉकेट मनी दी उसी से हमने रोमांस किया। अब आप पूछेंगे कैसे और क्यों, बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ यहीं पे। सुनते रहिए म्यूजिकल दिल्ली की आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
8: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
7: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
8: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
7: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

लेकिन हाले दिल को बड़े प्यार से जानती है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली दुनिया के बड़े शहरों में रोमांटिक डेट पे जाने के लिहाज से सबसे सस्ता शहर है। आप चले जाइए मजनू का टीला, लोधी गार्डन, हडसन लेन, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन ये जो रोमांस है ये काफ़ी महंगा है, ये ख्याल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर कौन सी जगह। तो उसका नाम है जिनेवा। बड़े आराम से दिल्ली में बैठ के स्विट्ज़रलैंड में जो गीत फिल्माए गए हैं उनको देखिए और महसूस कीजिए। लेकिन फिलहाल त्रिशूल फिल्म का ये गीत तो दिल्ली में ही फिल्माया गया था और वो जो लोकेशंस हैं वो सारी की सारी याद आ जाएंगी जब आप इसको देखेंगे। अभी तो आप सिर्फ सुनिए इस गाने को। यह है म्यूजिकल दिल्ली की, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और म्यूजिकल दिल्ली की में हम हैं आपके साथ।

हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र जमती है जाकर के समोसों पे, पकोड़े आवाज़ लगाते हैं और इन सब के साथ एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बस बात बन जाए और मौसम की तारीफ हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं।

0: दिल कितना भी कहे मत जा, लेकिन हम आपको कहते हैं आप आइए, शामिल हो जाइए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे, और जान लीजिए किसान विकास पत्र के बारे में। भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय और सुरक्षित बचत योजना है। ये योजना मुख्य रूप से निवेश को एक निश्चित अवधि में दोगुना करने के लिए डिजाइन की गई है। इसे किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है। तो फिर क्या है, पढ़िए इसके बारे में और जाइए देखिए तो सही।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

और हम सफर होता है हमारी हेल्थ। और आज के दिन हमें याद दिलाता है कि भाई हमें अपना ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे जो है, डिटॉक्स आप डिजिटली हो सकते हैं, अपने आप को समय दे सकते हैं, हेल्दी डाइट और हाइड्रेशन भी कर सकते हैं, और उसके अलावा और सारे आइडियाज तो हैं ही। लेकिन क्या आपने आयकर दिवस के बारे में जाना? 24 जुलाई को ही आयकर दिवस है, जिसकी शुरुआत हुई थी। और अगर आपने अपना रिटर्न नहीं भरा है तो फिर जल्दी भर दीजिए। ये है म्यूजिकल दिल्ली। आपको कैसा लगा? आप हमें मेल कर सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे।

जाइए, आपकी यात्रा शुभ हो, हम तो यही कहेंगे। लेकिन फिलहाल आप हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे। 10 बजने वाले हैं, समय है अब समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। श्री वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस समाप्त करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक छात्र की मौत हो गई और पुलिस ने छात्र की मां की शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री एली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। फिर रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगी और सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्द्रोयान और चैम्बर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष सोनिन गिनरेनु से मुलाकात करेंगी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के तेज होने

0: और यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले के बाद एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग खतरे में पड़ गया है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कल 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में नेक और सदाचारी विचारों तथा कार्यों के महत्व पर बल दिया। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और वाणी के माध्यम से जिस बात का निरंतर अनुसरण करता है वही उसके कल्याण को निर्धारित करता है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशाल वाहक लवलीना बोरगोहन के नेतृत्व में भारतीय दल ने लघु तिरंगे लहराते हुए स्पॉट से अरेना में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
2: मैं जानता हूं कि paper leak एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of Officer Anu Grover Balega at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear the cases under the Public Examinations Act along with the connected offences. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in the examination paper leaks. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has announced the closure of 17 metro stations today until further notice due to security reasons in the national capital. These stations include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, RK Ashram Marg, Barakhamba Road, Mandi House, Central Secretariat, ITO and others. However, the interchange facilities will continue to be available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The sacred coastal city of Puri in Odisha is all set to witness the world-famous Bahuda Yatra, the

0: ceremonial return journey of Lord Jagannath, Lord Balbhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan from the Sri Gundicha Temple to the Sri Jagannath Temple today. India has reiterated its commitment to an open, inclusive, transparent and rules-based multilateral trading system. During the final session of India's 8th Trade Policy Review at the World Trade Organization WTO in Geneva, Commerce Secretary Rajesh Agarwal emphasized that WTO reforms should remain development-oriented, preserve policy space for developing countries, strengthen the organization's credibility and deliver on existing mandates. Brent crude oil prices rose above $100 a barrel for the first time since May as tensions escalates in West Asia, concerns over global energy supplies. The 23rd Commonwealth Games began in Glasgow, Scotland with a spectacular and colourful opening ceremony. The Indian contingent led by flag bearer Mirabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain marched with athletes waving miniature tricolours. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप प्रशासन ने जबरन मजदूरी के मुद्दे पर भारत सहित 17 देशों से होने वाले आयात पर 10% टैरिफ लगाया। फ्रांस में जंगल की आग के कारण 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। अब समाचार विस्तार से। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: अपने प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि समय के साथ भारत रोमानिया की साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह साझेदारी अब और बड़े लक्ष्यों, मजबूत सहयोग और भविष्य के लिए एक साझा सोच के साथ एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री ईली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगी और सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्रुदयान और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंदेनु से मुलाकात करेंगी। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह पहला परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के विरुद्ध किया गया, जिसे मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। भारत ने 350 किलोग्राम के

0: थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बो जेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का भी परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRE को सौंपा गया। इंजन को विशिष्ट वैज्ञानिक और महानिदेशक एरोनॉटिकल सिस्टम डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन और प्रमुख वैज्ञानिक और GTRI के निदेशक डॉक्टर SV रमनामूर्ति को आजाद इंजीनियरिंग के CEO राकेश चोपड़ा ने सौंपा। इस अवसर पर रक्षा सचिव और DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने GTRI और उद्योग की साझेदारी की सराहना की, जिसने इस परिकल्पना को एक ऐतिहासिक उपलब्धि में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने आपूर्ति श्रृंखला में जबरन मजदूरी के इस्तेमाल को लेकर चिंता के कारण भारत और 16 अन्य देशों से होने वाले आयात पर 10% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से लागू की गई ये नए टैरिफ व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत उन 60 देशों पर लगाए गए हैं जो जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने में नाकाम रहे हैं। 10% की ये दर भारत, कनाडा, ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत 17 देशों पर लागू होती है। इससे पहले भारत पर 12.5% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन जून में अपनी विदेश व्यापार नीति में बदलाव करके जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने के बाद भारत पर इसका असर कम हो गया था। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के तेज होने और यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले के बाद एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग खतरे में पड़ गया। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में कल 6% से अधिक की वृद्धि हुई। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण 20,000 से अधिक स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बोर्डो के पास करीब 3,400 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुका है। करीब 800 दमकल कर्मी, विमान और सैनिक आग पर काबू पाने में जुटे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है, जिससे ये आयु सीमा लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। अमेरिका की सेना ने ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए हैं। सेना का कहना है कि इन हमलों का मकसद होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को ईरान द्वारा डराने की क्षमता को कमजोर करना है। ये तनाव उस समय बढ़ गया जब ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 सऊदी तेल टैंकरों पर हमले का दावा किया, जिससे एक और प्रमुख जहाजरानी मार्ग में व्यवधान की आशंकाएं बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी है कि अगर जहाजों पर हमले जारी रहे तो उन्हें कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना होगा, साथ ही इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहन के नेतृत्व में भारतीय दल ने OVO हाइड्रो एरिना में प्रवेश किया, जहां खिलाड़ियों ने तिरंगे झंडे लहराए। ग्लासगो की भीड़ ने भारतीय दल का गर्मजोशी से स्वागत किया और भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अभियान की शुरुआत का जश्न मनाया। उद्घाटन समारोह से पहले ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने पदकों की शुरुआत कर दी, जब ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना को बाई मिलने के बाद सीधे महिला 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया। भारत के लॉन बाउल्स दल ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 2 मैचों में 2 जीत दर्ज की। आज जिम्नास्ट तपेश्वर नाथ दास, स्वाति शकेपी, तपन

0: मोहंती और योगेश्वर सिंह पुरुष टीम और व्यक्तिगत राउंड में टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे। पैरा तैराक RVVB के बुडिगिना पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल S13 में भाग लेंगे, जिसके बाद रात में फाइनल मुकाबला होगा। श्रीहरि नटराज 50 मीटर बैक स्ट्रोक हीट में अपने साथी तैराकों से भिड़ेंगे, जिसके बाद दिन में सेमीफाइनल होगा। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेल में 61 पदक जीते थे। हालांकि इस साल के राष्ट्रमंडल खेल में पदक स्पर्धाओं की संख्या कम होने और खेल कार्यक्रम के काफी छोटे होने के कारण चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। विश्व दर्पण समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप प्रशासन ने जबरन मजदूरी के मुद्दे पर भारत सहित 17 देशों से होने वाले आयात पर 10% टैरिफ लगाया। फ्रांस में जंगल की आग के कारण 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम VC प्रमोद विद द वर्ल्ड न्यूज़।

दिल का मेल बॉक्स लेकर के हाजिर हो गए हैं हम। आपने हमें किया मेल fmgoldeirdelhi@gmail.com पे अपनी पसंद और आपकी पसंद लेकर के हाजिर हैं। और ये नाम है बड़े सारे। शुरुआत करते हैं मुताला महाराष्ट्र से। विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती गौरी और ओम कुमार, साथ में इस गाने को पसंद किया है उग्रसेन यादव ने। शकुंतला यादव, गरिमा नई दिल्ली से शुभ दिन हमें कहते हैं। और महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ याद करते हैं अभिनेता मनोज कुमार को, क्योंकि आज है उनका हैप्पी बर्थडे। तो इसी बात पे फिल्म साजन से रेशम की डोरी, ये गाना है सिर्फ और सिर्फ दिल का मेल बॉक्स में आपके लिए।

दिल का मेल बॉक्स है ये। हमारे पास बड़ी सारी चॉइसेस आई हैं ऐसे गानों की, मनोज कुमार की। तो मैं आपको बता दूं कि आज कलाकार बेमिसाल में आप उन्हीं के बारे में, उन्हीं के सॉन्ग सुनेंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे और सुनते रहिए हमें। फिलहाल ये है दिल का मेल बॉक्स। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंगल, सोनू पपी भाटिया, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट है और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल है, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। एक श्रोता ने हमें बोला है कि दिल की बातें आप क्या जाने पर मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम तो कम से कम आपकी दिल की बात जान ही जाते हैं। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, एनी सॉन्ग लिस्ट में है ये नाम। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और आपका गाना ये रहा सिर्फ और सिर्फ दिल का मेल बॉक्स में। 10:37 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में।

0: मिल जा। आके हमें मेल कर जाइए। दिलावर खान है, तुलसी मस्कीन है, संदीप मक्कर, रुपेश, तुलसी मस्कीन, उसके बाद है राशिद हुसैन अंसारी, मस्कीन दादा है, धर्मेंद्र चीपा है, मोहम्मद कलीम अंसारी हैं और बड़े सारे लोग हैं। और ये हमारे पास अभी मिला है मेल राजेश जैन का, और कहते हैं इनके साथ साथ हैं मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन। इन्होंने गाने का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मुझे पता है कि हमारी चॉइस इनकी चॉइस। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुभाष चंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, आप सबकी चॉइस है हमारे पास। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि लीजिए एक लंबी सी सांस, क्योंकि छोटा सा ब्रेक जो है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम न भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल का मेल बॉक्स में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और कृष्णपार दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना का। और हवा चलेगी कैसे जब हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखेंगे, पेड़ लगाएंगे और जो पेड़ हैं उन्हें हम नहीं काटेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, देर से समझ में आ जाती है।

हम है कमाल की, ये हमें ही कहते, आप कहते हमें। देखिए कहा है, कमाल है इंदु, आपको हमारा एक भी मेल नजर नहीं आया, लेकिन हम कहते हैं कि कमाल है, हमें तो सिर्फ आपका मेल नजर आता है। और ये है ऊपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अब बताइए है ना हम कमाल के। और उसके बाद बाती जो हम करते हैं और बारी

जिसकी आई है, इनका नाम है कि फरमाइशी किसी भी गीत में हम आपके साथ हैं। तहे दिल शुक्रिया करते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और हमें बताते हैं कि भाई देखिए, पानी बचाइए, जीवन बचाइए, और हमें सादर प्रणाम करते हैं महबूब, मेरे महबूब। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हैं बाजार सीताराम से गोल्ड की पुरानी श्रोता प्रकाश जोगिया, प्रेम गुरु मनोहर लाल गांधी, मधु किरण। तो आप आज कलाकार बेमिसाल जरूर सुनिएगा, और आपकी सारी की सारी चॉइस, जो जो आप मनोज कुमार जी के बारे में आपने अभी अपनी एक लिस्ट बना के रखी है, वो सब होगी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे। सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर दिलीप, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जक जैन और लालू सोना मोना हनी, यस जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी पर्ल और विलिस डिकोस्टा, हमें अपनी पसंद के गीत में शामिल कर लीजिए। आपकी पसंद हमारी पसंद, हमारी पसंद आपकी पसंद, लिस्ट पूरी हो गई। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह और पूछते हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा। दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, आपका नंबर आ गया।

आप अपनी चॉइस भेजते हैं उसके लिए हम भी आपको कहना चाहते हैं शुक्रिया। दिल का मेल बॉक्स यहीं तक, समय है समाचारों का, फिर से होगी आपसे मुलाकात।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों के चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना वजन सामान्य करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुदुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगे और सेनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्रुदयान और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंदेनू से मुलाकात करेंगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशाल वाहक लवलीना बोरगोहाइन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगा लहराते हुए अरेना में प्रवेश किया। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है। आज कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माही और तेलंगाना में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: साथ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं अदिति,
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। दोस्तों, जिगर मुरादाबादी साहिब की लिखी ये सिर्फ दो लाइनें नहीं है, बल्कि ये पैगाम है उन कमजोर दिल वालों को जो ये समझते हैं कि वो हमसे जीत सकते हैं, मगर अफसोस बार बार हमसे मुंह की खाने के बाद भी उनकी आंखों में शर्म का कतरा नहीं उतरता।
1: शायद इसी को बेशर्मी की मीनार कहते हैं। एक बार नहीं, बार बार हिंदुस्तान ने अपने दुश्मन को ये पैगाम दिया है कि हमसे दूर रहे, मगर शायद उसे हमसे मुंह की खाने में ही मजा आता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक साल था वर्ष 1999 और तारीख थी 26 जुलाई,
0: जब हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर और नियंत्रण रेखा की रणनीतिक चोटियों पर कब्जा करके ऑपरेशन विजय की सफलता हासिल की थी। उनकी इसी शहादत और जीत के उपलक्ष में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस सारे हिंदुस्तान में बहुत ही शान से मनाया जाता है।
1: ये दिन भारत के इतिहास में गौरव की किरण की तरह है। ये उस शानदार विजय का प्रतीक है जब हमारे सैनिकों ने बर्फ में ढकी चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलाबारी का सामना करते हुए बेजोड़ साहस और अटूट संकल्प के साथ लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा एक बार फिर शान से लहराया, जो बलिदान, वीरता और अटूट राष्ट्रीय भावना का प्रतीक।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: सीने में जुनून और आंखों में आग रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। जिस दिल में अपने देश के लिए ये जज्बात हो, भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है।
2: ऐसा ही 1999 की गर्मियों में जब पूरा भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा था, बर्फीले हिमालय की ऊंचाइयों पर एक अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ था। ये कोई विशाल रेगिस्तान या हरे भरे मैदान में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि उन नुकीली चोटियों पर लड़ा जा रहा था जहां ऑक्सीजन की कमी थी,
3: टेम्परेचर बहुत कम था और जमीन का एक एक हिस्सा खून की कीमत पर हासिल किया जा रहा था। ये कारगिल युद्ध था, दुश्मन के विश्वासघात की वो हिमाकत जब दुश्मन चोरी छिपे हमारे इलाके में घुसकर बैठ गया था और सोच रहा था कि मौका मिलते ही वो हम पर हमला कर देगा।
2: दुश्मन को लगा कि हमारे देश में पहाड़ की इन दुर्गम चोटियों पर पहुंचकर वो हमें हरा देगा। बेचारा कितना नासमझ था।
3: शायद वो ये भूल गया था कि हमारे मुल्क की सरहदों की निगेबान आंखों से बचकर कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो हमारा आज का हिंदुस्तान डरेगा नहीं, बल्कि उसकी आंखें निकाल लेगा।
4: हिंदुस्तान की कसम,

0: सारा दिन बस नाश्ता लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। इसके बाद जो ऑपरेशन हुआ वो धरती की कुछ सबसे कठिन परिस्थितियों में मीटर दर मीटर चोटियों को फिर से हासिल करने जैसा था। मुश्किल से 20 साल के युवा सैनिक
1: ये जानते हुए अपनी पीठ पर राइफलें बांधकर रात में खड़ी चट्टानों के पास चढ़ते गए कि हर कदम पर दुश्मन की गोलाबारी का सामना करना पड़ेगा। हर चढ़ाई प्रकृति और दुश्मन के खिलाफ एक चुनौती थी, मगर वो भारत का वीर ही क्या जो चुनौतियों से डर जाए।
2: कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी चोटियों पर तिरंगा फहराया था। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों ने देश की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान कर दिया था।
1: इस युद्ध में परम वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा और महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन अनुज नय्यर जैसे जाबाज नायकों ने अपनी वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की थी। आज एक बार फिर से हम उन वीर शहीदों को शत शत नमन करते हैं जिन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
2: न इंतजार करो इनका ए आजादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी के सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े

0: हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16 सेक्टर 41 नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meraewazod.com पर।
0: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
0: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अगर हम आपसे पूछें कि आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जो कि हमें शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। अब ये ना पूछिएगा कैसे। आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

0: वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि अब बताइए तस्वीर में क्या ये बताने की जरूरत है कि आज हम आपको कहाँ ले जाएंगे।
1: यस,
0: खंडाला जाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, मिसल पाव लेंगे, कांदा भाजी और भुट्टा भुना हुआ मक्का, मकई और आलू के पकौड़े खाएंगे, महाराष्ट्रन थाली भी लेंगे, चिक्की है, फज है, कटिंग चाय ठंडी और बरसाती हवा के साथ, इसका एक अलग ही आनंद है। ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ खंडाला में। तो फिर आज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे तस्वीर में हम आपको तस्वीर दिखाएंगे खंडाला की। फीलिंग तो पूरी आ गई है, मुझे मालूम है अच्छे से, लेकिन अभी भी बड़ी सारी बातें बाकी हैं यहाँ की। आपने खंडाला पहले घूमा है क्या? अगर नहीं तो आज आप अपना मन पूरी तरह से बना लेंगे। चलो खंडाला चलते हैं।

मन मंदिर फिल्म की रचना आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। देखिए, याद आ गया ना अपना बचपन कि मुन्ना जाएगा बाजार, हम भी बाजार जाया करते थे, सभी जाते हैं, दो पैसे का, चार पैसे का, जब जो पैसा चल रहा होता है उसका सामान लाया जाता है। और दादा दादी नाना नानी परिवार की अमूल्य धरोहर होते हैं। उनकी कहानियां, उनकी लोरियां जो होती है ना, जीवन में अनुभव, संस्कार और मनोरंजन का अनोखा संगम होती है। उनकी बातें बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और परिवार की परंपराओं से जोड़ती। उनके साथ बिताया गया समय जो होता है बच्चों के व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है। आज के डिजिटल युग में भी उनकी कहानियों का महत्व कम नहीं हुआ है, ना ही उनकी लोरियों का महत्व कम हुआ है। और गुनगुनाकर जो माँ और दादी लोरियां सुनाती है ना, उसी से और उनके सर पर जो हाथ फेरते हैं माँ और दादी, जो हाथ फेरती है बच्चों के सिर पर, स्नेही आशीर्वाद होता है वो। उनके ही मार्गदर्शन से परिवार मजबूत बनता है। उन प्यारे रिश्तों को याद करते रहें और उनको संजोते रहें, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ हैं, तो ये हमारे लिए ईश्वर की एक देन है। और जो उम्र होती है वो कभी भी सपने देखने या खुश रहने की राह में बाधा नहीं होती, इसलिए हमेशा हमारे बुजुर्गों को खुश रहना जरूरी है। सकारात्मक सोच, अच्छा स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली इंसान को हर उम्र में ऊर्जावान बनाए रखती है। आज अनेक वरिष्ठ नागरिक योग करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, यात्राएं करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। उनका उत्साह युवाओं के लिए प्रेरणा है। जीवन का हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। और उत्साह के साथ सुनते हैं ये गीत, तो जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है।

की आवाज में। और एफएम गोल्ड पर चल रहा है कार्यक्रम घर आंगन। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो एक चलता फिरता इतिहास है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जी हाँ, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग वास्तव में एक चलता फिरता इतिहास हैं। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, उनसे सीखा है। इसलिए उनके अनुभव हमें न केवल अतीत से परिचित कराते हैं, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा भी देते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि इतिहास की जीवंत साक्षी होते हैं। उन्होंने समय के कई दौर और जीवन में हुए अनेक परिवर्तनों को नजदीक से देखा है। उनके जीवन के अनुभव हमें उन घटनाओं, संघर्षों और मूल्यों से परिचित कराते हैं, जिन्हें किताबों में पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। उनके संस्मरण, उनकी जीवन कथाएं समाज की अमूल्य धरोहर हैं। जी हाँ, मुझे याद है कि मेरे दादाजी मुझे बहुत सारी बातें बताते थे आज़ादी के दिनों की। बहुत सारी चीज़ें बताते थे कि 15 पैसे में ऐसा हो जाता था, 5 पैसे में ये होता था। अब पैसे, कौड़ी, ये सब चीज़ें तो बच्चों को पता नहीं है, लेकिन जो पैसे और बाकी चीज़ें हैं जो पुराने इतिहास की हैं, समाज की हैं, वो बड़े बुजुर्गों से हमारे बच्चों को पता लगती हैं, हमें पता लगी, हमसे हमारे बच्चों को पता चलेंगी। तो इसलिए जो ये संवाद होता है ना, ऐसे लगता है मानो इतिहास के पन्नों को जीवंत रूप में पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेकर जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन से नई पीढ़ी अपने भविष्य को अधिक समझदारी और संवेदनशीलता के साथ आकार दे सकती है। इसीलिए अपने बुजुर्गों को रूठने ना दें, और रूठ लें तो मना लीजिए फौरन।

आरजू फिल्में अपने लता मंगेशकर को सुना, और यही होना चाहिए हमारे बुजुर्गों के साथ भी कि अजीर उठ घर अब कहाँ जाइएगा। बुजुर्गों क्या घर के हर रिश्ते के साथ यही होना चाहिए, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, यानी हर रिश्ते को मनाना हमारी जिम्मेदारी और मान भी जाना चाहिए। यानी हम रूठे हैं तो दूसरा अगर कोई मनाए ना फौरन मान जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संजो कर संभाल कर रखना पड़ता है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय आयकर दिवस की। भारत में हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। करदाताओं के राष्ट्र निर्माण में योगदान को सम्मानित करने के लिए और कर भुगतान के प्रति जागरूक करने के लिए। और बड़े बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने में कैसे सहायता मिल सकती है वो हम आपको बताएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि करदाताओं की आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी 70 वर्ष की आयु के आधार पर भी यही समय सीमा है। और धारा 80 TTB के तहत बैंक, डाकघर और सहकारी बैंक की जमा पर मिलने वाले ब्याज में 50,000 रूपये तक की कटौती मिल सकती है 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को। धारा 194P के तहत विशेष छूट मिलेगी 75 वर्ष से जो अधिक हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, और जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है और आय का स्रोत केवल पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाला ब्याज है, उन्हें आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने बैंक में फॉर्म 12BBA जमा करना होगा, उसके बाद बैंक उनकी इनकम टैक्स योग्य आय की गणना करके TDS काट लेगा। और धारा 80 TTB बुजुर्ग अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस और सहकारी बैंकों में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज पर 50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। और पेंशन भोगी अपनी पेंशन आय से 50,000 रूपये तक की स्टैंडर्ड कटौती का लाभ उठा सकते हैं। और बुजुर्ग माता पिता यदि हमारे साथ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा खर्चों पर धारा 80D के तहत छूट का दावा किया जा सकता है। अब दस्तावेज क्या चाहिए हमारे बुजुर्गों को, अगर आईटीआर फाइल करनी है तो बैंक पासबुक ले लीजिए, 26AS फॉर्म ले लीजिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और ब्याज के प्रमाण पत्र का को निकाल लीजिए। कागज लेकर आप कहीं से भी आईटीआर भरवा सकते हैं। वेतन, पेंशन और ब्याज से आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आमतौर पर ITR 1 यानी सहज फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ये बहुत आसान है। आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पर जाकर उनके पैन और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें और फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। और ये सब जानकारी वहां पर भी है जहां आप फॉर्म भरेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब अंत में हम तो यही कहेंगे कि दादा और दादी का अनुभव, नाना और नानी का अनुभव, हमारे बुजुर्गों का अनुभव एक ऐसी अनमोल किताब है जिसमें जिंदगी जीने का असली सलीका, हर मुश्किल का समाधान छुपा होता है। और उनके दशकों पुराने अनुभव हमें न सिर्फ संस्कारी बनाते हैं बल्कि व्यवहारिक रूप से जीना भी सिखाते हैं।

रफी और लता मंगेशकर के आवाज में ये गीत फिल्म दुनियादारी से है और कार्यक्रम घर आगम का यही अंतिम गीत है और इस कार्यक्रम से मुझे यानी राधा को दे इजाजत, लेकिन सुनते रहिए कार्यक्रम घर आंगन और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, उनके साथ बैठिए, समय बिताइए और उनके संघर्षों और अनुभवों का लाभ उठाइए, यही हम आपसे कहेंगे।

0: आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बर्ब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 1:10 ठीक 11 सेकंड लीजिए 1:11 और 2 सेकंड। जी हाँ, कलाकार बेमिसाल लेकर हाजिर है देविका 100.1 MHz पर। कलाकार बेमिसाल में आज बात उस कलाकार की जिसका फिल्मी रास्ता हरियाली भरा था, जो सीधा हिमालय की गोद में जाता था। मन से सन्यासी इस अभिनेता को कभी कभी लोग पत्थर का सनम मानते थे। कहना गलत ना होगा कि उसके आने से फिल्मी दुनिया पर एक उपकार हुआ और एक नई क्रांति आई। कई लोग उसकी कल्पनाशीलता पर शहीद हो गए और लोगों में एक शोर समझ गया। जो ऊर्जा कल्पना इस चरित्र के पीछे काम कर रही थी, लोग सोचने लगे कि वो कौन थी। जी हाँ, आज बात हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी की, जिसका 24 जुलाई यानी कि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1937 में, अविभाजित भारत के शहर अबोटाबाद में। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, हम सब लोग उन्हें मनोज कुमार नाम के, जी हाँ, उनसे जानते हैं। और मनोज कुमार साहब के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे गीत हैं जो बहुत बहुत अच्छे हैं उनके। और हम कलाकार बेमिसाल का आगाज कर रहे हैं उनकी एक बेहतरीन फिल्म हिमालय की गोद में के गीत से। लिखा इस गीत को आनंद बख्शी जी ने, संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, जैसे कि गायक कलाकारों के आदर्श रहे स्वर्गीय कुंदन लाल सहगल साहब, वैसे ही अधिकतर अभिनेताओं के आदर्श रहे अभिनेता यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार साहब, और हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी जी भी इससे अछूते नहीं थे। 1949 में बनी फिल्म शबनम में अभिनेता दिलीप कुमार साहब के चरित्र का नाम था मनोज कुमार, और युवा हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी जी ने उसी से प्रभावित होकर अपना फिल्मी नाम मनोज कुमार रखा। अगला गीत उनकी फिल्म हरियाली और रास्ता से, शैलेंद्र साहब के बोल, शंकर जयकिशन जी का संगीत और आवाज, लता जी और मुकेश की।

कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और बात जी हाँ मनोज कुमार जी की। श्रोताओं, मनोज कुमार साहब मात्र 10 वर्ष की आयु में देश विभाजन के कारण अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए। शुरू शुरू में परिवार को विजयनगर किंग्सवे कैंप में स्थित शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। बाद में परिवार पश्चिमी दिल्ली के पटेल नगर में रहने लगा और दिल्ली के हिंदू कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद मनोज कुमार साहब ने मुंबई जाने का फैसला किया और वे बम्बई यानी मुंबई आ गए। मुंबई में आपने पहली फिल्म की 1957 में फैशन, लेकिन ये फिल्म कोई छाप न छोड़ सकी और मनोज कुमार जी को 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया से पहचान मिली। पेशा खिदमत है इसी फिल्म का एक दिलकश नगमा और इस गीत के जो संगीतकार हैं शायद उसे आज कोई याद भी नहीं करता। इन संगीत निर्देशक का नाम था सुरहित कार और बोल लिखे थे शैलेंद्र जी ने, आवाजें हैं मुकेश जी और आशा जी की।

0: जी हाँ, ये दिलकश नगमा साथ हो तुम और रात जवां, जी हाँ फिल्म थी कांच की गुड़िया। फिल्म कांच की गुड़िया से पहले मनोज कुमार साहब 5 फिल्में कर चुके थे, लेकिन कांच की गुड़िया से जो उन्हें पहचान मिली वो इसके बाद बढ़ती ही चली गई। इसके बाद आपने अभिनेत्री शकीला के साथ फिल्म रेशमी रुमाल की, माला सिन्हा जी के साथ हरियाली और आस्था, और विजयंती माला के साथ डॉक्टर विद्या। और डॉक्टर विद्या का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें, तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

1:32 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर देविका है आपके साथ और प्रोग्राम है कलाकार बेमिस साल। और जैसा मैंने कहा था कि डॉक्टर विद्या का गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस गीत को गाया है मुकेश जी ने और संगीतकार सचिन देव बर्मन, लिखा इस गीत को मजरू सुल्तानपुरी ने।

डॉक्टर विद्या के बाद मनोज कुमार जी ने अभिनेत्री अमिता के साथ फिल्म माँ बेटा और फिल्म पिया मिलन की आज की, आशा पारेख जी के साथ फिल्म अपना बना के देखो और अभिनेत्री राश्री के साथ घर बसा के देखो और गृहस्थी की, और फिर आई 1964 में फिल्म वो कौन थी जिसमें थी उनके साथ साधना। वो कौन थी रोमांच के साथ साथ अपने संगीत के लिए भी जानी गई, लग जा गले के फिर ये हजी रात हो ना हो, नैना बरसे रिम झिम जो हमने दास्ता अपनी सुनाई आप क्यों रोए, ये गीत बेहद सफल रहे और ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको इस फिल्म का सबसे बेहतरीन गीत ना सुनवाएं। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज, मदन मोहन जी का संगीत।

0: सुन रहे हैं आप कलाकार बेमिसाल से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, और देविका है आपके साथ और बात मनोज कुमार जी की। 1965 में मनोज कुमार जी की छवि को एक नई दिशा मिली और वो छवि थी देशभक्तिपूर्ण छवि, जब उन्होंने शहीद भगत सिंह जी की जीवनी पर आधारित फिल्म शहीद का निर्माण किया और इसमें उन्होंने भगत सिंह का चरित्र ऐसा निभाया कि आज भी वो लोगों को याद है। अभिनय के साथ साथ फिल्म का निर्देशन भी इतना सशक्त था कि देखने वालों के हृदय देशभक्ति से अभिभूत हो गए। पेश ऐसी फिल्म से देशभक्ति से परिपूर्ण एक गीत जो आज भी शहीद भगत सिंह की याद दिला देता है और आज भी शरीर में एक सिरहन सी पैदा कर देता है। ये जादू था प्रेम धवन साहब का और मोहम्मद रफी का।

0: शहीद के बाद आपने फिल्म उपकार का निर्माण किया, जिसमें पहली बार मनोज कुमार साहब ने निर्देशन भी किया, जो तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सिंहनाद जय जवान जय किसान पर आधारित थी। इस फिल्म को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बजे 44 मिनट ठीक 25 सेकेंड कलाकार बेमिसाल में बात मनोज कुमार जी की। श्रोताओं, मनोज कुमार साहब की उपलब्धियां इतनी अधिक हैं कि उनको थोड़े समय में समेटना कठिन ही नहीं असंभव है। 80 के दशक में आपने फिल्मों से आघोषित संन्यास ले लिया। आपको 1992 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और इसके अतिरिक्त 6 बार आपको फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। 1999 में आपको फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके अतिरिक्त शिरडी के साईं बाबा के प्रति मनोज कुमार साहब की आस्था के कारण साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने शिरडी में, जी हां, पिंपलवाड़ी रोड पे नाम जो उनका बदलकर मनोज कुमार गोस्वामी रोड रखा है। 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में मनोज कुमार साहब ने आखिरी सांस ली, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए बेहद अनगिनत खूबसूरत नगमे। और जाते जाते जो नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म शोर का। इस नगमे को इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीतबद्ध किया। गाया इसे महेंद्र कपूर, मन्ना डे और श्यामा चित्तर ने।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के वाकयात पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने तेजी से काम करने वाली अदालतों और कसूरवारों को सख्त सजा देने की तजवीज़ से मुतालिक बिल को जल्द मंजूर कराने का यकीन दिलाया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक वाकयात पर हंगामा अब भी जारी है। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से हंगामे की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और एनटीए को हिदायत दी है कि वो नीट यूजी पेपर लीक के बाद इस्लाहात पर अमल दरामद में पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली हलफनामे दाखिल करे। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में अवाम की आवाज को दबाए जाने को नजरअंदाज करने पर अक्वामे मुत्तहिदा की मजम्मत की है। भारत ने पाकिस्तान पर अवाम के हकूक को मुनज्जम तौर पर कुचलने का इल्जाम आयद किया है। भारत के महकमा मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में आज बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की अनाहत सिंह आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने महकमों से कहा था कि वो पेपर लीक के वाकयात से निमटने के लिए तेज रफ्तार अदालतें तश्कील देने के लिए एक तजवीज तैयार करें। उन्होंने कहा कि इन महकमों ने अनथक काम किया और उन्हें कल देर रात इसका मुसव्वदा पेश कर दिया गया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में तेजी से काम करने वाली अदालतों और सख्त सजाओं की शिकें तश्कील दी गई हैं। इस मुसव्वदे पर आज काबीना बहस व मुबाहिसा करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुसव्वदे में काबिनी रुफका की तजवीज़ शामिल किए जाने के बाद ये मुसव्वदा

0: शक्ल इख्तियार कर लेगा। वजीर आजम ने कहा कि जब पीर को पार्लियामानी इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होगा, हुकूमत इस बिल को ऐवान में जल्द अज जल्द मंजूर कराने की कोशिश करेगी।
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने आज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर मुसलसल जोर दिया है कि तलबा के मफादात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में आकाशवाणी से बात करते हुए जनाब पाल ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान से मुतालिक बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम बनाने की गरज से एक कानून बनाने से मुतालिक अपने इरादे का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब बीजेपी के राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट राहुल सिन्हा ने आज कहा कि वजीर आजम मोदी नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई करने से मुतालिक अपनी यकीन दहानी को हर सूरत हाल में पूरा करेंगे। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से खसूसी तौर पर नामजद तेजी से समाअत करने वाली अदालतें कायम करने के फैसले की सताइश की है ताकि पेपर लीक से मुतालिक जेरे इल्तवा केसों की समाअत की जा सके। मीडिया से बात करते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि तेजी से समाअत करने वाली ये अदालतें यौमिया बुनियाद पर इन केसों की समाअत करेंगी ताकि नौजवानों को इंसाफ फराहम हो सके।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिन के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले पार्लियामेंट के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे और उन खतों पर दस्तखत कर चुके थे जिनमें उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की गई थी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान एक तालिबे इल्म की मौत हो गई है। वीडियो में ये इल्जाम भी लगाया गया है कि पुलिस ने इस तालिबे इल्म की वालिदा की शिकायत पर एक FIR दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने वजाहत की है कि यह दावा फर्जी है। यूनिट ने कहा है कि दिल्ली में एहतजाज से वाबस्ता कोई मौत नहीं हुई है और ये कि मस्कूरा खातून से मुतालिक वायरल वीडियो AI से बनाया गया डीप फेक है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा में आज लगातार पांचवें दिन शोरोहोल जारी रहने के बाद ऐवान की कार्यवाही पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज पहली मर्तबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 12 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बात करने के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी नीट मामले पर हंगामे के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज और इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA को हिदायत दी है कि वो नीट UG पेपर लीक के बाद की गई इस्लाहात पर अमल दरामद में जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में तफसीली हलफनामे दाखिल करे। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराध्य पर मुश्तमिल एक बेंच ने नीट पेपर लीक केस की समाअत करते हुए कहा कि इस हलफनामे में उन इकदाम का लाजिमी तौर पर जिक्र किया जाए जो इस्लाहात को इदारा जाति बनाने के लिए किए गए हैं, न कि उन इकदाम का जिक्र किया जाए जो इस सिलसिले में आरजी तौर पर किए गए हैं। बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो मरकज की नुमाइंदगी कर रहे हैं कहा कि हुकूमत बच्चों के इन मामलों से निमटने के लिए काफी आगे

0: कार्रवाई करने को तैयार है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा से अफसोस जाहिर किया है कि वो पाकिस्तान में खासतौर पर उसके जेर कब्जा कश्मीर में लोगों की आवाज दबाए जाने को नजरअंदाज कर रही है, जबकि उसने दूसरी जगहों पर इस तरह के वाकयात की मजम्मत की है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर पीओके में अवाम के हकूक को मुनज्जम तौर पर कुचले जाने की मजम्मत की है। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने पाकिस्तान के हाथों इंसानी हकूक की पामाली और मकबूजा कश्मीर नीज पूरे मुल्क में आजादी को कुचलने के वाकयात का जिक्र किया। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा दो दिन तक हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत करने वाले भारतीय दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि भारतीय एथलीट्स जोशो खरोश, अजमे मुसम्मम और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के साथ इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के एथलीट्स की सलाहियत, काबिलियत और लगन से बेशुमार भारतीयों को तरगीब फराहम होगी। स्क्वॉश में भारत की अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वो क्वार्टर फाइनल में मिस्र की हबीबा रिज्क को 11-7, 11-5, 6-11 और 11-9 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं, जहां उनका मुकाबला मिस्र की खिलाड़ी बार्ब सामेह से होगा। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के वाकयात पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने तेजी से काम करने वाली अदालतों और कसूरवारों को सख्त सजा देने की तजवीज से मुतालिक बिल को जल्द मंजूर कराने का यकीन दिलाया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक वाकयात पर हंगामा अब भी जारी है। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से हंगामे की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और एनटीए को हिदायत दी हैं कि वो नीट यूजी पेपर लीक के बाद इस्लाहात पर अमल दरामद में पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली हलफनामे दाखिल करे। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में अवाम की आवाज को दबाए जाने को नजरअंदाज करने पर अक्वामे मुत्तहिदा के खिलाफ आवाज उठाई है। भारत ने पाकिस्तान पर अवाम के हकूक को मुनज्जम तौर पर कुचलने का इल्जाम आयद किया है। और भारत की अनाहत सिंह आलमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today. And India's Anahat Singh enters the semi-finals of World Junior Squash Championships. Prime Minister Narendra Modi has said that he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday,

0: During the NEET paper leak case said the affidavit must explain the steps taken to institutionalize the reforms instead of relying on ad hoc measures. The bench said they would be monitoring the issue very closely and would follow it up regularly. The top court further questioned the centre what it is doing to shift completely to an online mode. After which the court has listed the matter for July the 27th. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Sonam Wangchuk's wife, Geetanjali Angmo, and senior leaders of the apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi Police DCP Sumit Jha said these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and the youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. India has expressed disappointment with the UN for ignoring the repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK. India's permanent representative Harish Bharathaneni said, while similar developments in other countries are excoriated by the United Nations, such repression and developments in Pakistan do not receive the attention they deserve. He was speaking at the Security Council open debate on strengthening the mechanisms for peaceful settlement of disputes. Responding to Islamabad raising the Kashmir issue at the Security Council debate, he accused Pakistan of systematically crushing the rights of the people.
1: The ongoing developments in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir fully expose the true nature of the Pakistani state. The world is witness to the continued suppression of basic rights, freedom of expression and association, and stifling of fundamental freedoms of Kashmiris in Pakistan-occupied Kashmir. These are not isolated instances, but part of a larger design by the Pakistani establishment in Pakistan-occupied Kashmir for close to 8 decades.
0: His remarks came after Pakistan once again sought to raise the Kashmir issue at the Security Council, prompting a firm rebuttal from India. President Draupadi Murmu today called for expanding economic and investment ties between India and Romania, saying the two countries have immense untapped potential for deeper commercial cooperation. Addressing the India-Romania Business Forum in Bucharest, the president said Romania's strategic location, skilled workforce and strong integration with the European Union make it a valuable partner for India and a gateway to the wider European market. President Murmu said the proposed India-European Union Free Trade Agreement will be a landmark in strengthening economic ties by promoting trade, investment and resilient supply chains.
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world and aims to deepening trade integration, strengthening investment flows, and building resilient and diversified supply chains.
0: Brent crude oil prices rose above $100 a barrel for the first time since May as tensions escalate in West Asia over concerns over global energy supplies. Brent crude, the global benchmark, gained more than 6% yesterday after U.S. strikes on Iran intensified and Yemen's Houthi rebels attacked oil tankers in the Red Sea, threatening a key shipping route. Income tax day is being observed across the country today, marking another milestone in India's evolving taxation system. The occasion commemorates the establishment and growth of the Income Tax Department while highlighting the country's journey towards a transparent, technology-driven and taxpayer-friendly tax administration. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra for the day. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Karnataka, West Bengal, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. Similar weather conditions will continue over northeast India during the next 2 days. IMD said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, West Bengal, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Kerala, Mahi and Telangana till tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a spell of very light rain accompanied by strong surface winds for the day. Prime Minister Narendra Modi today extended his best wishes to the Indian contingent who are participating in the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. In a social media post, Mr. Modi expressed confidence that Indian athletes will compete with passion, determination and a spirit of excellence. The Prime Minister said the skills and dedication of the country's athletes continue to inspire countless Indians. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the World Juniors and a firm favourite to win the title. Benchmark domestic equity indices pared their initial losses and were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex slipped 403 points to 75,989 and the Nifty fell by 116 points to 23,754. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
5: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
6: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
3: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
7: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
3: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
8: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
3: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा।

0: संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा, श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: इंडिया EU प्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेम्पोररी पार्टनरशिप विथ ए कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड 25 ट्रिलियन डॉलर्स. द इंडिया EU FTA इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है. यह टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है. ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं. घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया. भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया. अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी. मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है. एक रिपोर्ट.
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है. पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाव थराद और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है. किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है. दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए. नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित. सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए. और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची. इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
4: आकाशवाणी FM गोल्ड पर अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला. 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का. तो सभी किसान भाइयों का हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी FM गोल्ड पर.

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मेरे साथ ही हैं आज, कौन चलिए उनसे भी परिचय ले लेते हैं।
1: बिल्कुल, अमित तेवतिया। सुषमा जी, जहां हमारे सभी श्रोताओं को भाई कार्यक्रम उन्नत किसान में इंतजार रहता है और कोशिश रहती है कि भाई क्या कुछ होगा कार्यक्रम में, क्या कुछ नया है, क्या कुछ आज सीखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए हमारे सभी श्रोताओं की उत्सुकता के लिए कार्यक्रम उन्नत किसान लेकर के हम हाजिर हैं।
0: बिल्कुल, उन्नत किसान लेकर हम हाजिर हैं और आज के कार्यक्रम में हम ऐसी बातें करेंगे जिसकी जो आज मांग है बहुत ज्यादा है मौसम को देखते हुए अमित, और हर घर की शान है और वो फलों का राजा है। मेरा इशारा आप समझ गए।
1: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता भी समझ गए होंगे कि वही आज जो बात होगी वो आम की होगी, लेकिन जितना हम बात सोचते हैं कि आम है, बात उतनी ही खास
0: है। बिल्कुल आपने सही बोला कि आम की बात है लेकिन आम नहीं, वो बहुत खास है क्योंकि वो फलों का राजा है, इसलिए बहुत खास है। और इस समय हमारे जो आम है उनकी किन कौन सी किस्में आ गई हैं, कितनी देखभाल करनी जरूरी है, इस पर भी हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, वो समय समय पर आकर अपने अपने वक्तव्य देते हैं, अपने विचार देते हैं, ताकि हमारे किसान भाई जो हैं वो अच्छे से अपनी बागों की देखभाल कर सके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी ले सके।
1: बिल्कुल सुषमा, आपने सही कहा, क्योंकि कई बार होता है कि किसान भाई बहन जब बाग लगाने की सोचते हैं तो बाग हम कोई भी लगाएं वो एक लंबे समय तक हमारे खेत में रहता है और कोशिश रहती है कि कहीं हम जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ना ले लें कि भाई कोई ऐसी किस्म लगा दें कि आगे उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जलवायु परिवर्तन के विपरीत तो कार्य न करने लगे। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसंधान के द्वारा इजाद की गई नई किस्में जो होती हैं वो हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचे, उससे अच्छा उत्पादन उन्हें मिले, लागत मूल्य कम हो और लंबे समय तक जब तक हमने अपने खेत को घेरा हुआ है एक कोशिश रहे कि लगातार आमदनी बनती रहे।
0: बिल्कुल अमित सही कह रहे हो कि लगातार आमदनी बनती रहे उनकी और उनको मुनाफा होता रहे। किस्मों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी किस्में हैं अमित हमारे आम की, और उत्तर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय है वो दशहरी आम होता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, और इसकी मांग भी बहुत ज्यादा होती है, हर घर की शान है, हर घर की पसंद है आम। और आम की बात आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएं हम कि आप इस मौसम को देखते हुए भी बहुत ख्याल रखें, आप अपने खेतों का ख्याल रखें, अगर आप आम के अलावा भी आपके और भी बाग हैं तो उनकी भी देखरेख कर सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि भाई मानसून जब आता है तो हमें लगता है कि भाई खुशहाली है, खेत खलियान खिलखिला रहे हैं, लेकिन वहीं अनचाहे खरपतवार, कीट, रोगाणु, हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होता है अपनी प्रत्येक फसल का, अपने बगीचों का, अपनी बागवानी का, अपनी फुलवारी का, और यहां तक कि अपने घर आंगन में खिलखिला रही वो फुलवारी जो इस देश का भविष्य होने जा रही है, यानी कि अपने बच्चों का, तो सबका हम ध्यान रखें, क्योंकि निश्चित रूप से इस मानसून को देख करके जहां हमारी खुशियां हैं, जहां हमारी लगातार बनती रहें, खेत खलियान खिलखिलाते रहें, उन्नत किसान से जो कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं, किसान की उन्नति की ओर अग्रसर रहें, देश की रीढ़ कहलाने वाली कृषि यदि मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश का स्वास्थ्य मजबूत होगा, देश का भविष्य मजबूत होगा।
0: बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम बच्चों की बात करें कि जो युवा किसानों की अगर बात करें, और AI का ये जो दौर चला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ हमारी तकनीकी को बढ़ावा नहीं दे रहा, हमारी कृषि तकनीक को भी बहुत आगे बढ़ा रहा है, और AI का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। AI जहां इस्तेमाल होगा वहां मतलब एक्यूरेसी की अगर बात आती है, यानी हर चीज जो है उसका मापदंड बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो हमारी किसानों की बहुत सारी तकनीकें होती हैं जहां इस्तेमाल करें, चाहे वो फसल लगाने से लेके उसकी तुड़ाई तक, उसकी उसके थ्रेशिंग से लेके उसको भंडारण तक, हर जगह कहीं ना कहीं कंप्यूटराइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है ताकि सही चीजें हों।
1: बिल्कुल सुषमा, देखो अभी वैज्ञानिक आते हैं कार्यक्रम में, अपनी बातचीत रखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ऐसी बातचीत हमारे सभी साथियों तक पहुंचे जो उनके जीवन में कृषि संबंधी कोई भी जानकारी को पूरी की पूरी साझा करते हुए उन्हें भविष्य में आमदनी दिलाए, उत्पादन को बढ़ाए, लागत कम करे। आज जैसा आपने कहा कि विषय रहेगा हमारा जो हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगा कि पूसा संस्थान द्वारा विकसित आम की उन्नत किस्में और उनकी विशेषताएं, और इसी विषय पर जानकारी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी डॉक्टर निमिषा शर्मा से, जो कि वैज्ञानिक हैं, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से, और इस बातचीत में भाग ले रही हैं हमारी रेडियो सहयोगी कमलेश मुदगल। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत और लाभान्वित होते हैं इस बातचीत के माध्यम।
0: बिल्कुल बिल्कुल अमित, सुनवाते हैं अपने सभी किसान भाई बहनों को ये बातचीत।
2: किसान भाइयों, जब भी हम आपसे मिलने के लिए आते हैं, हमारा प्रयास हमेशा यही होता है कि हम आपके लिए रोचक जानकारी लेकर आएं, वो जानकारी जो आप अपने खेत खलिहान में उसका उपयोग कर पाएं और आप जिस चीज का उत्पादन करें उसकी गुणवत्ता को सुधार पाएं, गुणवत्ता अच्छी मिलेगी तो आपको उसका दाम भी अच्छा मिलेगा। आप कहेंगे कि भाई ये आज आते ही कैसे बात करी, मैं आते ही इसलिए बात कर रही हूँ, मीठा तो हम सभी खाते हैं, चीनी की बात नहीं कर रही, गुड़ की भी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आम की। जी हाँ, विभिन्न प्रकार के आम बाजारों में आए हुए हैं, किसी को आम काट कर खाना अच्छा लगता है और किसी को बिना चूसे आम खाने का स्वाद ही नहीं आता। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप थोड़ा समझ जाएं कि हमारी जो बातचीत है वो किधर की तरफ जा रही है। हाँ, कुछ हमारे भाई समझ गए हैं, लेकिन जो नहीं समझे हैं उनको मैं बता दूं कि आज हम बात करेंगे पूसा संस्थान द्वारा विकसित आम की उन्नत किस्में, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर निमिषा शर्मा, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और जब हम बात करते हैं आम की, देखिए अब आम का जब सीजन चलता है तो सभी आम खाते हैं, लेकिन ये आम

0: हमारे डिवीजन की ये एक मैंडेट क्रॉप है। तो 70 के दशक की अगर हम बात करें तो मल्लिका, जैसा कि इसका नाम है
1: नाम
0: मल्लिका, बहुत ही मीठी वैरायटी है आम की।
1: जी
0: इसका जो टीएसएस है वो 24 डिग्री बिक्स तक चला जाता है, एक रेगुलर वैरायटी है।
1: जी
0: रेगुलर से मैं ये बताना चाहूंगी किसान भाइयों को कि हर साल फल आता है। इसका जो फ्रूट वेट अगर हम देखें तो काफी ये बड़ी वैरायटी है। तो फल का इसका वजन लगभग 350 से 400 ग्राम के आसपास होता है, और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत मीठी होती है, इसलिए इसका टीएसएस लगभग 24 डिग्री ब्रिक्स के आसपास मिलता है
1: जी
0: और रेगुलर बियरिंग है। तो हमारे किसान भाई जो है इससे नियमित रूप से हर साल जो है फल फसल ले सकते।
1: और जो आपने वैरायटीज बताई हैं, आगे भी आप और वैरायटीज बताएंगे तो कुछ ना कुछ उसकी विशेषता होती है कि हम उस वैरायटी को क्यों लगाएं, या जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारे किसान भाई हैं वो भी कहेंगे कि इसमें क्या विशेषता है कि हम इसी फल की वैरायटी को लगाएं। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इन फसलों को लगाएं या इन किस्मों को लगाना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है लगातार शोध कार्य चलता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मल्लिका जो है वो नीलम और दशहरी के क्रॉस से बनी है, यानी इसमें हमने नीलम जो है वो फीमेल पेरेंट लिया है और दशहरी जो है मेल पेरेंट लिया है। जब हम इसका बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, यानी कि दशहरी को फीमेल पेरेंट लेते हैं और जो आपका नीलम है उसे मेल पेरेंट लेते हैं, तो हमारी नई वेराइटी बनकर के आई जो है अम्रपाली। और अम्रपाली आज जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इतनी ज्यादा इसकी सक्सेस रेट है और किसान भाई जो है वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस वैरायटी के परफॉर्मेंस से। तो एक तरह से हम इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है वो भी बिल्डअप कर पा रहे हैं। अपने देश में तो हम प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, किसान भाइयों को हम नियमित फल फसल हर साल होती है, ये भी रेगुलर बियरिंग है। लेकिन मल्लिका क्या है, एक विग्रस वैरायटी है, जबकि अम्रपाली जो है वो ड्वार्फ वैरायटी है। और ड्वार्फ होने के कारण क्या है कि पर हेक्टेयर हम नंबर ऑफ प्लांट्स इसमें ज्यादा ले सकते हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी कर सकते हैं इस वैरायटी की, क्योंकि आजकल हमारे पास जमीन जो है हम देखा जाए तो अर्बन कल्चर के कारण बहुत लिमिटेड हो गई है। तो हम इसे 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाई 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा ले सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। प्लस इसका जो कैरोटीन कंटेंट है इस वैरायटी में काफी अच्छा है। पल्प जो है वो ऑरेंजिश कलर का है और काफी अच्छा इसका टीएसएस है। मल्लिका से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी इसका जो मिठास है वो कहीं भी कम नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि हम आम जो है अपने घर में लेकर आ गए और हमने उनको धोकर रख दिया और 2 दिन के बाद ही जो है आम सड़ने लगता है या खराब होने लगता है, तो फिर ग्राहक ये सोचता है कि भी ये वाला आम तो मुझे लेकर ही नहीं आना है। तो कुछ ऐसी उसमें जो गुणवत्ता हो, क्योंकि अगर गुणवत्ता उत्पादन होगा और किसान भाई करेंगे तो उनकी जो चीजें हैं वो हाथों हाथ बिक जाएंगे, तो उस संदर्भ में कौन कौन सी वेराइटीज जो हमारे किसान भाई लें?
0: जी, ये जो प्रश्न है मुझे लगता है कि हर कोई जानना चाहेगा, किसान भाइयों के अलावा जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फार्म से टेबल पे जब प्रोडक्ट जा रहा है, आजकल समय का बहुत ज्यादा अभाव है। तो रेगुलर परचेजिंग भी आम के अगर करना जो है कोई चाहे, लेकिन वो पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा, उसकी अगर कीपिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एक पॉइंट एक कंस्ट्रेंट आता है।
1: जी
0: तो इसमें हमारा जो संस्थान है काफी अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पूसा अरिनिमा हमारी एक वेराइटी है जो कि एक कलर्ड वेराइटी है, और साथ ही साथ इसकी जो एक इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये आम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 10 से 12 दिन आराम से चल जाता है। तीसरा इसका एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है कि इसको जो पकने का समय है, आम का सीजन जब समाप्त होने लगता है, यानी कि बारिश के बाद अगस्त फर्स्ट वीक में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो ये किसान भाइयों के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल वैरायटी है, क्योंकि आम का सीजन जब खत्म होने लगता है उसके बाद भी अगर हम कंज्यूमर्स को देंगे, क्योंकि डिमांड आम की हमेशा है, आम सबसे खास है
1: जी,
0: तो पूसा अरिनिमा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा अगर शेल्फ लाइफ की बात करें तो हमारी एक जो वैरायटी है पूसा सूर्या, उसकी भी शेल्फ लाइफ जो है काफी अच्छी है, 8 से 10 दिन तक उसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये एक हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता ही है कि हम ऐसी वैरायटीज डेवलप करें जो एक तो हर साल फल फसल दें और दूसरा इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो, कलर्ड वैरायटी हो, ताकि हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकें। कंज्यूमर जो है वो चाहता है कि आजकल टीएसएस एसिड रेशियो बैलेंस्ड रहे, क्योंकि डायबिटीज महामारी की तरह फैल रही है। तो TSS अगर बहुत ज्यादा है

0: तो नॉर्मली कंज्यूमर्स उसको कम प्रेफर करने लगे हैं।
1: हमारा जो देश है वो वार त्योहारों का देश है, और जब वार त्योहार आते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि अपने किसी भी रिश्तेदार के घर जाओ, तो उस समय पर हम कुछ ना कुछ फल लेकर जाते हैं। अब आम का सीजन है तो हम सोचते हैं कि चलो उनके घर आम लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे अभी भी आपने कहा डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज वाला तो ये कहेगा भाई आम तो इतना खास है लेकिन मैं तो खा नहीं सकता, तो उनके लिए ऐसी कौन कौन सी वैरायटीज मार्केट में हैं या जो हमारे किसान भाई उगाते हैं जिनको डायबिटीज हो गई है, जो शुगर पेशेंट बन चुके हैं, वो भी उसको खा पाए और उसके जो गुण हैं वो उनको मिल पाए।
0: तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि आम जो है वो एक न्यूट्रिशियस फ्रूट क्रॉप है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी, ये हमारा सिर्फ मिथ है कि हम इसे नहीं खा सकते हैं, कि डायबिटिक जो पीपल हैं वो आम नहीं खा सकते हैं। अगर एक निश्चित क्वांटिटी में इसे खाएं तो वो उनको हेल्थ बेनिफिट ही करेगा। तो वहां पर हम जो कम TSS वाली जो वैरायटीज हैं या मीडियम TSS जिनका है उनको प्रेफर कर सकते हैं, और जिनका TSS एसिड रेशियो जो है बैलेंस्ड रहता है तो वो वैरायटीज उन लोगों के लिए काफी उपयुक्तम है। जैसे मैंने बात की पूसा अरिनिमा, तो इसका लगभग 18 के आसपास TSS आता है, तो मीडियम TSS है, बहुत ज्यादा मीठी नहीं है, तो आराम से ऐसे लोग जो है इस वैरायटी को खा सकते हैं।
1: यानी जो बहुत मीठा आम हो उसकी जो है 2-3 फांक कम खा ले, और जो थोड़ा सा कम मीठा हो उसको जो ज्यादा खा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहें आपसे कि भी 1-2 वैरायटीज अगर हम लगाना चाहें जो सबसे अच्छी क्वालिटी ही हो, तो उसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो किसान भाई हैं, अब पॉपुलर जो हमारी वैरायटीज आज तक रही हैं, जैसे यूपी को तो सब जानते हैं, मलियाबाद रीजन जो है, दशहरी वहां का जो उसकी मिठास है, लेकिन TSS काफी ज्यादा है। और दूसरी चीज ये है कि अल्टरनेट बियरिंग है, एक साल फल आएगा तो दूसरे साल जो फल फसल है वो या तो आम बहुत कम आएगा
1: जी।
0: तो हमारे किसान भाई जो है वो रेगुलर प्रॉफिट ले सकें, इसके लिए हमें सबसे पहले उन्हें हर साल फल फसल देने वाली वैरायटीज को प्रेफर करना पड़ेगा, वो उन्हें बतानी होगी
1: जी।
0: दूसरी ये है कि आजकल जैसे मैंने पहले भी कहा कि लैंड लिमिटेड है, तो जो कम प्लांटिंग डिस्टेंस पे लग जाए, जो हमारे कन्वेंशनल मेथड है जिसमें ये विग्रेस वैरायटीज लगती हैं, तो वो 6x6, 10x10 इतनी डिस्टेंस पे लगती है, तो 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ प्लांट्स कम होंगे। तो अगर हम आम्रपाली की बात करें तो ये 2.5-2.5 मीटर पे लग जाती हैं, तो कम डिस्टेंस में भी आप जो है नंबर ऑफ प्लांट लगा करके अच्छे खासी मात्रा में जो है फल का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा ये ड्वार्फ नेचर का है, तो जो आपके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, हार्वेस्टिंग है, वो भी इजीली हो जाएगी। फिर आप ग्राफ्टिंग मेथड से तैयार किया गया आम जो है वो 3rd साल से ही फल देने लगता है, तो किसानों की एक इनकम भी शुरू होने लगती है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कैरोटीनॉइड्स वगैरह काफी अच्छा है, जो आपका फल है लगभग 180 से 250 ग्राम के आसपास होता है। तो आजकल क्या है कि जो लोग थोड़ा कम क्वांटिटी में खाना चाहते हैं, तो उस तरह से भी ये वैरायटी जो है सुटेबल है, पूरा फ्रूट खा सकते हैं
1: जी। ये तो बहुत ही अच्छी आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी है। और कुछ किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कई बार ये होता है कि कुछ पौधे जो है वो ऊंचाई के होते हैं, कुछ जो है थोड़े से बोने होते हैं, लेकिन उनका जो फल होता है वो उतना ही आता है, तो क्या ऐसा भी कुछ है?
0: इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा संस्थान इसमें सबसे सर्वप्रथम है कि अभी हमने 2 रूट स्टॉक जो है वो रिलीज किए, पूसा आम मूलव्रंथ 1 और पूसा आम मूलव्रंथ 2। अब मैंने आपको बताया कि वैरायटीज तो हमने डेवलप कर ली है, जैसे लेट आ रही है सीजन में, अगस्त में भी आ रही है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो ज्यादा है तो कम प्रेफर करेंगे। तो उसकी हाइट को रिड्यूस करने के लिए अगर ऐसे रूट स्टॉक पर हम उन वैरायटीज को लगा दें तो वो ऑटोमेटिकली जो है ड्वार्फ स्ट्रेचर लेने लगेगी और किसान भाइयों को उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसमें हमारा है पूसा आम मूलव्रंथ 1, जो कि पूसा अरिनिमा वैरायटी के लिए काफी सुटेबल पाया गया है यहाँ की कंडीशंस में
1: जी।
0: और दूसरा है हमारा पूसा आम मूलव्रंथ 2, जो कि हमारी अदर सेमी विग्रस वैरायटी है। पूसा अरिनिमा को तो ये करता ही करता है, इसके साथ में ये पूसा सूर्या को और आम्रपाली जो है इसको भी हाइट रिड्यूस करने में मदद करता है। तो ये जो 2 रूट स्टॉक हैं, इनमें से मैं ये भी बताना चाहूंगी कि रूट स्टॉक नॉर्मली जो उनके फल हैं वो खाने योग्य नहीं होते हैं, जैसे पूसा आम मूलव्रंथ 1 है, लेकिन पूसा आम मूलव्रंथ जो 2 है उसकी खास बात यह है कि उसके फल भी काफी अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, और किसान भाइयों को उनसे भी जो है इनकम जनरेट हो सकती है।
1: जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे ये ख्याल आया कि बात करते करते जो हमारे किसान भाई हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर, तो मुझे ये लगा कि हमारे किसान भाई ये भी चाहते हैं कि संकर किस्में और जो एक प्रचलित किस्में हैं, तो इन दोनों में से अगर उनको च्वाइस करना हो किसमें उनको बेनिफिट ज्यादा होगा?
0: देखिए, इसमें मैं आपको एक जेन्युइन आंसर ये करना चाहूंगी कि होता क्या है ना कि जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है
1: जी,
0: कि दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा
1: नाम
0: है,
1: से जाने जाते
0: जब भी हम मार्केट में जाएंगे है ना, आम खरीदने जाएंगे कि भैया इसको आप दीजिए है ना, क्योंकि हमारा टेस्ट, हमारे टेस्ट बर्ड वैसे डेवलप हो रखे हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किसान भाइयों तक ये संदेश मैं भी देना चाहती हूँ कि जो नई वैरायटीज हम विकसित कर रहे हैं कैसे वो फार्म से टेबल पे जाएंगी, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा प्रयास करने होंगे। तभी ये वैरायटीज जब तक मार्केट में आएंगी नहीं, कंज्यूमर इसे यूज नहीं करेगा, तो इनकी पॉपुलैरिटी इनहांस हो ही नहीं सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप उस संस्थान आए, एक दो पेड़ लगाएं, उसके बाद तो आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, कायिक प्रवर्धन से आप खुद भी नंबर ऑफ प्लांट लगा सकते हैं अपने फील्ड में
1: जी।
0: और इन जो वैरायटीज को है इसमें हमारा मीडिया पर्सन अगर हेल्प करे, फार्म से टेबल पे आने में इसकी पॉपुलैरिटी को इन्हांस करे, तो एक अच्छा शुरुआत हो सकती है जिससे कि पूसा संस्थान द्वारा जो विकसित किस्में हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अम्रपाली जो है उसकी सक्सेस स्टोरी अब सब जानते हैं कि चाहे आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, चाहे आप उड़ीसा में देख लीजिए, इवन असम में देख लीजिए, काफी अच्छा वो परफॉर्म कर रही हैं। सदर्न पार्ट में आप देखेंगे कि जो बैगन पल्ली जो है आम है, लेकिन अर्ली आ जाता है, उसके बाद फिर आम का थोड़ा मिस करने लगते हैं लोग। तो वहां पर हम इन वैरायटीज को जो कि थोड़ा सा लेट हैं या मिड जुलाई तक आ रही हैं या अगस्त फर्स्ट वीक तक आ रही हैं, अगर ग्रो करें हमारे किसान भाई तो नो डाउट एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आम जो है वो लंबे समय तक बरकरार भी हमारे कंज्यूमर्स के बीच में रह सकता है।
1: क्या बात है, मतलब वो जो आम की मिठास है वो तो कभी भी कम नहीं हो सकती है। अगर डॉक्टर साहब कोई हमारे किसान भाई उसकी वैरायटीज को लेना चाहते हैं तो पूसा संस्थान में उनको कहाँ आना होगा? सबसे पहले ये भी दिमाग में प्रश्न आता है कि अगर हम आम का पौधा लेने जा रहे हैं, उसकी पौध लेने जा रहे हैं या उसकी वैरायटी के बारे में हमें जानकारी मिल गई है तो कितनी कॉस्ट उसकी होगी? क्योंकि कुछ किसान भाई कहेंगे कि हमें पैसे भी तो लेकर जाने हैं ना, इतनी दूर जाएंगे खरीदारी के लिए तो पैसे तो होने चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी प्लांट की जो कॉस्ट है वो क्या होगी?
0: एक तो नंबर ऑफ प्लांट्स चूंकि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो बहुत ज्यादा हम एक पर्सन को प्रोवाइड नहीं कर सकते, हालांकि 2 से 4 पौधे पर पर्सन हम दे देते हैं, उसके बाद वो खुद उन्हें सेल्फ प्रोपेगेट भी कर सकते हैं ग्राफ्टिंग मेथड्स के द्वारा। और कॉस्ट जो है बहुत ही नॉमिनल सी रखी गई है, 150 से 200 तक अकॉर्डिंग टू वेराइटी ये कॉस्ट है, तो 1 से 2 प्लांट वो परचेस कर सकते हैं। और ये जो पौधे की उपलब्धता होती है ये रेनी सीजन में रहती है, जैसे मुख्यतः ये जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक में हमारे संस्थान में पौधे जो है इनके उपलब्ध रहते हैं। जो वेराइटीज हमने विकसित की है, फल एवं प्रौद्योगिकी संभाग है उसका जो फोन है 2584-3214, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक फॉर्म जो है उसे फिल करना होता है, उसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है, उसके बाद आप कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट करके अपना जो प्लांट है उसे बुक करा करके ले सकते हैं
1: जी। अगर कोई बहुत दूर बैठा है और पूसा संस्थान में नहीं आ पाता है तो उसके लिए भी क्या कुछ सुविधा रखी गई है?
0: देखिए, अभी हम इस तरह से पोस्ट तो नहीं कर पा रहे हैं प्लांट्स को, क्योंकि व्यस्तता इतनी ज्यादा होती है और प्लस फैसिलिटीज कितनी है उस कार्य को करने के लिए, तो वो कभी भी अगर उनके कोई रिलेटिव रहते हो या उनका कोई नॉन पर्सन है यहाँ पे, उनके थ्रू बुक करके वो अपना जो प्लांट है उसे ले सकते हैं।
1: तो आज हमने आम की बात की है, ये आम नहीं रहेगी, ये तो बहुत ही खास हो गई, क्योंकि हमारा जो आम की वैरायटीज हैं वो इतनी ज्यादा हैं और किसान भाइयों को इसके बारे में रोचक और उपयोगी जानकारी आप दे ही रही हैं। तो चलते चलते आप एक बात और बताइए कि जो किसान भाई पहली बार आम की किस्में लगाना चाहते हैं वो कौन सी किस्म लगा सकते हैं?
0: जी मैं मतलब इसको प्रेफर जो मैं करूंगी आम्रपाली को करूंगी। इसके अलावा जो हमारे न्यूली रिलीज हाइब्रिड्स हैं, पूसा अरिणिमा है, पूसा सूर्य है, पूसा श्रेष्ठ है, ये काफी अच्छे हैं। पूसा मनोहारी है, पूसा दीप शिखा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन्हें जब तक हम लगाएंगे नहीं और इनके जो फल है मार्केट में आएंगे नहीं, तब तक ये हमारे कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा? तो जो संस्थान ने अभी रिलीज किए हैं वेराइटीज उनको जरूर मैं

0: खाने के लिए अपना जो है सजेस्ट करूंगी और रिकमेंड करूंगी मैं।
1: जो हमारे किसान भाई है वो आम की जो किस्म है वो जरूर लगाएं, और ये डरे नहीं कि मैं पहली बार लगा रहा हूं तो मुझे इसमें कितना प्रॉफिट होगा या मैं कहीं लॉस में तो नहीं चला जाऊंगा, क्योंकि आम एक ऐसा फल है जो कि पूरे वर्ष ही खाया जाता है, कभी अचार के रूप में, कभी चटनी के रूप में। बस डॉक्टर साहब अब लगता है कि उसके जो उत्पाद बनाकर भी हमारे किसान भाई उससे लाभ ले सकते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसान भाई, हमारी बातचीत है उससे काफी उनको जानकारी मिली होगी और कुछ ने तो ठान भी लिया होगा कि पूसा संस्थान में आएंगे और यहाँ से आम की जो उन्नत किस्में हैं उनको लेकर जाएंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आई और हमें इतनी रोचक और अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों अभी आप जानकारी ले रहे थे, विषय था हमारा पूसा संस्थान द्वारा विकसित आम की उन्नत किस्में और उनकी विशेषताएं। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर निमिषा शर्मा, वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी आकाशवाणी की सहयोगी कमलेश मुद्गल जी। और अब समय है कि हम आम की तो बात हमारी खास हो ही गई, अपने किसानों से कहेंगे कि वर्षा जल संचयन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक लोक संगीत सुनें।

0: बिल्कुल पानी में लहरें ले रहे राजा बेल सिंघाड़े के। अमित, पानी की कितनी उपयोगिता है ये इस लोक संगीत से पता चल गया।
1: बिल्कुल आपने सही कहा सुषमा भाई, पानी ना होगा तो फिर बेल कहाँ लहरें लेगी, ये भी तो देखना है ना।
0: यही तो बिना पानी के तो सिर्फ बेल नहीं, कोई भी आम आदमी नहीं रह सकता जिंदा। तो पानी की उपयोगिता बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, किसानों के लिए तो है ही, लेकिन इस समय जब बरसात का मौसम हो, मॉनसून आ जाता है, तो उस समय पानी जो है वो बिल्कुल अमृत जैसा हो जाता है। अमित,
1: बिल्कुल आपने सही कहा
0: है ना,
1: आवश्यकता होती है इसको संगवाने की, इसके संरक्षण की, इसके संचयन की।
0: बिल्कुल, और संचयन के लिए हम किसान भाई तो बहुत जगह ऐसी बना देते हैं जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर बाद में उसकी सिंचाई उससे कर लेते हैं, लेकिन आम लोग भी पानी संचित कर सकते हैं अपने पेड़ पौधे, जो उन्होंने छोटी मोटी बगिया लगा रखी है, फूल पौधे लगा रखे हैं, कोई भी बड़ा सा एक जैसे कहते हैं ड्रम भी लोग रख लेते हैं छतों पर, जिनके पास सुविधा है, उपलब्ध है ये सब चीजें, तो वो इस तरह से भी पानी संचित कर सकते हैं। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इस बारिश के पानी में।
1: आपने सही कहा सुषमा, अभी तो जो है यदि हम किसानों के हित की बात करें, किसानों की दृष्टि से देखें तो फार्म पॉन्ड्स, खेतों में जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं उनके एक कोने में छोटे छोटे तालाब किसान तालाब बनाना शुरू किए हैं, और जो आपने बात की कि उसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारी मृदा और हमारी फसल को बहुत ही अधिक वृद्धि और विकास की ओर लेके जाती है। हाँ। तो निश्चित रूप से हमें ये कदम उठाना चाहिए।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ऐसे जो पॉन्ड्स बनाए जाते हैं वो मिलजुल कर कई किसान अपने हिसाब से उस पे जो भी खर्चा पानी आता है वो सब करके कर सकते हैं, क्योंकि लाभ जो है उनको सभी को मिलने वाला है।
1: बात बिल्कुल, मैं हाँ। थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा कि खर्चे की बात जहां आपने कही है किसान हाँ। भाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ सरकार भी उसमें सब्सिडी देती है, सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: अब ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर सरकार योगदान दे रही है तो ऐसे कामों को तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। और इस तरह के पॉन्ड बनने पर क्या है कि मछली पालन जैसा भी एक अपना बिजनेस शुरू हो सकता है, एक आपका व्यवसाय बन सकता है, तो खेती के साथ साथ एक दूसरा साइमल्टेनियसली एक और आपका व्यवसाय चल सकता है। तो ऐसे और भी कारण हैं जहां आप पानी का संचयन कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं, और घरों में जो हमारा पीने का पानी है उसकी भी बचत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल भाई,
0: पानी को ऐसे ही ना वेस्ट करें, बचत करें। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि जल संचयन की तो बात हो चुकी है अमित, और विदा भी लेंगे हम अपने किसान भाइयों से, क्योंकि समय हो गया है उनसे विदा लेने का। तो बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर, और इस कार्यक्रम के संयोजन थे शिवनंदन लाल जी। तो अब मैं सुषमा और मेरे साथ अमित आज्ञा चाहते हैं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का

0: शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की आज बातचीत हुई। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हुई। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके और दीपक बालियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई थी। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद में आज लगातार पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहने पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि आज मंत्रिमंडल बैठक में पेपर लीक के लिए सख्त उपाय और मजबूत कानून लाने पर निर्णय लिए जाएंगे। दोनों सदनों में आज करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानैनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। सुरक्षा परिषद की खुली बहस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भ्रामक बयानबाजी के बजाय अपनी आंतरिक चुनौतियों के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। यह टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राम प्रकाश, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन भावन। जी हाँ, ये वही प्रोग्राम है जहां आप आपके मन के करीब जो गीत हैं उनकी फरमाइश हम तक भेजते हैं और साथ ही हमें अपने प्यारे प्यारे संदेश भी भेजते हैं। तो भाई, देर किस बात की, जल्दी से हमारा ईमेल आईडी नोट करिए और लिख भेजिए आपका प्यारा सा संदेश। हमारा मेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। जी हाँ, एक बार फिर नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com। और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। साथियों, आपके मेल, आपका व्हाट्सएप हम तक पहुंचे, इसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म खानदान से, आवाज लता मंगेशकर की, गीत नक्श लयालपुरी का और संगीत खयाम का। दोस्तों ये मुलाकात बहाना है, लेकिन हम तो आपसे मिलने के बहाने ज़रूर ढूंढते हैं। जब आपके प्यारे संदेश हम तक पहुंचते हैं उन्हें पढ़कर आज के प्रोग्राम में शामिल करके हमें बहुत खुशी होती है। तो भाई अगर आपने भी अब तक हमें संदेश नहीं भेजा है तो भेज दीजिए, और अगर आपके दिल के करीब कोई खूबसूरत लाइन है और आप चाहते हैं कि हम उसे आज के कार्यक्रम में शामिल करें तो वो भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि पहला मेल हम तक कहाँ से आया है। दोस्तों आज के कार्यक्रम का पहला मेल हमें आ चुका है शेरकोट जिला बिजनौर से, और ये मेल हमें कर रहे हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया और साजदा रानी हिना कौसर जी। इसी के साथ अगला मेल हमें मोताला महाराष्ट्र से आया है, और ये मेल हमें कर रहे हैं विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, गौरी और ओम कुमार सुरलकर, ये हमें मेल कर रहे हैं। इसी के साथ भोपालगढ़ राजस्थान से हमें मेल पहुंच चुका है, इस मेल को लिख रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। दोस्तों इसी के साथ अगला मेल हमें मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आया है, और इसे लिख रहे हैं अभिजीत गावानकर राही, श्रीमती सरिता गावानकर, परिणीता सिद्धांत गावानकर, लाडला टुक टुक गावानकर, एकांश सुमित, कुमारी धवनी और परी। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है, और ये मेल लिख रहे हैं बल्ली मारान से अरहान अहमद सूफिया नवाब। जी हाँ, और एक और मेल हमें गंज डुंगवारा से आया है, और इसे लिख रहे हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगवाला चौक जालंधर से ये मेल हमें कर रहे हैं। इसी के साथ जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमें मेल आ चुका है, और इसे लिख रहे हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना जी। तो इन खूबसूरत मेल के लिए आपका शुक्रिया श्रोताओं, आप भी हमें मेल करिए, हम उसे शामिल करेंगे। और आप श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

यहाँ फिल्म राम लखन से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का और बोल आनंद बख्शी के।

दोस्तों आइए रुख करते हैं एक बार फिर मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि किसका संदेश हम तक पहुंचा है। तो दोस्तों ये संदेश हमें छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से आया है और इसे लिख रहे हैं मोहम्मद इशहाक खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा और इन्हीं के साथ रायपुर से शामिल हैं इस मेल में मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। जी हाँ, आपका शुक्रिया इस खूबसूरत मेल के लिए। और इसी के साथ मोहाली पंजाब से हमें मेल आया है बब्बल मल्होत्रा का। इनके साथ इस मेल में शामिल हैं ओम प्रकाश मल्होत्रा और धन्यवाद कह रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि सर इस प्रोग्राम में हमारा गीत हमारा नाम शामिल करिए, आपका प्रोग्राम हम लाइव सुन रहे हैं। तो जी शुक्रिया आपका इस सुंदर मेल के लिए। इसी के साथ हमें और एक मेल आया है पंकज शर्मा का। इनके साथ इस मेल में शामिल हैं कमल, सुधीर जी, संदीप जी और इन्होंने थोड़ा ठीक स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा है, करनाल से ये मैसेज हमें कर रहे हैं, तो शुक्रिया आपका। इसी के साथ एक और मेल हमें जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से आया है और इसे लिख रहे हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम, अर्णव, राखी, तृप्ति और दुर्गेश्वरी जायसवाल। इसी के साथ एक और मेल हमें आ पहुंचा है चौखंटी बुलंदशहर से और इसे लिख रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। इसी के साथ कस्बा बिलराम से हमें मैसेज आया है और इसे लिख रहे हैं इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब। और इसी के साथ एक और मेल हमें आया है बिमला अनेजा और सतीश अनेजा जी का और ये एक खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश पर आप तक आपकी पसंद का गीत पहुंचा रहे हैं, तो लीजिए आनंद लीजिए इस खूबसूरत गीत का। और दोस्तों अगर आपने हमें मेल नहीं किया है तो जल्दी से मेल कर दीजिए, हम इंतजार करेंगे आपके संदेश का।

0: फिल्म मेरे जीवन साथी से किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम मनभावन में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, मिलते हैं अंतराल के बाद।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम मनभावन सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ।

आइए दोस्तों, रुख करते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि इस बार किसका मेल हम तक पहुंच चुका है। तो इस बार जो सबसे पहला मेल हम तक पहुंचा है वो है अक्षय रामेरकर, रुद्रा रामेरकर, हर्षा रामेरकर और पूरे रामेकर परिवार की तरफ से। ये मेल हमें अमरावती महाराष्ट्र से आया है। इसी के साथ अगला मेल हमें प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ पलारी से। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है, ये लिख रहे हैं प्रिय होस्ट राम प्रकाश जी, मेरा भी मेल शामिल करिए, उस पर भी गौर फरमाइए। तो लीजिए जी, हमने आपका मेल शामिल कर लिया। ये मेल हमें बिहारी कॉलोनी दिल्ली से लिख रहे हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और इनके साथ इस मेल में चंडीगढ़ से शामिल हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। इसी के साथ अगला मेल हमें सनावत से आया है और ये मेल हमें लिख रहे हैं शेख मूसा मोहसिन और ये एक खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है सहारनपुर से, इस मेल को लिख रहे हैं आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली नारंग। इसी के साथ एक और मेल हमें पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश एटा से, ये मेल हमें लिख रहे हैं एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सर फरोज शेख, गुल फराज शेख और बेबी मुस्कान। इसी के साथ राशिद हुसैन जी का हमें मेल आया है और एक और मेल हमें आ चुका है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां का और ये हमें आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से मेल कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए इन श्रोताओं की फरमाइश पर शामिल करते हैं आज के कार्यक्रम में एक खूबसूरत गीत। और आपने भी अगर हम तक मेल नहीं किया है तो नोट कर लीजिए हमारा मेल आईडी और लिख भेजिए अपना प्यारा सा संदेश। हमारा मेल आईडी है FM Gold AIR Delhi @

दोस्तों, फिल्म अभिमान से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में, संगीत एसडी बर्मन का और बोल मजरूह सुल्तानपुरी के। दोस्तों, अगला मैसेज, अगला संदेश हम तक पहुंचा है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष का। ये खूबसूरत मेल हमें लिख रहे हैं और साथ में शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारा मैसेज आपको नजर क्यों नहीं आता। जनाब, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम आपके मैसेज जरूर शामिल करते हैं। और इसी के साथ अगला मेल हमें आया है संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा पाटिल का। प्रथमेश पाटिल इनके साथ इस मेल में शामिल हैं और ये मेल हमें भेजा है नसवाला चौक मलकापुर से। इसी के साथ अगला मेल हमें मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से आ चुका है और इस मेल को लिख रहे हैं श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, कुमार सरवद, कुमारी प्रणाली, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख। इसी के साथ अगला मेल हमें आया है पूजा लखेरा का और इनके साथ इस संदेश में शामिल हैं यश कुमार, नायरा कुमार, नायरा लखेरा जी शामिल हैं और ये लिख रहे हैं वर्मा जी मेरा मेल भी शामिल करिए। तो लीजिए जी, हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया। इसी के साथ एक और खूबसूरत मैसेज हमें दुर्गा कॉलोनी हासी से आया है और इसे लिख रहे हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी डब्बू, ये मैसेज लिख रहे हैं और साथ ही लिख रहे हैं प्रसारक सर राम प्रकाश जी हार्दिक अभिनंदन। तो जी, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। इसी के साथ एक मेल हमें उत्तर प्रदेश गोला शहर से प्राप्त हुआ।

है और इस मेल को लिख रहे हैं राहुल वर्मा, नीलम वर्मा, आशिका वर्मा, नेहा वर्मा, लक्ष्य वर्मा, अजय वर्मा और खुशबू वर्मा। ये एक खूबसूरत गीत की फरमाइश हमसे कर रहे हैं, तो लीजिए इनकी फरमाइश पर सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

0: फिल्म तेरे नाम से ये खूबसूरत गीत आप अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे। संगीत हिमेश रेशमिया का और बोल समीर के। दोस्तों, आज के कार्यक्रम अनभावन में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
6: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
7: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
6: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
7: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
6: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम मन भावन सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए दोस्तों, एक बार फिर रुख करते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं किसका संदेश हम तक पहुंचा है। तो ये संदेश हमें उत्तम नगर से आया है, दिल्ली से आया है और इसे लिख रहे हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। और इसी के साथ अगला मेल हमें आया है, ये लिख रहे हैं RJ राम प्रकाश सर। आदाब तो जी, आपको भी आदाब। ये एक गीत की फरमाइश कर रहे हैं और ये मेल हमें कस्बा गुन्नर UP से लिख रहे हैं। इसको लिखने वाले हैं फारूक अली खान, फौजी फराज, फरीन फरान, फारिया ताहिरा। और बुलंदशहर से इनके साथ इस मेल में शामिल है मिस्टर अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है, लिख रहे हैं कार्यक्रम मन भावन पेशकर्ता आदरणीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो जी आपको भी नमस्कार, आपका भी अभिनंदन। आप लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी इस खूबसूरत संदेश के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेल हमें लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी लिख रहे हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। इसी के साथ अगला मेल हमें दिल्ली से आया है और ये लिख रहे हैं अजहर अहमद अलवी, इरशाद अहमद अलवी और सहाना बेगम अलवी। इसी के साथ अगला मेल हमें बबलू कश्यप, नवाब अहमद भारती, अशरफ अली, महेश अग्रवाल, सिराज मिथुन का दिल्ली से मेल हमें आया है। और एक और मेल हमें पटेल नगर मौलौत से लिख रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया। और ये लिख रहे हैं कि किसी भी गीत में इस मेल को शामिल किया जाए। तो लीजिए, हमने आपका मेल शामिल कर लिया। इसी के साथ एक और मेल हमें सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड और चंद्र कला रेवाड का आया है। ये लिख रहे हैं, मनभावन कार्यक्रम पेश करता राम प्रकाश जी, सादर नमस्कार। तो जी आपको भी नमस्कार। एक लंबे अरसे के बाद आपकी खूबसूरत आवाज का प्रोग्राम में अभिनंदन करते हैं जी। आपका भी शुक्रिया इस सुंदर मेल के लिए, और आगे भी आपने बहुत कुछ लिखा है। और इसी के साथ एक और मेल हमें आया है सोमेश्वर से, और ये मेल लिख रहे हैं दीपक जोशी, गणेश जोशी, और ये

खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो श्रोताओं, इनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, कारवां फिल्म से ये खूबसूरत गीत आप मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे। संगीत आर डी बर्मन का और बोल मजरूह सुल्तानपुरी के। आइए चलते चलते कुछ और संदेश हम आज के कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, अगला संदेश हमें आया है सुरेश चौरसिया और श्रीमती सरोज चौरसिया जी का। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से हमें ये मैसेज कर रहे हैं और कोई भी गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। इसी के साथ अगला

मेल हमें आया है, ये लिख रहे हैं, नमस्ते राम प्रकाश जी, 3 बजे का मैसेज किया हुआ है, कहीं इग्नोर कर दिया आपने? तो नहीं जनाब, हमने इग्नोर नहीं किया, देखिए हमने शामिल कर लिया। और इसी के साथ एक और मेल हमें आया है अनीता मुखी, सिमरन मुखी जी का, इनके साथ हैं सुदर्शन मुखी जी, ये लिख रहे हैं, अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमने 3:29 पर आपको मेल भी किया है और मैसेज भी किया है, लेकिन आपने हमारा मेल शामिल नहीं किया। देखिए हमने कार्यक्रम के लास्ट में आपका मेल शामिल कर लिया, क्या करें, आपके संदेश इतने होते हैं और इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि किसको छोड़ें और किसको शामिल करें ये पता ही नहीं चलता। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके संदेश आज के कार्यक्रम में शामिल करें। दोस्तों आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुलाकात होगी आपसे ठीक 4:10 पर, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत हुई। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही।
1: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: सीजेपी के प्रतिनिधि आशुतोष रांका ने कहा कि बातचीत अभी आगे भी होगी।
2: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में इस समय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
4: केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ।

0: पहला प्रोजेक्ट है जो कि अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बिल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार पांचवें दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दूसरे स्थगन के बाद राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में और संशोधन करना है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to the media after the meeting, Mr. Nadda said, during the meeting, they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
1: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
0: Union Minister Ashwini Vaishnav is now briefing the media about Cabinet's decision in the meeting held today. We now go over live to the briefing.
2: प्रयास चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रिफाइड और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे है स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%. हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5,000 किलोमीटर्स 5,000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है और भारत का 135,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है तो कंपैरिजन अगर करो और उसके बाद में चाइना आता है नंबर थ्री पे चाइना इज अबाउट 80 के आसपास परसेंट है और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं तो ओवरऑल आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेरी गुड और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज डन वेरी वेल एज ऑल ऑफ यू अवेयर पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी कल या रादर आज सुबह तक इसके 1,000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए 1,000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच एंड एवरी पैरामीटर वी आर मेजरिंग अबाउट सम 130 ऑड पैरामीटर्स कंटिन्यूसली हम मेजर कर रहे हैं उसमें कैसा उसका बिहेवियर है किस तरह के उसके पैरामीटर्स के वैल्यूज आ रहे हैं वो सब चीज़ें मेजर कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट से 16 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा कार्गो आएगा दैट इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज यानी 27 लाख ट्रीज अगर हम लगाते उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता कम होता एटमोसफेयर से एब्जॉर्ब होता उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा
0: Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts

नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
4: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
3: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त है रोजगार समाचार का।

0: analogous post on a regular basis or be officers at the level of deputy secretary or equivalent with 5 years of regular service in level 12. Applications must be submitted through proper channel within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The detailed advertisement, eligibility criteria, application format and future core agenda are available on the official website of the Ministry of Health and Family Welfare. Kindly do look up www.mohfw.gov.in. You could also look up the PMSSY division. The website is www.pmssy.mohfw.gov.in. Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, has invited applications to fill up one post of a dental hygienist on deputation, including short-term contract basis. The post is classified under pay level 6 as per the 7th CPC. Eligible candidates can apply in the prescribed application format available on the hospital website. The appointment will be made on deputation basis and candidates must fulfill the required eligibility conditions as prescribed by the hospital. Interested applicants should submit their applications within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility criteria, application format and other instructions, candidates may visit the official website at www.rmlh.nic.in. I repeat, it is www.rmlh.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ में परामर्शदाता एक पद और युवा पेशेवर खेल वित्त आईटी एवं एआई के 5 पद रिक्त हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए देखिए एआईयू की वेबसाइट www.aiu.ac.in। संघ लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रधानाचार्य के पद के लिए 124 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 69 रिक्तियां अनारक्षित हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 11, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 18, अनुसूचित जाति के लिए 16 और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 रिक्तियां हैं। कुल मिलाकर 124 रिक्तियों में से पुरुष और महिला के आधार पर यदि देखें तो अनारक्षित पुरुष 37, महिला 32, ईडब्ल्यूएस वर्ग 7, पुरुष 4, महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 7, पुरुष 11, महिला अनुसूचित जाति 13, पुरुष और 3 महिलाएं, अनुसूचित जनजाति 8 पुरुष और 2 महिलाएं। इस प्रकार से 72 पुरुष और 52 महिलाओं की रिक्तियां उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप प्रधानाचार्य के लिए 704 रिक्तियों पर भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सभी रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु आप देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट upscionline.nic.in। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड सहायक कार्यकारी अभियंता सिविल के कुल 5 पदों के लिए और सहायक कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल के कुल 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विज्ञापन और अन्य सभी जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.dsiidc.org। मुंबई पत्तन प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी विकिरण चिकित्सा के एक पद

0: के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रतिनियुक्ति आधार पर वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार नोट करें कि अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 है और पात्रता मानदंड आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार सीधी भर्ती के आधार पर संयुक्त प्रबंधक प्रशासन के एक पद को भरने के लिए पात्र एवं इच्छुक भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पात्रता और अन्य शर्तों के लिए आवेदक NCPOR की वेबसाइट अर्थात www.ncpor.res.in देख सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: हेलो मुकेश, हेलो एंड वेरी गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 MHz। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट मुकेश, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits.
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
2: Showdown continues in Parliament over neat paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition's uproar.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए।
2: इंडिया कॉल्स आउट यूनाइटेड नेशंस फॉर इग्नोरिंग रिप्रेशन इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एक्यूजेस इस्लामाबाद फॉर सिस्टमैटिकली क्रशिंग राइट्स ऑफ द पीपल।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: And India's Anahat Singh enters the semi-finals of the World Junior Squash Championships. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Income Tax Day or Aikar Divas 2026.
1: बिल्कुल अभिषेक, जब भी भारत में कोई नया राजमार्ग बनता है, उपग्रह का प्रक्षेपण होता है, देश की सुरक्षा मजबूत होती है या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के जरिए अवसर बनते हैं, तो उस कामयाबी में लाखों भारतीयों की हिस्सेदारी होती है।
2: Yes, listeners, and have you ever wondered where the money comes from to build a new flyover, launch a satellite, strengthen our armed forces, or provide disaster relief during floods and earthquakes? The answer lies with millions of honest taxpayers across the country. They fulfill a simple but an important responsibility of paying the taxes. 24th of July is celebrated as Income Tax Day or Aikar Divas, marking 166 years of India's income tax journey and saluting every honest taxpayer who helps shape the nation's future.
1: बिल्कुल, हर महीने वेतन पाने वाले कर्मचारी के वेतन से आयकर काटा जाता है। छोटे व्यापार का मालिक समय सीमा से पहले सावधानी से आयकर रिटर्न फाइल करता है। एक युवा व्यवसायी उत्साह और घबराहट के साथ अपना पहला आयकर रिटर्न दाखिल करता है। ये पल भले ही सामान्य लगें, लेकिन ये सब मिलकर भारत की विकास यात्रा में असाधारण योगदान देते हैं।
2: एंड मुकेश, लेट मी नाउ टेल आवर लिसनर्स द स्टोरी ऑफ इनकम टैक्स। Well, income tax in India began 166 years ago on this day in 1860 when Sir James Wilson, the first finance member of the Governor General's Council, introduced income tax in British India to help the government recover from the financial crisis that followed the revolt of 1857.
1: बिल्कुल, जो शुरुआत में एक अस्थाई उपाय था, वो धीरे-धीरे एक व्यवस्थित कर प्रणाली में बदल गया। 1886 के इनकम टैक्स एक्ट ने इसका पहला व्यवस्थित ढांचा तैयार किया। बाद में 1922 में इनकम टैक्स एक्ट ने टैक्स प्रशासन को और मजबूत किया।
2: एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, व्हिच केम इनटू इफेक्ट ऑन द 1st अप्रैल 1962, बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज मॉडर्न इनकम टैक्स सिस्टम, अ लॉ दैट कंटिन्यूज टू गाइड टैक्सेशन इवन टुडे विद रेगुलर अपडेट्स टू मीट चेंजिंग टाइम्स।
1: बिल्कुल, वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पूरे देश में प्रत्यक्ष कर प्रशासन की देखरेख करता है।
3: On this occasion, the Income Tax Department has expressed its heartfelt gratitude to all taxpayers whose contributions have played a vital role in India's development. Income tax law was first introduced in 1860 by Sir James Wilson. A comprehensive act was passed in 1922 for a structured taxation system. 1924 saw the formal recognition of the Central Revenue Board. In 1946, recruitment of Group A revenue officers began. A new Income Tax Act was enacted in 1961 to streamline administration. Computerization began in 1981, followed by Bengaluru's Central Processing Unit in 2009. In 2021, a revamped e-filing portal was launched, allowing pre-filled return forms. Before computerization, filing returns meant standing in long queues. Now, with pre-filled information and annual information statements, filing has become faster and easier. The Income Tax Department is now actively incorporating the use of AI and data analytics helps prevent tax evasion while ensuring peace of mind for honest taxpayers. The landscape of personal income tax or PIT in India has seen significant growth over recent years. In the financial year 2020-21, gross personal income tax stood at 5.75 lakh crore rupees. In 2021-22, gross PIT collections rose to 7.10 lakh crore rupees. By 2023-24, the personal income tax collections had surged to more than 12 lakh crore rupees. Central Board of Direct Taxes Chairman Ravi Agarwal further advised and urged the income tax payers for the timely and accurate disclosure of tax and refund related information.
1: श्रोताओं, आपने क्या कभी सोचा है कि आयकर प्रणाली असल में कैसे काम करती है? भारत में कर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर कंपनी कर या पूंजी लाभ कर उस व्यक्ति या संस्था द्वारा सीधे चुकाया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है. आसान शब्दों में कहें तो अगर आप आय प्राप्त करते हैं तो आयकर देते हैं और आप सीधे से सरकार को कर चुकाते हैं.
2: यस, एंड ऑन द अदर हैंड एन इनडायरेक्ट टैक्स सच एज जीएसटी और कस्टम्स ड्यूटी इज कलेक्टेड बाय बिजनेसेस फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड देन डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट. सो व्हेन यू बाय अ मोबाइल फोन, clothes or enjoy a meal at a restaurant, the GST included in your bill is an indirect tax.
1: बिल्कुल. और अभिषेक, हर आयकर दाता की पहचान स्थायी खाता संख्या यानी पैन से होती है. ये 10 अंक वाला विशेष अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो जीवन भर टैक्स पहचान के तौर पर काम करता है. कई वेतन पाने वाले कर्मचारियों ने अपनी सैलरी स्लिप पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS भी देखा होगा. ये कमाते ही टैक्स चुकाने के सिद्धांत पर काम करता है जिसमें टैक्स पेयर तक इनकम पहुंचने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है.
2: एंड दोज विद हायर टैक्स लायबिलिटी मे ऑल्सो पे एडवांस टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इफ एनी टैक्स स्टिल रिमेन्स पेएबल आफ्टर कंसीडरिंग TDS एंड एडवांस टैक्स. It is paid a self-assessment tax before filing the income tax return or ITR.
1: और अभिषेक, हम लोगों को जो यहाँ पर पैसे मिलते हैं वो भी TDS कट के ही मिलते हैं.
2: Absolutely.
1: और आयकर रिटर्न सिर्फ एक फॉर्म से कहीं ज्यादा है. ये किसी व्यक्ति की आय कटौती और पहले से चुकाए गए कर का ब्यौरा होता है जिसके आधार पर अंतिम कर देनदारी तय की जाती है. और अगर किसी

0: trust between citizens and the nation. It reminds us of a shared responsibility, and above all, it honors the partnership that helps build a stronger India.
1: बिल्कुल, उस सड़क के बारे में सोचिए जिस पर आप रोज चलते हैं, उस सरकारी अस्पताल के बारे में सोचिए जो हजारों लोगों की रोज सेवा करता है, उस स्कूल के बारे में सोचिए जहां बच्चे बेहतर भविष्य के सपने देखते हैं, या भारत की शानदार उपलब्धियों के बारे में सोचिए, चंद्रयान से लेकर विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक। ये सिर्फ सरकारी परियोजना नहीं है, ये लाखों ईमानदार योगदाताओं के साथ आने वाले नतीजे हैं।
0: Yes, Mukesh, and of course, paying taxes wasn't always as convenient as it is today. There was a time when paperwork meant long queues and multiple visits to government offices. Today, filing income tax returns can often be completed online from the comfort of your home. Digital initiatives like e-filing, faceless assessments, and online taxpayer services have made the process faster, more transparent, and increasingly taxpayer-friendly. And this transformation reflects India's growing commitment to technology efficiency and good governance.
1: लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, क्या कर देना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी है या यह देश के भविष्य में किया गया एक निवेश भी है? हर ईमानदार करदाता बेहतर शिक्षा, मजबूत स्वास्थ्य सेवा, बेहतर अवसंरचना, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिक नवाचार, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और ऐसी अनगिनत सार्वजनिक सेवाओं में चुपचाप योगदान देता है जो हर दिन लाखों लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डालती हैं।
0: एंड बिकॉज नेशन बिल्डिंग इजंट ऑलवेज अबाउट डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, समटाइम्स इट्स अबाउट मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल डूइंग द राइट थिंग ईयर आफ्टर ईयर। सो दिस इनकम टैक्स डे, लेट्स सेलिब्रेट एवरी ऑनेस्ट टैक्स पेयर हुज कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्प्स इंडिया मूव फॉरवर्ड। हैप्पी इनकम टैक्स डे। And as part of a series, People's Padma on Akashvani, in upcoming episode, we speak to the hockey player Savita Punia, who has been honored with the prestigious Padma Shri this year.
2: मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता। मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे, तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है। मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ल्ड पापा के लिए एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था। समय थी और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहाँ पे और काफी अच्छा परफॉर्म किया। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ।
0: And to listen to the conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold today evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on the News on AIR app and the News on AIR official YouTube channel. The program will be broadcast again tomorrow at 9:10 a.m.
1: आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा, मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय के साथ। और अब कार्यक्रम में समय हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। इस क्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को अभिषेक ले चलते हैं पणजी, और अपने श्रोताओं को बताएं कि गोवा का मार्सिल गांव अपने अनोखे चिकहल कालो उत्सव के लिए तैयार हो गया है।
0: एब्सोल्युटली मुकेश, एंड एज द मॉनसून ट्रांसफॉर्म्स गोवा इनटू अ लश ग्रीन पैराडाइज, द विलेज ऑफ मार्सेल इज सेट टू सेलिब्रेट वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट डिस्टिंक्टिव कल्चरल ट्रेडिशंस। द एनुअल चिकहल कालो फेस्टिवल बिगिंस टुमारो विद डिवोशन, ट्रेडिशन एंड कम्युनिटी स्पिरिट। वी हैव अ रिपोर्ट।
3: Nestled amid the scenic beauty of Marshall near the historic Sri Devki Krishna Temple, the three-day Chikhal Kalo Festival will be inaugurated shortly at 6 p.m. Organized with the support of Goa Tourism Development Corporation and the Department of Information and Publicity, this year's celebration continues till July 26 under the theme Rain Ritual Rejoicing, meaning Mar Bath. Chikhal Kalo is celebrated during the monsoon on the 11th day of the Hindu month of Ashad. The festival honors the deep connection between Goa's farming community and Mother Earth. The temple grounds, transformed into a muddy arena by the rains, come alive with traditional games like Chendu Fari and Gilli Danda, inspired by the playful childhood of Lord Krishna. Filled with music, laughter and devotion, Chikhal Kalo offers visitors a memorable glimpse into Goa's

0: That is why we have organized this investment summit on a large scale with the participation by more than 45 departments and organizations of the state and central governments. I am thankful to the donor minister, Sri Sindhia ji, for gracing this business conclave. The business conclave has brought together about 1200 business leaders, promoters, industrialists and entrepreneurs to build Ek Tripura, Shrestha Tripura.
1: A key highlight of the conclave was the focus on deregulation and compliance reduction. During the event, around 300 memorandums of understanding and investment proposals were signed or submitted with an estimated investment value of more than 90,000 crore rupees. With strong investor participation, major investment commitments and renewed confidence in the state's business ecosystem, the Destination Tripura Business Conclave 2026 has laid a strong foundation for industrial growth and economic transformation. For Parikrama, Shuman Bhattacharji, Akashvani, Agartala.
2: And as part of President Murmu's state visit to Romania, she paid tribute at the tomb of the unknown soldier in Carol Park in Bucharest today. She laid a wreath at the memorial dedicated to Romania's unidentified soldiers who made the supreme sacrifice in the First World War. The solemn ceremony was marked by military honors and reflected Romania's enduring respect for its fallen heroes.
3: ये स्मारक उन सैनिकों के प्रति देश की कृतज्ञता का प्रतीक है जिनकी पहचान अज्ञात है लेकिन जिनका साहस और बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की श्रद्धांजलि ने भारत और रोमानिया की उस साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है जिसके अंतर्गत वे अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं। और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं खेल जगत में क्या हलचल चल रही है।
2: The 23rd Commonwealth Games CWG began in Glasgow, Scotland with a spectacular and colourful opening ceremony. King Charles III declared the games open in the presence of Queen Camilla, British Prime Minister N.D. Burnham and Commonwealth Sports President Donald Rucair at the OVO Hydro yesterday evening. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. The Indian contingent led by flag bearer Mirabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain marched into the OVO Hydro Arena with athletes waving miniature tricolours.
3: और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज को हराया और सेमीफाइनल में अनाहत का सामना मिस्र की बार्ब समही से होगा।
2: Five-time world champion Vishwanathan Anand took charge of the International Chess Federation FIDE as interim president after his Russian head Arkady Dvorakovich was placed on the latest European Union sanctions list. Anand will act as the interim president as long as Dvorakovich is subject to the restrictive measures provided by the Swiss and EU laws and regulations in force. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices paired the initial losses and ended 0.43% down today. The Sensex dropped 332 points to end at 76,060, while Nifty slipped 102 points to close at 23,767. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
3: और अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं प्रोफेसर यशपाल को। वो भारत के मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं को निखारने में उनका प्रमुख योगदान रहा है। उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाजा है। यशपाल दूरदर्शन पर टर्निंग पॉइंट नाम के एक साइंटिफिक कार्यक्रम को भी होस्ट करते थे। भारत में उनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। वो शिक्षा में ओवरबर्डन पढ़ाई के सख्त विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को भारत सरकार का कई बार ध्यान आकर्षित किया था। और आज ही पुण्यतिथि है भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव, जिन्हें यूआर राव के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने इसरो के वो पूर्व अध्यक्ष थे। वे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के शासी परिषद के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। प्रोफेसर यूआर राव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और संचार तथा प्राकृतिक संसाधनों के सुदूर संवेदनों में व्यापक उपयोग की दिशा में मौलिक योगदान दिया। उनको भारत सरकार द्वारा 1976 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से और वर्ष

0: 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अपने श्रोताओं को बताएं कि आज ही पुण्यतिथि है असम के प्रमुख कार्यकर्ता तरुण राम फुकन की। उनका जन्म 22 जनवरी 1877 को गुवाहाटी में हुआ था। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन बैरिस्ट्री से प्रारंभ किया था। स्वराज पार्टी के प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा हाथ था। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए तरुण फुकन ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वे महिलाओं की समानता के सदा पक्षधर रहे थे। 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के बारे में जो भी जितनी भी तरफदारी की और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए जो काम किए वो बहुत काबिले तारीफ है।
1: यस, एंड वी आल्सो रिमेम्बरिंग उत्तम कुमार बॉर्न अरुण कुमार चट्टोपाध्याय हु पास्ड ऑन दिस डे इन 1980। ही वाज अ लेजेंडरी इंडियन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सिंगर हु रिमेन्स अ कल्चरल आइकॉन ऑफ बंगाली सिनेमा। Widely regarded as one of the most successful and influential actors in Indian film history, he was revered by generations of audiences and peer artists alike. He was fondly crowned by his massive fan base as the Mahanayak, the great hero. He initially worked as a clerk at the Calcutta Port Trust while acting in theatre. His initial films flopped so badly that the industry jokingly nicknamed him the Flop Master General. His career skyrocketed with the blockbuster comedy Share Chuator. He formed an iconic on-screen romantic partnership with actress Suchitra Sen, delivering historic timeless hits like Agni Pariksha. He gave one of his most critically acclaimed performances in Satyajit Ray's masterpiece Nayak, the Hero, in 1966, playing a complex role heavily inspired by his own real-world superstardom. And he was the first actor to win the National Film Award for Best Actor in 1967 for his legendary work in Antony Firangi and Chiriyakhana.
0: तो क्यों ना उनकी फिल्म का एक डायलॉग सुन लिया जाए।
1: Absolutely.
2: এটা কি নাম দেওয়া যায় বলতো? আবার ওটাকে নিয়ে পড়েছো? আর ওটাকে বিদায় করো, আর তাহলে অন্যত্র ব্যবস্থা করতে হবে, আর নয়তো এখানেই একটা খুন খারাপি হয়ে যাবে।
3: বিচিত্র জীব এই সাপ, মেরুদণ্ডহীন এই অপবাদটা আজ জাগিয়ে দাও, সাপকে দেওয়া চলে না।
0: और अपने श्रोताओं को बता दें, अभिनेता उत्तम कुमार की बतौर नायक पहली फिल्म दृष्टिदान थी, जिसे मशहूर निर्देशक नितिन बोस ने निर्देशित किया था। और उनकी फिल्म अमानुष का अगर हम अपने श्रोताओं को गाना सुनाएं तो कैसा रहेगा?
1: एब्सोल्युटली।

और अपने श्रोताओं को बताएं कि 1967 में वो एक फिल्म के निर्माता भी रहे थे और वो फिल्म थी छोटी सी मुलाकात। तो क्यों ना उस फिल्म का ये गाना सुना जाए।

0: उन्होंने इनकी एक फिल्म का एक डायलॉग भी हमारा हमारे पास है, तो उसे भी सुनते हैं।
1: इन्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूँ।
2: तुम?
1: जी, श्री मधुसूदन राय चौधरी।
2: ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं।
1: देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। आप पियादा भेजेंगे और उसके मुंह में जो कुछ आएगा बकेगा।
0: और हम याद कर रहे हैं हरि किशन गिरी गोस्वामी। हमारे श्रोता समझ तो नहीं पाए होंगे, लेकिन अपने श्रोताओं को बताएं कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार की आज जयंती है। फिल्म जगत के प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक वो रहे हैं। अपनी फिल्मों के जरिए मनोज कुमार ने लोगों को देशभक्ति की भावना का गहराई से एहसास कराया। मनोज कुमार शहीद आजम भगत सिंह से बेहद प्रभावित रहे और इसी भावना ने उन्हें शहीद जैसी कालजयी फिल्मों में देश के लिए अमर सपूत के किरदार को जीवंत करने की प्रेरणा दी। 1992 में मनोज कुमार को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। तो उनकी एक फिल्म का पहले हम डायलॉग सुन लें।
3: क्या लगता हूँ?
4: जो हो।
3: फिर पूछा क्यों?
4: जानते हो हमारा रास्ता रोकने की क्या सजा है?
5: शायद आप नहीं जानते कि हमारे रास्ते पे कदम रखने की क्या कीमत है।
4: हमारे एक इशारे पर हमारे सिपाही तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं।
5: सबसे बड़ी कलम तो ऊपर वाले के हाथ में है सेनापति।
0: और उनकी एक फिल्म क्रांति आई थी, उसी का ये डायलॉग था। तो क्रांति फिल्म का एक गाना भी सुनते हैं।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के एक साथ और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
2: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, यहाँ पे देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा।
3: जी।
2: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं।
3: जी, मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गाँव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
2: अच्छा
3: जी। फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट, तो वहां पे मैं सेकंड आई थी। गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
2: गवर्नमेंट होती है ना।
3: जी, डिसिप्लिन्ड। एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर।
2: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
3: 13 साल की थी।
2: अच्छा जी। तो 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
3: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। अच्छा। इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूँ और घर वापस चली जाऊँ। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ। तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा, मंडे को तू वापस जा रही है। मैंने बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया है, सबको को मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ, तो बोले कि नहीं बेटा अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी। उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है बोल। तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को दे के आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे 2 गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में 2 ही किट आती है, या तो आपको
2: एक साल। आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना?
3: जी, मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी। और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया।
2: आपने काफी गोल बचाए।
3: जी, तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है, तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे।
2: लेकिन आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई एकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना, उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
3: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया। तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा।
2: अच्छा?
3: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
2: क्या बात।
3: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई। एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
2: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद

0: कविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
1: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। 1980 में बुलाया था बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे कि मैं गोलकीपर हूं और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूं। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई, अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की और कोचिज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। अच्छा। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करें। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हम एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे बट उनको एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद हम
0: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
1: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले और मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
0: हाँ, आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
1: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है, तो ऑफकोर्स कैप्टन इज है,
0: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़िया पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
1: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि

0: छोटी थी तब था मुझे, बट 5th 6th क्लास तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब वो छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती हैं?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है। बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्र गुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आप की प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी आप?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे दो सवारी और बैठ जाएंगे। मेरा गला भराया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250, मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी, और मैंने कहा नहीं 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ, मैंने कहा नहीं। तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर, छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे से हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहाँ पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
0: जी लगी
1: ये जो
0: रही।
1: आपने लोगों की बात की कि लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया
1: तो
0: कि
1: क्या बोलते थे, मम्मा क्या बताते थे?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जीन्स पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहाँ। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मामा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा
0: बहुत
1: जिसकी वजह से
0: ज्यादा
1: आप यहाँ पर आज पहुंची हो। आई एम श्योर बहुत ही ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही हैं। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती हैं आप?
0: पब्लिक स्पीकिंग।
1: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
0: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
1: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती?
0: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
1: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
0: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
1: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
0: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
1: अच्छा
0: जी,
1: खाने को ना करना आसान है।
0: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
1: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
0: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
1: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर के हटकर तो क्या होगी?
0: मैं हमेशा ग्रेस जो हमारी प्लेयर थी उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
1: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पे उतरेंगी जो आप गोल बचाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है वही आगे भी लगातार जारी रहे, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम DD News के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूँ आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा। दोस्तों, जब नजर स्टूडियो की खिड़की से बाहर जाती है तो कहीं पर काले बादल नजर आते हैं और कहीं पर हल्की धूप नजर आती है। काले बादल और धूप के बीच में जब ठंडी हवा हम तक पहुंचती है तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। कुछ ऐसा मिला जुला सा मौसम है दिल्ली का, तो इस मौसम को और हसीन बनाते हैं इन खूबसूरत नगमों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

फिल्म मेरे जीवन साथी से ये खूबसूरत गीत आप किशोर कुमार की आवाज़ में सुन रहे थे, संगीत आर डी बर्मन का और बोल मजरूह सुल्तानपुरी के। दोस्तों, आज मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार का जन्मदिन है, तो एफएम गोल्ड के पूरे परिवार की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रभक्ति से संबंधित फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आपको सुनवाते हैं उन पर फिल्माया हुआ एक खूबसूरत नगमा।

फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल संतोष आनंद के।

ये जो तेरे सांसों की खुशबू है वो मेरी सांसों से न जाने क्यों आ रही है। तुझे मिले तो जमाने हुए लेकिन तेरी सांसों की खुशबू आज भी मेरी हर शाम को महका रही है।

फिल्म हसीना मान जाएगी से ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और बोल अख्तर रूमानी के।

आइए दोस्तों, चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत फिल्म चलते चलते से, आवाज किशोर कुमार की, संगीत बप्पी लहरी का और बोल अमित खन्ना के।

दोस्तों, इसी गीत के साथ अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकाल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम का विषय है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, भारत की खेल यात्रा का नया अध्याय। 24 जुलाई 2026 से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभारंभ हो रहा है। 2 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस बहुखेल आयोजन में 74 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स केवल पदकों की प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहां खिलाड़ियों की क्षमता के साथ साथ देशों की खेल संस्कृति, खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण व्यवस्था और भविष्य की खेल दृष्टि भी दुनिया के सामने आती है। भारत के लिए ये आयोजन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक ओर अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेगा, वहीं दूसरी ओर भारत राष्ट्रमंडल खेलों के भविष्य में अपनी भूमिका को भी नई दिशा देने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की ओर से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और विश्व चैंपियन मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जैसे कई प्रमुख खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। उद्घाटन समारोह से पहले ही भारत के लिए एक उत्साहजनक समाचार भी सामने आया। महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन को पहले दौर में बाई मिलने के कारण सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया है। हालांकि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में अलग है। प्रतियोगिता का स्वरूप पहले की तुलना में छोटा है, खेलों की संख्या सीमित है और पदक स्पर्धाएं भी कम है। ऐसे में प्रत्येक मुकाबले का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इसी दौरान ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की जा रही है, जिसमें भारत ने वर्ष 2030 में अहमदाबाद में प्रस्तावित शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों और राष्ट्रमंडल देशों के बीच खेल सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण है, भारत की तैयारियां कैसी हैं और खेल कूटनीति के क्षेत्र में भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियों का केंद्र बना है। 24 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का प्रारूप पिछले संस्करणों की तुलना में अलग है। इस बार प्रतियोगिताएं केवल 10 खेलों में आयोजित की जा रही हैं। इनमें एथलेटिक्स, तैराकी, 3-3 बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, भारोत्तोलन, लॉन बॉल्स, कलात्मक जिम्नास्टिक, नेटबॉल, मुक्केबाजी और जूडो भी शामिल हैं। सभी प्रतियोगिताएं ग्लासगो के 4 प्रमुख खेल परिसरों में आयोजित की जा रही हैं, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए सुविधाजनक एवं टिकाऊ आयोजन सुनिश्चित किया गया है। भारत ने इस प्रतियोगिता के लिए 125 सदस्यीय दल भेजा है, जिसमें विभिन्न खेलों के साथ पैरा एथलीट भी शामिल हैं। भारतीय दल से एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और जूडो में विशेष उम्मीदें हैं। नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन जैसे खिलाड़ियों का अनुभव भारत के अभियान को मजबूती प्रदान करता है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही भारत के लिए पदक की उम्मीद मजबूत कर दी है। खेल मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें केंद्र युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। रीइमेजिनिंग वर्किंग टुगेदर स्ट्रेंथनिंग कॉमनवेल्थ कोलैबोरेशन ऑन स्पोर्ट विषय पर अपने प्रमुख संबोधन में उन्होंने कहा कि बदलते समय में राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। खेल प्रशासन, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, संस्थागत क्षमता निर्माण और अनुभवों के आदान प्रदान को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि विकसित भारत 2047 के राष्ट्र विजन में खेल एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वर्ष 2030 में अहमदाबाद में आयोजित होने वाले शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। आइए सुनते हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए केंद्र युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा।
3: जब आप खेल के मैदान में जाओगे दोस्तों, कभी हबड़ाहट में खेल के मैदान में नहीं जाना। दुर्गा और महाकाली का आशीर्वाद आपके साथ है। 140 करोड़ की जनता की शुभेच्छा आपके साथ है। बड़े जज्बे के साथ

0: खेल के मैदान में कंपटीशन में हमें भाग लेना है। मेरा विश्वास है जब हौसला बुलंद होता है, सारी शक्तियां आपको सपोर्ट करती है, तब मेरा कोई एथलीट हारता नहीं है।
1: स्पष्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की भूमिका केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। भारत खेलों के माध्यम से वैश्विक सहयोग और नेतृत्व की दिशा में भी अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा केवल मौजूदा प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है। लगभग एक शताब्दी पुराने इस आयोजन ने अनेक देशों की खेल यात्रा को नई पहचान दी है। भारत का भी इस प्रतियोगिता के साथ एक लंबा और उल्लेखनीय रिश्ता रहा है। समय के साथ भारत ने न केवल अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया, बल्कि खेल अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की क्षमता भी विकसित की है। आइए अगले भाग में जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास, भारत की उपलब्धियां और क्यों ग्लासगो 2026 का ये संस्करण पहले के मुकाबले अलग माना जा रहा है।
3: कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास लगभग एक शताब्दी पुराना है। इन खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी और भारत ने पहली बार वर्ष 1934 में तब के ब्रिटिश भारत के रूप में भाग लिया। इसी संस्करण में भारत ने अपना पहला पदक भी जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 4 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय बहु क्रीड़ा आयोजन है, जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के देश भर से खिलाड़ियों को एकत्रित करता है, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश पूर्व क्षेत्रों का गठन करने वाला एक राजनीतिक संघ है। पहली बार इसे 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित किया गया था। ये आयोजन कई नाम परिवर्तन से गुजर चुका है। इसे 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना गया, 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में जाना गया और 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। 1978 के संस्करण से ये आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया। शुरुआती वर्षों में भारत की उपस्थिति सीमित खेलों तक थी, लेकिन बाद के दशकों में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मजबूत पहचान बनाई। भारत के लिए वर्ष 2010 विशेष रूप से ऐतिहासिक रहा, जब नई दिल्ली ने सफलतापूर्वक कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की। भारत ने उस संस्करण में रिकॉर्ड 101 पदक अपने नाम किए। वर्ष 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 61 पदक अपने नाम किए। इनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे। हालांकि ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की परिस्थितियां अलग हैं। इस बार खेलों की संख्या घटाकर केवल 10 कर दी गई है। कई ऐसे खेल जिनमें भारत परंपरागत रूप से अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, इस संस्करण का हिस्सा नहीं है। इस बार भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन प्रतियोगिता की गुणवत्ता और उपलब्ध अवसरों के आधार पर किया जाएगा। भारत की कॉमनवेल्थ यात्रा केवल पदकों तक सीमित नहीं रही है। वर्ष 1934 में पहले पदक से शुरू हुई ये यात्रा अब तक 18 संस्करणों में 564 पदकों तक पहुंच चुकी है। इनमें 203 स्वर्ण, 189 रजत और 172 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी उपलब्धि के साथ भारत कॉमनवेल्थ गेम्स के सर्वकालिक पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। भारत की बढ़ती खेल क्षमता का एक और प्रमाण वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी है। नवंबर 2025 में भारत को वर्ष 2030 के शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार मिला। राष्ट्रमंडल खेल संगठन के नए गेम्स रीसेट मॉडल के तहत अहमदाबाद इन खेलों की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य खेलों को अधिक व्यावहारिक बनाना है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: स्पष्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की भूमिका समय के साथ लगातार बदलती रही है। एक समय पदक जीतना ही बड़ी उपलब्धि माना जाता था, लेकिन आज भारत खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और वैश्विक खेल सहयोग में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर रहा है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने और तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज की कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एक्सटेंड देयर लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 300 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 23,800। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी। And Cabinet approved the Bhavya Rasayan scheme for establishing three dedicated chemical parks in India.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख। सेंसेक्स में 300 अंकों से अधिक की सुस्ती आई। निफ्टी 23,800 के स्तर से नीचे पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन विशिष्ट केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना को स्वीकृति दी।
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने आज शुरुआती नुकसान की भरपाई की और 0.43% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 332 अंक नीचे आकर 76,060 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 102 अंक लुढ़ककर 23,767 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% नुकसान के साथ बंद हुआ। इससे पहले वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कारोबार की नकारात्मक शुरुआत देखी गई। बड़े पैमाने पर बिकवाली के कारण सत्र के पहले हिस्से में दोनों प्रमुख सूचकांक दबाव में रहे। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो निचले स्तरों पर खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के निचले स्तर से काफी रिकवरी की।
0: Benchmark domestic equity indices paired their initial losses and ended 0.43% down today. Sensex dropped 332 points to end at 76,060, while Nifty slipped 102 points to close at 23,767. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index lost 0.1% and the small-cap 100 index fell by 0.3%. Earlier, the markets opened on a negative note amid heightened global uncertainty. Both the stock market indices traded under pressure during the first half of the session amid broad-based sell-off. However, as the day progressed, the Sensex Nifty recovered sharply from the day's lows, supported by buying at lower levels and drop in crude oil prices.
1: सेंसेक्स में 30 में से 20 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों को देखा जाए तो एटरनल में 2.3% से ज्यादा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.1% और बजाज फाइनेंस में 2.1% की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में लगभग 2.1% की बढ़त हुई। आईटीसी में 0.8% की तेजी आई और एक्सिस बैंक में 0.6% की बढ़ोतरी हुई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, auto dropped 1%, telecommunications slipped 0.9% and power fell nearly 0.7%. In contrast, focused IT advanced 1.3%, IT as well as PSU banks rose over 0.6% and insurance gained more than 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,124 companies advanced, 2,053 companies declined, and 208 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में लगभग स्थिर रहा और 96.56 के स्तर पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और इस सप्ताह अगर कारोबार पर हम नजर डालें तो लगभग हर दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ और पिछला सप्ताह थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये सप्ताह निवेशकों की दृष्टि से अगर देखें तो लाल निशान उन्हें ज्यादा देखना पड़ा। कौन कौन से प्रमुख ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिली?
2: एकदम आपने सही कहा निखिल जी। अगर आप 5 दिन के ट्रेडिंग देखें तो करीबन 2% की गिरावट रही और हर दिन हमने गिरावट देखी और उसका प्रधान कारण यही है कि और ये जो गिरावट जो है ये अगर आप देखें पिछले चार महीनों में सबसे ज्यादा साप्ताहिक गिरावट थी
1: जी।
2: और इसका प्रधान कारण ये था कि जो विश्व स्थिति जो है वैश्विक स्थिति उसमें जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और भी गंभीर हो चुकी है। जिस तरह से यूएस और ईरान का जो मसला चल रहा है वो एक समय तो ये लग रहा था कि ये शायद रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है पर वो और भी वातावरण और भी गंभीर हो जा रहा है और इसी कारण स्टॉक मार्केट एक तरफ और क्रूड ऑयल प्राइस दूसरी तरफ दोनों में जो जो एक टेंशन डर भी कह सकते हैं उसी के कारण हम जो पिछले 5 सत्र में जो हमने देखी जो गिरावट यही इसके प्रधान कारण है। कोई अंतर्देशीय कोई कारण इसमें नहीं है, ये पूरी तरह से एक एक एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर निर्भरशील ये डेवलपमेंट है। हालांकि हमने आज जो मार्केट में देखा
1: जी।
2: उसमें एक एक एक सिल्वर लाइनिंग नजर आई, वो ये लगा कि जब मार्केट नीचे आ गई तब आधे मार्केट में दिन के जो पिछले अंतिम समय में मार्केट इतनी नीचे आ गई कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वापस आ गए और खरीदना शुरू किया। उससे जो मार्केट की जो पहले हाफ में जो जो गिरावट थी वो उतनी गिरावट से वो बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब यही मुझे दिख रहा है कि अगर मार्केट एक पॉइंट के नीचे आ जाए तो जो इन्वेस्टर की जो एपेटाइट जो है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि ये एक पॉजिटिव रीजन है पर ये दर्शाता है कि मार्केट में एक स्टेबल लेवल जो है आज की तारीख में जो मार्केट में जो आया है वो लगता है कि एक स्टेबल लेवल है। अगर उसके नीचे जाए तो हमें ये शंका होगा कि मार्केट शायद एक और भी एक बेरिश फेज में जा सकती है, पर अगर इसी लेवल में रुका रहे तो अगले समय में अगले दिनों में अगर इसमें कोई अगर कोई इम्प्रूवमेंट होती है तो शायद आगे की ओर हम देख सकते हैं। पर इस वक्त समय एकदम बहुत ही क्रिटिकल समय है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स बिहेव करती हैं। यूएस मार्केट बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहेगा, किस तरह से यूएस फेड की जो नीति जो है उसमें सब कुछ लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए इस बार सितंबर की जो आएगी उससे पहले भी एक और एक नीति आएगी उसमें भी शायद कुछ बढ़ जाए। उससे जो जो डोमेस्टिक मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट का जो और जो मार्केट की जो जो फ्लो ऑफ मनी है वो शायद और भी कम हो जाए।
0: एकेबी फॉर द वीक ओनली एफएमसीजी एंड ऑटो एक्चुअली हैड गेन्स। एफएमसीजी रोज 0.5% एंड ऑटो बाय 0.4%, इवन द ऑटो टुडे ड्रॉप बाय 1%। सो वी आर सीइंग trend that is being followed. The US markets have also seen a devaluation in yesterday's proceedings in the market itself. How do you see the coming week? Because the US tariff policy is also something that will influence valuation of sectors and stocks, and the US-Iran war is not seeing any abatement. In fact, it has only gone up. Oil prices, even though they fell today marginally, do you see them go up next week? And how do you see next week's market, bearing in mind all these geopolitical factors and the US tariff policy, which is not just 10%, but can also be 25 to 50% across other sectors?
2: Well, I think what you said, the FMCG and the second sector, auto. That is the auto, there are specific sectoral factors at play. Auto is heavily influenced by what is happening on the use of the ethanol-based

0: रहे। और उसका कारण आपने एकदम ठीक कहा कि लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा अपना अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरी कारण जो मैंने अर्जुन जी को भी नहीं मैं बता सका, तीसरा कारण ये है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओस की लाइनअप है और बड़े बड़े आईपीओस आने वाले हैं। और जो स्टॉक मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त क्या करते हैं कि वो जब भी वो स्टॉक मार्केट में मौका देखते हैं वो प्रॉफिट बुक करके वो अपने आप को पोजीशन में लाते हैं, जिस तरह से वो किस तरह से नए आईपीओ में इन्वेस्ट करके उन आईपीओ में से और भी पैसा निकाल सके। तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट ने जो नरमी देखी हमने उसका एक कारण है।
1: आगे बढ़ते हैं। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों ने जोखिम नहीं उठाया। दक्षिण कोरिया कॉस्पी 5.7% गिरा, जापान का निक्केई 2.7% से ज्यादा टूट गया, ताइवान का ताइएक्स लगभग 2.7% नीचे आ गया, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.6% लुढ़क गया और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1% के नुकसान में रहा। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% लाभ में रहा। आर्थिक मोर्चे पर जापान का कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में सालाना आधार पर 1.6% हो गया, जो मई में 1.4% था। यह बढ़ोतरी मार्च के बाद कोर महंगाई दर में पहली तेजी थी। जापान के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार प्रमुख महंगाई दर भी जून में सालाना आधार पर 1.7% थी, जबकि मई में ये 1.5% थी। यूरोप की बात करें तो वहां के शेयर बाजारों में प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.7% लाभ में था, फ्रांस का कैक 40 लगभग 0.4% ऊपर था और लंदन का फुटसी 100 0.2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। एकेबी कल अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख था, आज अचानक से नकारात्मक रुख देखने को मिला और यूरोप की बात करें तो वहां एकदम स्थिति उलट थी।
0: सही कहा आपने, और यूरोप में जो जो ट्रेंड जो दिख रहा है वो पिछले 4 सत्र से एकदम बदल गया है। और जो एक अनसर्टेनिटी का जो वातावरण था वो और भी जरा ज़्यादा बढ़ गया है अनसर्टेनिटी का वातावरण। पर मैं आपकी इस रिपोर्ट से एक टेक अवे जो है वो है जापान की जो जो प्राइस इंडेक्स की जो डेवलपमेंट वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के लिए भी। हालांकि निकी गिर गया है मार्केट में, पर उसकी जो प्राइस इंडेक्स वो जापान में दाम बढ़ना एक बहुत बड़ी एक एक घटना है
1: जी।
0: क्योंकि जापान में इन्फ्लेशन का नामो निशानी है बहुत दिन से। अगर इन्फ्लेशन आता है तो हालांकि आम जनता को क्षति पहुंचती है, टेंशन होता है हम लोगों को, पर जो इन्वेस्टर जो है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर जो है, सर्विसेज सेक्टर के जो इन्वेस्टर हैं उनको एक प्रॉफिट की एक एक एक एक डायरेक्शन मिलती है, प्रॉफिट अर्निंग की एक इंडिकेशन होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन जो 1.6% की जो इन्फ्लेशन जो बढ़कर 1.4% से आ गई है, ये भी दर्शाता है कि जापान में डिमांड की विजिबिलिटी आई है। और ये मैं समझता हूँ जापान विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थनीति है, उसके लिए ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट में कहूंगा, हालांकि स्टॉक मार्केट ने आज इसका ठीक तरह से वेलकम नहीं किया।
2: Moving on to the US stock markets, major US stock market indices stumbled yesterday as investors wait quarterly results from major companies and the impact of surging crude oil prices. NASDAQ Composite Index shed 2.1%, S&P 500 fell 1.2%, and the Dow Jones Industrial Average closed nearly 1% lower. The quarterly results are being cited for the fundamental devaluation in the US stock market. NASDAQ fell by 2.1%. Prominent IPOs which saw high valuation like SpaceX, they've also been falling in valuation. And there is a lot of activity going on in the futures and options market there as well as we speak. How do you see the US stock market in terms of inflation and the pressure really on the Trump administration to really ensure that geopolitics does not play such an important role? Because already almost $1 trillion loss has been valued right now because of the US-Iran war?
0: Well,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल रेलखंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में आज भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इससे पहले रवि वीरा वेंकट बुद्धिगीना और अली इमाम ने पैरा तैराकी के S13 वर्ग के 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के फाइनल में अपना अपना स्थान पक्का किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced regarding bringing a bill with provisions for a strong action in cases of paper leaks will be introduced in Parliament. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
6: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
5: Spokesperson of CJP Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of the demands.
7: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
5: Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that Prime Minister Narendra Modi has emphasized that there should be no delay in bringing a stringent bill to prevent malpractices in examinations. Talking to reporters at the Parliament premises, Mr. Rijiju said the country also wants the same and there should be no obstruction to the passage of the bill. Mr. Rijiju said the government is taking important steps to safeguard the future of students. He added that if the opposition creates hurdles in parliamentary discussions on the issue, it will have to face the anger of the country's youth. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth rail line of Ballari Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometers. Briefing media New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. He also informed about Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing three dedicated chemical parks in the country.
8: The Cabinet has approved the third and fourth railway lines on the important economic corridor connecting Andhra Pradesh and Karnataka. Secondly, a new scheme has been approved to develop India's chemical sector in an entirely new way. Like semiconductors, the chemical industry is a foundational industry, so it was very important to adopt a new approach for its development.
9: इसलिए बहुत important था इस industry के लिए एक नए तरीके से सोचना.
5: Bhavya Rasayan scheme will have a total financial outlay of 3,030 crore rupees. The scheme would run for a period of 5 years from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said centre will provide a grant of up to 1,000 crore rupees per park. This will be subject to minimum contribution of 500 crore rupees by the concerned state government. New Delhi today said that Indus Waters Treaty remains in abeyance until Islamabad abjures support for cross-border terrorism. Briefing media New Delhi spokesperson and the Minister of External Affairs, Randhir Jaiswal, dismissed the Pakistan media reports that India is deliberately causing flooding in the neighbouring country. He added that the recent increase in flows in the river Chenab is a direct consequence of intense monsoon rainfall over Jammu and adjoining catchment areas during this week. In the Commonwealth Games in Glasgow, India's Srihari Nataraj advanced to the men's 50-meter backstroke semi-finals on the second day. The semi-finals will be held tonight. Earlier, Ravi Veeravenkat Bodigina and Ali Imam qualified for the final of the men's S1300-meter freestyle para-swimming event. And that is the end of this news bulletin.

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश और पत्रकार टीना झा।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की दो अहम मंजूरियों की, जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई। पहला फैसला है भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन यानी भव्य रसायन को मंजूरी देने का, जिसके तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई थी। लगभग 3030 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली यह योजना अगले 5 वर्षों में लागू की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बल्लारी गुंतकल रेलखंड पर 3री और 4थी रेल लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी। लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना वर्ष 2028-29 तक पूरी किए जाने का लक्ष्य है। इसके तहत करीब 46 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और लगभग 99 गांवों के करीब 7 लाख लोगों को बेहतर रेल संपर्क का लाभ भी मिलेगा। इन दोनों फैसलों के दूरगामी प्रभाव औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, कनेक्टिविटी और साथ ही आर्थिक वृद्धि पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री केजी सुरेश। आपका बहुत स्वागत है सर आकाशवाणी में।
3: जी नमस्कार।
2: कैबिनेट ने देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क, ये पहला फैसला है जिसको स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना की मंजूरी दी है। अनाउंसमेंट थोड़ी देर पहले ही हमने सुना कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया, तो आप इस फैसले को भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए कितना अहम मान रहे हैं अभी?
3: बिल्कुल, ये जो आज का जो फैसला है मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है। रसायन उद्योग के लिए तो निश्चित ही मील का पत्थर है, क्योंकि इसके तहत पहली बार एक समग्र विकास की एक कल्पना की गई है कि किस तरीके से रसायन उद्योग को हम एक समग्र विकास, समुचित विकास कर सकते हैं। और इसमें जो भी ये 3 पार्क्स की बात की गई है, इसमें पूरे सिर्फ यूनिट्स ही नहीं स्थापित होंगे बल्कि पूरे वैल्यू चेन इसका जो है, चाहे वो अपस्ट्रीम हो, डाउनस्ट्रीम हो, एंसिलरी इंडस्ट्री हो, ये सारे के सारे, ताकि जो संसाधनों का सबसे बेहतरीन किस तरीके से उपयोग हो सकता है और किस तरीके से कॉस्ट कटिंग हो सकता है। लॉजिस्टिक्स में जो खर्चा आज के तारीख में हो रहा है, केमिकल्स को आवाजाही में जो खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा हो रहा है, तो ये लॉजिस्टिक्स का खर्चे को बहुत बड़े पैमाने पर कम करेंगे। यही नहीं, इसमें जब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा फैसिलिटीज का और बेसिक यूटिलिटीज होगा, तो फिर आप देखेंगे कि जो रसायन उद्योग है उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है ये, क्योंकि इसमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगा और भारतीय रसायन जो उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर जो है कॉम्पिटिटिव बनाना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
2: जी, अगर इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो मौजूदा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं देश भर में या इंडस्ट्रियल पार्क्स जिनको सरकार कहती है, ये जो केमिकल पार्क अब अनाउंस किए गए हैं, ये इन सब मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों या इंडस्ट्रियल पार्क से किस तरह से अलग होंगे?
3: ये एक्सक्लूसिव होगा केमिकल इंडस्ट्री के लिए। जैसे अब अभी आप देखते हैं आईटी पार्क्स देखते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स देखते हैं, जहां सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए सारे एंसिलरी इंडस्ट्री, सारे उसकी जो लॉजिस्टिक्स की व्यवस्थाएं एक जगह करने का एक प्रयास होता है। अगर आप एक बड़े इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में आपने रसायन का उद्योग लगा दिया तो वो स्टैंड अलोन होगा। यहां सबके सब एक क्लस्टर बना दिया जाएगा जिसके तहत जो है सभी इंडस्ट्रीज एक साथ जो है एक जगह से, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में जो होगा, रेल हेड्स अगर वहां शुरू करने हैं गुड्स के माध्यम से अगर करना है, तो ये सारा कुछ जो लॉजिस्टिक जो है वो तभी संभव हो पाएगा जब सब एक ही जगह में केंद्रित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए केमिकल ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा हजार्डस भी होता है।
2: जी।
3: इस दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, सेफ्टी के दृष्टि से भी देखेंगे, तो एक क्षेत्र में आप स्पेसिफिक जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते थे वैसे ही एक डेडिकेटेड जोन होगा। अब ये देखने वाली बात है कि किधर किधर इसको स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में जो है हम रसायन उद्योग को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज बहुत बड़े पैमाने में हम लोग रसायन को जो है आयात करते हैं। इसको हम अगर कॉम्पिटिटिव बन गए, एक जब आप कई चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को शेयर करते हो एक जगह में आपका जब सारा सेटअप होता है तो आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, आपका इंडिविजुअल जो खर्चा होता है यूनिट्स का उसमें कमी आती है और निश्चित ही एक्सपोर्ट्स में हमें उसका फायदा मिलेगा, हम बेहतर चीजों को कॉम्पिटिटिव रेट्स में हम इसको बेच पाएंगे। तो न सिर्फ आयात को कम करना है अपितु भारतीय रसायन उद्योग को जो है निर्यात के जो मौके हैं उसको भी कैसे बढ़ावा देना है और इसको किस तरीके से हम एक सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है, क्योंकि पर्यावरण एक बड़ा चिंता का विषय हमेशा रहता है।

0: तो हम ऐसे सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज होंगे जहां अभी हम एक चिंता रहती है कि भाई केमिकल्स जो है कभी नदी में बहाया जाता है, कभी नदी नालों में चला जाता है, कभी अंडरग्राउंड चला जाता है, तो इसके लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात की गई है, ट्रीटमेंट की बात की गई है, स्टोरेज और डिस्पोजल, बहुत बड़ा विषय होता है केमिकल्स को डिस्पोज ऑफ करना, क्योंकि उसमें बहुत जो है खतरे भी होते हैं, आग लगने की खतरे होते हैं, केमिकल्स के फैलने से जो है कई घटनाएं आपने देखा है, लीकेज को लेकर जो है कई
1: जी
0: घटनाएं रिपोर्ट की गई है देश में। तो जब एक जगह इन सब चीजों को किया जाएगा, हजार्ड वेस्ट जो होता है इसका वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा ही कठिन होता है, अगर इसको एक जगह में अगर केंद्रित करके एक पार्क में अगर हम इसको करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका बेहतर कंप्लायंस होगा और जो पर्यावरण के रेगुलेशंस हैं, नियमन हैं, उसके अनुसार हमारी ये इंडस्ट्री जो है बेहतर तरीके से चल पाएगी।
1: बिल्कुल, आपने पर्यावरण संबंधी चिंताएं इसमें बखूबी समझाई हैं। इसी व्यापक सोच को आगे बढ़ाती हुई एक दूसरी जो मंजूरी दी गई है, जो दूसरा कैबिनेट का फैसला है, वो है बल्लारी गुंतकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी देने का। तो रेलवे के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिहाज से तो ये काफी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये परियोजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भी इससे जुड़ी हुई है, इसके अंतर्गत ही इसको मंजूरी दी गई है। इस सोच को किस तरह से आगे बढ़ाती है ये परियोजना आज जिसको मंजूरी मिली है सुरेश जी, और खास करके जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं और हम कहते हैं कि जो भी देश में हो रहा है, जो भी ग्रोथ है, जो भी बेनिफिट्स है, वो हर उस नागरिक के पास पहुंचे, हम अंत्योदय की बात करते हैं, तो उस अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये योजना कितनी महत्वपूर्ण आपकी नजर में?
0: देखिए, मैं समझता हूं कि रेल एक क्षेत्र है जहां हमने अप्रत्याशित विकास किया है, खासकर पिछले 10-11 वर्षों में, और अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा, जींद में देखा, हमने देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन देखा, जो शायद विश्व में उस स्तर का हाइड्रोजन का उपयोग होता है, जितने सारे डब्बे हमारे यात्रियों के लिए उसमें लगे हैं, इस तरह की व्यवस्था दूसरे किसी देश में नहीं है। तो जो भी हम काम करते हैं उसको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। एक चीज जरूर आपको यहां बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसी के तहत काम हो रहा है, चाहे कितने भी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आवंटन की बात आती है, संसाधनों की बात आती है, तो केंद्र सरकार इस मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। ये दोनों जगहों में जो है अगर आप देखेंगे जो लाभ इसको मिल रहा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को, अब दोनों जगह जो है केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है उस प्रदेश के पूरे देश को सबका साथ सबके विकास के अंतर्गत मैं समझता हूं कि ये परियोजना तैयार की गई है। और निश्चित ही जो है आज हम मेट्रो का जो एक्सपेंशन पूरे देश में हुआ है, आज हम ऑल्टरनेटिव जितने मोनोरेल्स की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो उसी दिशा में मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को जो इस वक्त नेटवर्क है उसको लगभग 46 किलोमीटर सिर्फ रेल नेटवर्क होगा, नया रेल ट्रैक्स जो है वो बिछाए जाएंगे। सरकार का हमेशा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है,
1: जी
0: तो उसको देखते हुए जो है लगभग 99 गांव जिसमें 7 लाख के करीब लोग हैं उनको इस परियोजना से लाभ मिलेगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से चाहे वो सामग्री गुड्स को ले जाने के मामला हो या पैसेंजर्स का हो, उनको जो है किस तरीके से हम एक अफोर्डेबल यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं। याद रखें कि जो ये रूट की बात की गई है इसमें बहुत प्रमुख पर्यटन के भी केंद्र हैं और साथ ही साथ धार्मिक केंद्र भी है,
1: जी
0: एक तरफ बेल्लारी फोर्ट जैसे इलाके हैं तो दूसरी तरफ श्री कुमार स्वामी मंदिर जैसे बहुत पवित्र स्थान भी जो है इसमें है, तो इस तरीके से हम टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कोई भी योजना जब हम लागू करते हैं तो यह प्रयास रहता है कि उसका जो मल्टी प्रॉन्ग्ड उसके जो लाभ हो वो बहुआयामी हो, सिर्फ एक दिशा में नहीं कि चलो रेल की पटरी खुल गई, पर्यटन को भी लाभ होगा, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ होगा, वहां के कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा, वहां के गुड्स को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में कनेक्टिविटी बनाने में लाभ होगा। तो मैं समझता हूं इस सभी दृष्टि से ये प्रोजेक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि आधुनिकीकरण, और जिस तरह से आपने बताया कि स्थानीय स्तर पर जब निर्माण कार्य होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि में भी कई तरह के अवसर पैदा होंगे और टूरिज्म की भी आपने बात कही। अंत में यदि हम आपसे जानना चाहें कि अगर हम देखें कि रेलवे का ये

0: सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स वन अमंग मेनी प्रोजेक्ट्स, कई विभिन्न परियोजनाओं को साथ अगर हम रखकर देखें, तो क्या आकलन है आपका कि भारतीय रेलवे में किस तरह का व्यापक बदलाव पिछले कुछ सालों में हुआ है और देश भर में इसका लाभ अगर आम नागरिकों को और देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से न सिर्फ अभी मिल रहा है बल्कि आगे आने वाले 20-30 सालों के बाद उनकी जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये परियोजनाएं जब आज अनाउंस भी कर रहे थे केंद्रीय मंत्री, तो उन्होंने आगे का एक रोड मैप बताया और उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं हर उस विजन से जुड़ी हुई हैं जो हमें 2047 विकसित भारत विजन की ओर ले जाएंगे।
1: आधुनिकीकरण जब भी होता है, आज हम देखेंगे जो सड़कों का जाल फैलाया गया है, चाहे वो ईस्टर्न क्वाड्रिलैटरल हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, देखिए जहां हवाई जहाज तक उतर सकते हैं, फाइटर प्लेन्स उतर सकते हैं, इस स्तर का जो है बनाया गया है। रेलवे, हम कभी कश्मीर में ट्रेन का जाने का हम सोच नहीं सकते थे, अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा था तो उत्तराखंड में रेल का काम चल रहा है, पहाड़ों को काट के जो है रेलवे को वहां तक पहुंचाने का काम चल रहा है। तो आम जनता को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, उनके यहां रोजगार निवेश कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होता है तो औद्योगीकरण होता है, औद्योगीकरण होता है तो रोजगार निर्माण होता है, रोजगार निर्माण होता है तो जीडीपी बढ़ती है, उसमें जो है लोग जो है खर्चा कर पाते हैं अपने जेब से और उससे जो है हमारे अर्थव्यवस्था है उसको स्फूर्ति मिलती है, उसको गति मिलती है। ये जो एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर दिया गया है और इससे जो है एक तो हमारे नेट जीरो का हमने जो एक कमिटमेंट दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमिशंस को लेकर, उसमें क्लाइमेट चेंज में यानी कि जो मौसम में बदलाव आ रहा है वो सब विषयों को लेकर हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, क्योंकि जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और इसके साथ साथ हमारा जब तेल का हम जो आयात करते हैं वो बहुत बड़े तादाद में कम होगा, जब हम रेल के माध्यम से, हम जब हाइड्रोजन ट्रेन जैसे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जब हम चलाते हैं तो उसका फर्क होता है। और निश्चित ही जो है हम समझते हैं कि उससे न सिर्फ हमारा अपना जो प्रदूषण और अन्य चीजों से हम बचते हैं, पर्यावरण बेहतर होता है, अपितु जो वैश्विक स्तर पर भी हमारा उसमें योगदान रहता है। तो मैं समझता हूं कि एक विकसित भारत 2047 की जब कल्पना करते हैं तो वो समावेशी है, उसमें हम पर्यावरण को साथ में लेते हुए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें हम तरक्की भी करें लेकिन एक संतुलित तरक्की हो जिससे जो है हमारे पर्यावरण को भी चोट ना पहुंचे, हमारे लोगों को भी लाभ पहुंचे और उद्योगीकरण जो है वो एक ह्यूमन फेस के साथ हो, एक मानवीय चेहरे के साथ हो।
0: बिल्कुल, संतुलित लेकिन समावेशी ग्रोथ, यही हमारा मंत्र है और इसी मंत्र के साथ हम 2047 विकसित भारत के सपने की ओर बढ़ रहे हैं। समय इतने की ही इजाजत देता है। सुरेश जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, सुर्खियों में आज इतना ही, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश और पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में

समय हुआ है 7:25 26 सेकंड। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन। महफिल सज चुकी है सांझ ढले की, और सांझ

देखिए, आपने तो अनुरोध नहीं भी किया, लेकिन हमारा काम है आपको मधुर मधुर गीत सुनाना, और ये मान के चलना कि आप हमारे साथ इस वक्त इस महफिल में जुड़े हुए हैं जिसका नाम है सांझ चले। और आप अनुरोध करें या ना करें, क्योंकि शाम का वक्त होता है, और शाम के वक्त हम तो हमेशा महसूस करते हैं जब यहाँ स्टूडियो में होते हैं कि आप हमारे आस पास हैं, हमारे सामने बैठे हैं। एक शाम आती है तेरी याद लेकर, एक शाम आती है तेरी याद लेकर, एक शाम जाती है तेरी याद लेकर, हमें तो उस शाम का इंतज़ार है जो आए तुम्हें साथ लेकर। जी हाँ, ऐसी शाम का इंतज़ार जो हम कभी आमने सामने हों, आपसे रूबरू हों, और फिर दिल की ढेर सारी बातें हों, तो उम्मीद करते हैं कि ये दिन भी कभी आए और हम आपके साथ रूबरू हों। और जब तक नहीं होते, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 के साथ सांझ चले।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
4: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
3: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर आप सुन रहे हैं महफिल सांझ ढले की, और सांझ ढले की महफिल संजीव अग्निहोत्री के साथ आप जुड़े हुए हैं। अगर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच का जो रास्ता है अगर आप तय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग शाम के वक्त ऑफिस जाते भी हैं जैसे हम लोग आते हैं, और बहुत से लोग घर से ऑफिस जाने के अलावा ऑफिस से घर भी जाते हैं, तो ये दोनों ही बातों में हमको एक चीज़ ध्यान रखना है दोनों ही यात्राओं में, कि हम ट्रैफिक रूल को हमेशा फॉलो करें। किसी भी सूरत में हमको ट्रैफिक रूल्स को वायलेट नहीं करना है, उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि उल्लंघन करते ही दुर्घटना के शिकार तो खुद भी होते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं, और चालान तो होता ही है, परेशानियां होती हैं वो अलग, और जल्दी पहुंचने के चक्कर में आपको देरी हो जाती है वो अलग। तो बेहतर है कि रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स का पालन जितना करेंगे उतना ही आप आसानी और सुगमता से अपने घर जल्दी पहुंचेंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: सांझली की महफिल फिलहाल आज यहीं तक, संजीव को दीजिए इजाजत, लेकिन सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दिल्ली के

0: उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राज्य सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवीश साहिब सिंह ने गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंजूरी दी गई। विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
1: लगभग 2 घंटे सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की वार्ता करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
2: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक कड़े विधेयक को लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद भवन परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। DMRC ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सवेरे 7:30 बजे से जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था उनमें से 2 मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 जारी कर दी है। इसमें भारत में टेलीविजन रेटिंग विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्यसभा में आज श्री वैष्णव ने कहा कि यह नीति दर्शकों के मापन में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करती है।
4: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 ने 16 जनवरी 2014 के भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों का स्थान ले लिया है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनमें नेटवर्थ मानदंड को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए करना, कनेक्टेड टीवी और OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टीवी चैनलों सहित कई प्लेटफॉर्म पर प्रौद्योगिकी तटस्थ दर्शक मापन और मीटर वाले घरों की संख्या को 50,000 से बढ़ाकर 80,000 करके नमूना आकार में वृद्धि करना शामिल है। श्री वैष्णव ने कहा कि निर्धारित सुरक्षा उपायों में क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंध, एजेंसी के बोर्ड में कम से कम 33% स्वतंत्र निदेशकों की अनिवार्यता, हितों के टकराव को जन्म देने वाली परामर्श या सलाहकार गतिविधियों पर रोक, सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकताएं, ऑडिट और पारदर्शिता दायित्व शामिल।

0: है ताकि रेटिंग एजेंसियों की कार्यात्मक और परिचालन स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि सरकार सभी उपयोगकर्ताओं विशेष रूप से बच्चों के लिए सुरक्षित विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में आज श्री प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट के उपयोग और डिजिटल पहुंच में तेजी से विस्तार के साथ बच्चों का अनुचित सामग्री और अन्य ऑनलाइन जोखिम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार ने ऐसी सूचनाओं का प्रसार रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के समस्याओं को लेकर बैठक की। बैठक में लघु उद्योग भारती, उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल और दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारी शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने और उन्हें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी की प्रगति के लिए उद्योगों का विकास अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए दो अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि गाजीपुर ड्रेन में वर्षों से भारी मात्रा में गाद जमा है, जिससे इसकी पानी ले जाने की क्षमता में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख नालों में इसी तरह की आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे गाद निकालने का काम तेज, सुरक्षित और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने आज विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए भंडार रखने की अनुमति देने के निर्णय का स्वागत किया है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य का पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि इस प्रावधान को उसके मूल उद्देश्य और भावना के अनुरूप लागू किया जाए। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और नीति के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव भी दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज नीट यूजी 2026 के शीर्ष 11 विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प नए भारत की आकांक्षाओं का सशक्त प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गर्व का विषय है कि नीट यूजी 2026 में 11,20,000 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज एमपी लीड फेलोशिप के प्रतिभागियों से मुलाकात की। ये फेलोशिप राज्यसभा सांसद अजीत माधवराव गोपचड़े ने युवाओं को सार्वजनिक नीति, सुशासन और संसदीय प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि इन युवा प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित उत्साह, नए विचार और समर्पण भाव अगली पीढ़ी के नेतृत्व पर देश को विश्वास को और मजबूत करते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का परामर्श दिया है। एक रिपोर्ट।
2: यातायात पुलिस ने ऐप आधारित परिवहन सेवाओं, राइड हेलिंग, खाद्य वितरण, लॉजिस्टिक्स तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिचालन को आवश्यकता अनुसार विनियमित करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल है, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। यातायात पुलिस ने सभी संबंधित पक्षों से निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक लागू प्रतिबंधों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली सरकार ने बताया कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए राजधानी के विभिन्न प्रमुख मार्गों और प्रवेश स्थलों पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कांवड़ समितियों को आवश्यक अनुमतियों और सुविधाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ समितियों के साथ समन्वय मजबूत रखा जाए और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा यातायात पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, PCR तैनाती और दुर्घटना रोकथाम से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पहले पूरी करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राजधानी में आने वाला प्रत्येक शिव भक्त स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और अपनत्व से घिरा हुआ महसूस करे। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली नगर निगम के महापौर कार्यालय को आज सवेरे एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से महापौर कार्यालय ने बताया कि आज सवेरे 10:23 पर एक अज्ञात स्रोत से ईमेल के माध्यम से ये धमकी मिली। धमकी मिलते ही बिना किसी विलंब के संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया। महापौर कार्यालय ने बताया कि जांच के दौरान कार्यालय के प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र, प्रवेश और निकास द्वार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की गहन जांच की गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर अन्य उपकरणों में लगाते थे और UPI सक्रिय कर खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद वे धोखाधड़ी कर खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों के पास से 10,000 रूपए नकद के साथ 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है जिसमें लगभग 450 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। आज देश भर में आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। इस दौरान आयकर विभाग के कार्य और उसके योगदान का स्मरण किया जाता है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई और दोपहर में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राज्य सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि एफ एस SAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं।

0: में बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है, उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारी सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दिस इज आकाशवाणी और रिव्यू ऑफ टुडेज पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स रेड बाय साइरा मुज्तबा। First, from the Lok Sabha, writer is Asim Kamal of PTI. Lok Sabha proceedings were washed out for the 5th day in a row on Friday as the opposition stuck to its demand for Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation, while the government said any excuse to not let a debate take place on the NEET paper leak issue would send a wrong signal to the country. When the House met at 12 noon after an earlier adjournment, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju pointed to Leader of the Opposition Rahul Gandhi and said the government has repeatedly reached out to opposition parties to have a debate on the paper leak in Parliament. He said while several opposition MPs are of the view that debate should take place, Gandhi should make his party members understand the need for a discussion. Rijiju said making excuses and attaching preconditions before a debate will send a wrong message to the country. He said Prime Minister Modi has also assured of a stringent

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र
1: और मैं हूं प्रशांत कुमार।
0: स्पोर्ट्स कैन के आज के इस अंक में आप सभी का हम दोनों स्वागत करते हैं। हम एक बार फिर मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात, पहले हेडलाइंस।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में अशोक चौथे स्थान पर रहकर पदक से चूके। श्रीहरि नटराज ने पुरुषों के 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हांगझोउ में ISSF विश्व कप में संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता। अनाहत सिंह ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वॉश

0: व्यक्तिगत चैंपियनशिप के वुमेन सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच कल हरारे में खेला जाएगा और सितंबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए भारत की महिला और पुरुष टीम की घोषणा हुई।
1: और अब खबर विस्तार से। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में भारत के अशोक चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इसी वर्ग में परमजीत सिंह को छठा स्थान मिला। अशोक ने कुल 143.8 जबकि परमजीत ने 135.6 अंक हासिल किए।
0: धर्मेंद्र, भारत के आज दूसरे दिन तैराक श्रीहरि नटराज ने राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में संयुक्त 14वें स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। दो बार के ओलंपियन और कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके नटराज ने 25.52 सेकंड का समय लिया। उन्होंने बरमूडा के जैक हार्वे के साथ संयुक्त 14वां स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल के लिए हीट से शीर्ष 16 तैराकों का चयन किया गया। नटराज अपनी 8 खिलाड़ियों वाले हीट में 5वें स्थान पर रहे। सेमीफाइनल आज देर रात खेला जाएगा। उधर पैरा तैराकी में आरवीवी के बीके बुदिग्याना और इमाम अली ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हीट में हिस्सा लेने वाले सभी 8 तैराक फाइनल में पहुंचे। बुदिग्याना ने 57.1 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया जबकि इमाम अली 1:05.32 सेकंड के समय के साथ 8वें स्थान पर रहे। S13 वर्ग दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए निर्धारित पैरा तैराकी श्रेणी है।
1: और प्रशांत, पैरा पावर लिफ्टिंग में जसप्रीत कौर और सुमन देवी महिला लाइटवेट वर्ग में पदक स्पर्धा में इस समय वजन उठा रही हैं और इस समय जो जानकारी है उसके अनुसार सुमन देवी रैंक में पहले नंबर पर चल रही हैं। उधर लॉन बॉल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की थाबेलो मुभांको और जैकी वैन रेहन्सबर्ग के साथ महिला डबल्स वर्ग के दूसरे दौर में चल रहा है। भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे जिम्नास्टिक्स में पुरुष टीम फाइनल की पदक स्पर्धा होगी। रात 10:30 बजे लॉन बॉल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड द्वीप समूह के सेसिल अलेक्जेंडर के साथ पुरुष सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर का मैच खेलेंगे। रात 10:40 पर पावरलिफ्टिंग में महिला हेवीवेट वर्ग में कस्तूरी राजमणि पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। रात 11 बजे बॉक्सिंग में जदुमणि सिंह स्कॉटलैंड के आरोन कुलेन से पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 मैच में मुकाबला करेंगे। भारतीय समय के अनुसार रात 12 बजे पैरा तैराकी में आरवीवी बीके बुदिगिना और अली इमाम पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फाइनल में उतरेंगे। 12:30 बजे श्रीहरि नटराज 50 मीटर बैक स्ट्रोक सेमीफाइनल में चुनौती पेश करेंगे। इसी समय पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार और सुधीर पुरुषों के हैवीवेट वर्ग की पदक स्पर्धा में दावेदारी पेश करेंगे।
0: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि देश के एथलीट ग्लासगो में हो रहे इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में जुनून, पक्के इरादे और बेहतरीन खेल के साथ हिस्सा लेंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू हो रहे हैं, भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि हमारे एथलीट गेम्स में जोश, पक्के इरादे और बेहतरीन खेल के साथ हिस्सा लेंगे। हमारे एथलीटों का हुनर और लगन हमेशा अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कल एक रंगारंग कार्यक्रम में हुई। गेम्स की शुरुआत का आधिकारिक ऐलान किंग चार्ल्स तृतीय ने किया। ग्लासगो 2014 के बाद एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने परेड ऑफ नेशंस के दौरान भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया। वेटलिफ्टिंग में भारत की ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई ने तिरंगा उठाया जबकि टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना ने सेरेमोनियल कॉमनवेल्थ बैटन उठाया। धर्मेंद्र, भारतीय दल पैरा स्पोर्ट समेत 13 खेलों में हिस्सा ले रहा है
1: जी। और एक अच्छी खबर हम आपके लिए बताएं कि नहीं है भारत के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की रजत पदक विजेता जूडो खिलाड़ी तुलिका मान को पिछले 12 महीनों में 3 बार रहने के स्थान की जानकारी देने में नाकाम रहने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसके कारण उन्हें ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की भारतीय टीम से हटा दिया गया है। तुलिका ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 78 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में रजत पदक जीता था। इस बार भी वो पदक की प्रबल दावेदार थी। अब उन पर 2 साल के प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। वह ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से हटाई जाने वाली दूसरों जूडो खिलाड़ी हैं। कल एक अन्य भारतीय जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार को 73 किलोग्राम से कम वजन वर्ग से हटा दिया गया था क्योंकि

0: प्रतियोगिता से बाहर की गई डोप जांच में विफल रह गए थे।
1: और अब बात स्क्वैश पर भी कर लेते हैं। ओंटारियो में भारत की उभरती खिलाड़ी अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए वुमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर ओम सेमवाल, संदेश रवि कुमार और रतिका सिलान कड़े मुकाबले में जीत दर्ज करके आज पीएसए सिंगापुर चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
2: विश्व जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह के खेल में धैर्य और कौशल का अद्भुत संगम देखने को मिला। महिला रैंकिंग में विश्व की 20वें नंबर के खिलाड़ी अनाहत ने अंतिम 8 के मैच में मिस्र की हबीबा रिज्क को 4 सेट तक चले मुकाबले में 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 से हराया। इस प्रतियोगिता में पिछले साल कांस्य पदक जीतने वाली अनाहत इस तरह से विश्व जूनियर चैंपियनशिप में लगातार 2 बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली बन गई है। दिल्ली की रहने वाली अनाहत का अगला मैच मिस्र की ही बार्ब समीह से होगा। उम्मीद है कि वह अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए न सिर्फ सेमीफाइनल जीतेंगी बल्कि इस बार खिताब पर भी अपना नाम दर्ज कराएंगी। उधर पीएसए सिंगापुर चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट में भी भारत के पदक जीतने की बेहतर उम्मीद बनी हुई है। रवि कुमार ने पुरुषों के दूसरे दौर में जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त श्रोता यासुनश्री को 12-10, 11-5, 3-11, 11-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। चौथी वरीयता प्राप्त ओम सेमवाल ने स्थानीय खिलाड़ी आरोन लियांग को 5 सेट के कड़े मुकाबले में 11-9, 4-11, 4-11, 12-10, 11-8 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। महिला वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त रतिका को दूसरे दौर में स्थानीय प्रतिद्वंदी वायलिन और योंग पर जीत हासिल करने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। 5 सेट के मैराथन मुकाबले में रतिका ने 8-11, 11-9, 11-2, 7-11, 12-10 से जीत हासिल की। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: बात कर लेते हैं निशानेबाजी पर, जहां संयम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। चीन के हांगझाऊ में आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन प्रतियोगिता में भारत के पदक का खाता खुल गया है। संयम ने सटीक निशाना साधते हुए आज महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता।
3: पूर्व जूनियर वर्ल्ड और एशियन चैंपियन संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पोडियम फिनिश पक्का करने के लिए फाइनल फायरिंग लाइन पर कदम रखने से पहले अपनी सीरीज में लगातार प्रिसीजन बनाए रखा। 22 वर्षीय संयम ने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर रजत पदक अपने नाम किया। वह गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट से चूक गयी। हांगझोंग में मिला यह सिल्वर मेडल संयम का दूसरा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप मेडल है। उन्होंने इससे पहले कतर के दोहा में हुए 2025 आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में भी महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। चीन की याओ किया नक्सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं, जबकि ईरान की ओलंपियन हनिया रोस्तमियन 221 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। हालांकि कई बार आईएसएसएफ वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीत चुकी सुरुचि सिंह फाइनल में कुल 137.6 पॉइंट के साथ 7वें स्थान पर रहीं। पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन में भावेश खावत भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे। उन्होंने 22वां स्थान हासिल किया। ओंकार सिंह, अनीश भनवाला, प्रदीप सिंह शेखावत और आदर्श सिंह भी क्वालिफाई नहीं कर सके। यहाँ पर हम आपको बता दें, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी साल के अंत में होने वाले आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो दिसंबर में रोम में होगा। हांगझोंग शूटिंग मीट एक संयुक्त आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन शूटर हिस्सा ले रहे हैं और यह प्रतियोगिता मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। पांडे, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 क्रिकेट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। इससे पहले कल रात भारत ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद कल रात जिम्बाब्वे पर जीत के साथ भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सफलता की राह पर वापस लौटती दिख रही है। इस मैच में मयंक यादव की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते मेजबान टीम 7 विकेट पर सिर्फ 125 रन ही बना सकी थी। मयंक ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी के 19 गेंद में बनाए गए 50 रन की बदौलत भारत ने ये मैच आसानी से जीत लिया। मैच में वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 50 लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए। उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्यवंशी

0: bold in terms of executing his line and lengths, not giving them room to score runs. I think that studied the rhythm for us, and then Weber coming in the power play, giving us exceptional start. He's fearless youngster, and the way he approached this innings was indomitable. I think he's played here before, so he's got a fair idea about how the wickets are. He's got 175, I guess, in under-19 final, so definitely he possesses immense confidence when he steps onto the field, so you could see it today.
1: अब कल भारत के पास दूसरे मैच में जीत के साथ सीरीज में 2-0 की निर्णायक बढ़त लेने का मौका होगा। हालांकि ये काम इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपने घरेलू मैदानों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। जिम्बाब्वे की टीम भी जीत के लिए सब कुछ झोंक देगी, लेकिन इसके लिए उनके गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों को भी अपना शत प्रतिशत देना होगा। पहले मैच में हरारे की पिच तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी नजर आई थी। हालांकि क्रीज पर सेट होने के बाद बल्लेबाज भी आसानी से रन बनाते हुए दिखाई दिए। इस मैदान पर अब तक कुल 84 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 45 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी है। वहीं 37 मुकाबलों में रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। पहली पारी का औसतन स्कोर 155 रहा, वहीं दूसरी पारी का औसतन स्कोर 133 रन रहा है। कल हरारे में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है और बारिश होने की आशंका ना के बराबर है। ऐसे में एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैम।
2: धर जापान के आचीना गोया में 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा पुरुषों के मैच के साथ 24 सितंबर से शुरू होगी। इसमें मौजूदा चैंपियन भारत और पाकिस्तान के पुरुष और महिला क्रिकेट टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह दी गई है। धर्मेंद्र, भारतीय महिला टीम जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरूआत करेगी, जबकि पुरुष टीम का मुकाबला प्रारंभिक चरण के मैच के बाद तय होगा।
3: और क्रिकेट के मैदान से अब शतरंज के बिसात की तरफ चलते हैं। भारत ने 16 से 27 सितंबर तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए टीम की घोषणा कर दी है। ओपन वर्ग की टीम में विश्व चैंपियन डी गुकेश और शानदार फॉर्म में चल रहे आर प्रज्ञानंदा के अलावा अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरीन और विदित गुजराती शामिल हैं। सरीन 2024 में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे। महिला टीम में कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, विश्वजेता दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री बी को शामिल किया गया। इसमें से हम्पी और सविता श्री 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में शामिल नहीं थी।
2: उधर धर्मेंद्र, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इसके प्रमुख अकार्डी डोरकोविच को यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में शामिल कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने प्रतिबंध हटने तक अपना पद छोड़ दिया है।
3: और भारत की अंडर 20 फुटबॉल टीम 2027 में होने वाले एएफसी अंडर 20 एशिया कप क्वालीफायर की तैयारियों के तहत 3 और 6 अगस्त को सिंगापुर के खिलाफ 2 अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी।
2: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के मैदान की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और धर्मेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने

0: सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
5: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
6: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में

0: आज एनडीआरएफ एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leak.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की 3री और 4थी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था। आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई गई। एक रिपोर्ट।
2: आज पुरी का पवित्र शहर गहरी भक्ति भावना से सरोवर है, जब लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा देखी। पारंपरिक रस्में पूरे होने के बाद भाई बहन की ये मूर्तियां श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक अपनी पवित्र वापसी यात्रा पर निकली। सालाना रथ यात्रा का समापन नीलाद्री विजय रस्म के साथ होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। उधर चीन के हांगझोऊ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, National Testing Agency has terminated 47 officials from service. The National Testing Agency has issued advertisements for a set of senior professionals' appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA, in a statement, said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
4: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.

0: मुद्दों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: Spokesperson of CJP Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth rail line of Bellary-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometers. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka.
2: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन।
3: टुडे अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ रेलवे लाइंस बिटवीन गुंतकल एंड बिल्लारी। फर्दर अहेड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द थर्ड एंड फोर्थ रेलवे लाइंस बिटवीन हॉस्पेट एंड हुबली इज ऑलरेडी अंडर प्रिपरेशन। दिस विल क्रिएट अ कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर इन नॉर्थ कर्नाटका कनेक्टिंग बोथ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। द प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 years।
2: और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
1: Mr. Vaishnaw also informed about the Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in the country. Both the Houses of Parliament were adjourned for till Monday following ruckus for the 5th consecutive day today over the issue of NEET paper leak and student protest. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, disrupting normal life across multiple districts. Today, the North Gujarat region received a heavy downpour, with Radhanpur in Patan district recording over 9 inches of rainfall and Santalpur witnessing nearly 9 inches. Our correspondent reports Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi are continuously monitoring the flood situation in South Gujarat. In shooting, India's Sanyam won the silver medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou, China, opening the country's medal account at the tournament. And that is the end of this news bulletin.
4: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Mohammad Zubair. मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हड़ताल पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर आपत्ति व्यक्त की। सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान की कश्मीर संबंधी टिप्पणियों को खारिज किया। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने देश में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सीमित होते दायरे की चेतावनी दी, कहा मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। अमेरिका ने चीन, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और 57 अन्य व्यापारिक साझेदारों से आयात पर नए टैरिफ लगाए। स्पेन ने मैड्रिड क्षेत्र में भीषण आग के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की संयम ने निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हड़ताल पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर आपत्ति व्यक्त की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति निराशा व्यक्त की है, क्योंकि पाकिस्तान विशेष रूप से कश्मीर के उस हिस्से में जहां पाकिस्तान का कब्जा है दमनकारी गतिविधियों को नजरअंदाज कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने अधिकृत कश्मीर और पूरे देश में इस्लामाबाद द्वारा मानवाधिकारों के दमन और स्वतंत्रता के हनन का उल्लेख किया। सुरक्षा परिषद की बहस में भारत ने पाकिस्तान की कश्मीर संबंधी टिप्पणियों को खारिज किया। इस्लामाबाद द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री हरीश ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान में कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों, अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता के निरंतर दमन और मूलभूत स्वतंत्रता के हनन को देख रही है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है जिनका उसके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।
5: आज लोकसभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार

0: सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात कर रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। इस संबंध में मंत्रालय ने 31 सहयोगी देशों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने सीमा पार आतंकवाद के खतरे पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए दुनिया भर के 33 देशों का दौरा किया। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: इस बीच भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
2: जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, सिंधु जल संधि की समझौते की बात है, इस पर हमारा पक्ष साफ है और हम लोगों ने समय समय पर आपको याद भी दिलाया है कि भारत का ये मानना है कि ये सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा।
1: श्री जायसवाल ने भारत द्वारा जानबूझकर पड़ोसी देश में बाढ़ लाने की पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए स्थान लगातार सिकुड़ता जा रहा है। आयोग की यह टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार मुनीजे जहांगीर के लंबे समय से चल रहे टेलीविजन कार्यक्रम स्पॉटलाइट के हाल ही में प्रसारण बंद किए जाने के बाद आई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आज स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। संसद अध्यक्ष हफीजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। नए राष्ट्रपति के चुनाव तक हफीजुद्दीन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति बने थे और अपने 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति से 2 वर्ष पहले ही त्यागपत्र सौंप दिया। अमेरिका ने चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया है। लगभग सभी अमेरिकी आयातों पर लागू यह टैरिफ आज समाप्त हुए इसी तरह के शुल्क की जगह लेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर लगाए गए कई टैरिफ अवैध रूप से लागू किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-2028 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और लचीले समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्पेन सरकार ने आज राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। कई स्थानों पर लगी भीषण आग के कारण मध्य मैड्रिड क्षेत्र में लगभग 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मैड्रिड के क्षेत्रीय सरकार ने बताया कि भीषण गर्मी के दौरान जंगल की आग अनियंत्रित हो गई। इस वर्ष स्पेन में 1,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जल चुकी है। आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई गई। एक रिपोर्ट।
3: आज पुरी का पवित्र शहर गहरी भक्ति भावना से सरोवर है, जब लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा देखी। पारंपरिक रस्में पूरे होने के बाद भाई बहन की ये मूर्तियां श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर

0: तक अपनी पवित्र वापसी यात्रा पर निकली। इस दौरान भजन कीर्तन और पारंपरिक वाद्य यंत्र की थाप गूंज रही थी। सालाना रथ यात्रा का समापन नीलाद्री विजय रस्म के साथ होगा, जिसमें मूर्तियों को औपचारिक रूप से श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में वापस लाया जाएगा और इस तरह ये भव्य आध्यात्मिक उत्सव सम्पन्न होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: चीन के हांगझोउ में निशानेबाजी विश्व कप में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट से चूक गई। चीन की याओ कियानुक सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन आज पुरुषों की 50 मीटर ब्रेक स्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने हीट में 25.52 सेकंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर हैं। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हड़ताल पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर आपत्ति व्यक्त की। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कश्मीर संबंधित टिप्पणियों को खारिज किया। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने देश में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सीमित होते दायरे की चेतावनी दी, कहा मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। अमेरिका ने चीन, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और 57 अन्य व्यापारिक साझेदारों से आयात पर नए टैरिफ लगाए। और भारत की संयम ने निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Saira Mujtaba with World News. The headlines. India objects to UN's silence on strike in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, rejects Pakistan's Kashmir remarks at Security Council. Pakistan's Rights Commission says media freedom in the country is under threat, warns of shrinking space for independent journalism. Bangladesh President Mohammad Shahabuddin resigns on health grounds. US imposes fresh tariffs on imports from China, European Union, UK and 57 other trading partners. Spain declares national emergency following wildfires across Madrid region, thousands evacuated. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyang wins silver in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. India today criticized the United Nations for what it called a lack of attention to repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir after Pakistan again raised the Kashmir issue at the UN Security Council. Speaking at a Security Council open debate on strengthening mechanisms for the peaceful settlement of disputes, India's permanent representative Harish Parvathaneni said that rights violations in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir have been ignored, while similar developments elsewhere draw strong UN criticism. He accused Pakistan of systematically suppressing the rights of people in the region and urged Islamabad to focus on its internal challenges instead of promoting a misleading narrative before the international community. Pakistan's Human Rights Commission has raised concerns over growing restrictions on media freedom, saying the space for independent journalism in the country is shrinking. The statement follows the removal of senior journalist Munizai Jahangir's television program Spotlight from air. The commission said the move reflects a wider pattern of pressure on independent media. The commission has urged the government to protect freedom of expression, uphold editorial independence, and safeguard the public's right to information. India today said the Indus Waters Treaty remains in abeyance until Pakistan stops supporting cross-border terrorism. MEA spokesperson Randhir Jaiswal rejected reports alleging India caused flooding in Pakistan.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हर सिंगार का प्यारा अंदाज लेकर आज स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूं मैं रोहिणी। मेरी दुआ सलाम आप तक पहुंचती है इस प्यारे से ख्याल के साथ कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। चांद से इस अंदाज में गुफ्तगू कई बार गीतों के अंदाज में भी की गई है। जी हाँ, ये पहला गीत हमारे प्रोग्राम का जो आप सुनेंगे, आनंद बख्शी साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज में लिखा है। दोस्तों, अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत है, रफी साहब की प्यारी आवाज, और आपको बता दूं संगीत का जादू है आरडी बर्मन जी का। हर श्रृंगार का आगाज इस प्यारे से गीत के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ रहूंगी मैं रोहिणी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर।

0: तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार। श्रोता, हमारी आंखें कभी कभी वो ख्याल भी सजा लेती हैं जिनसे हम महक उठते हैं, फिर बात चाहे रात के टोले में सजे उस चांद की ही क्यों ना हो। वो कहते हैं ना, बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, कोई साजिश छुपा रहा है चांद, जाने किसकी गली से निकला है झेपा झेपा सा आ रहा है चांद। किशोर जी की आवाज से सजाई अगला गीत आप तक पहुंचेगा। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को बोल दिए हैं और आरडी बवन साहब का बेहद प्यारा दिलकश संगीत का अंदाज। आइए सुने ये गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर,
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार। कई बार होता है कि दिल को ठेस पहुंचाने वाले अल्फाज बड़ा गहरा एहसास देकर जाते हैं और कई बार गहरी यादें भी दे जाते हैं। शायद जिंदगी का अनुभव दिल को कुछ यूं ही रंगता है। दिल को पहले जैसा मासूम नहीं रहने देता, हाँ लेकिन पत्थर भी नहीं होता, मोम भी नहीं रहने देता। दिल की बीबीसी आनंद बख्शी साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज में इस अगले गीत में सुनाई है, या ये कहूँ कि लिखी है, और ये जो अगला गीत है वो है जूली फिल्म से। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज। इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन जी ने।

बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं दोस्तों कि आदितन तुमने कर दिए वादे, आदितन तुमने कर दिए वादे, आदितन हमने भी एतबार किया, तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया। इंतजार कीजिए एफएम गोल्ड पर आने वाले अगले प्रोग्राम्स का और मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत आज के हर श्रृंगार को यहीं समेटने की। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल और ये प्यारा गीत, ये प्यारा अंदाज लता जी और किशोर जी की आवाज में आप तक पहुंच रहा है। इस गीत को अल्फाज दिए हैं गुलशन बाबरा जी ने और संगीत से सजाया है आर डी पावन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज।

0: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई,
0: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
6: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
5: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग UPSC के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। NTA ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the UPSC. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
8: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
7: Spokesperson of CJP, Ashutosh Ranga, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Bellary-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometers. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. He also informed about Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज की कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एक्सटेंड देयर लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 300 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 23,800। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी। And Cabinet approved the Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in India.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख। सेंसेक्स में 300 अंकों से अधिक की सुस्ती आई। निफ्टी 23,800 के स्तर से नीचे पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 विशिष्ट केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना को स्वीकृति दी।
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने आज शुरुआती नुकसान की भरपाई की और 0.43% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 332 अंक नीचे आकर 76,060 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 102 अंक लुढ़ककर 23,767 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% नुकसान के साथ बंद हुआ। इससे पहले वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कारोबार की नकारात्मक शुरुआत देखी गई। बड़े पैमाने पर बिकवाली के कारण सत्र के पहले हिस्से में दोनों प्रमुख सूचकांक दबाव में रहे। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो निचले स्तरों पर खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के निचले स्तर से काफी रिकवरी की।
0: Benchmark domestic equity indices paired their initial losses and ended 0.43% down today. Sensex dropped 332 points to end at 76,000.

0: 760, while Nifty slipped 102 points to close at 23,767. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index lost 0.1% and the small-cap 100 index fell by 0.3%. Earlier, the markets opened on a negative note amid heightened global uncertainty. Both the stock market indices traded under pressure during the first half of the session amid broad-based sell-off. However, as the day progressed, the Sensex and Nifty recovered sharply from the day's low, supported by buying at lower levels and drop in crude oil prices.
1: सेंसेक्स में 30 में से 20 कंपनियों को आज नुकसान हुआ. सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों को देखा जाए तो एडर्नल में 2.3% से ज्यादा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.1% और बजाज फाइनेंस में 2.1% की गिरावट आई. वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में लगभग 2.1% की बढ़त हुई. आईटीसी में 0.8% की तेजी आई और एक्सिस बैंक में 0.6% की बढ़ोतरी हुई.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, auto dropped 1%, telecommunications slipped 0.9% and power fell nearly 0.7%. In contrast, focused IT advanced 1.3%, IT as well as PSU banks rose over 0.6% and insurance gained more than 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,124 companies advanced, 2,053 companies declined, and 208 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग स्थिर रहा और 96.56 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. और इस सप्ताह अगर कारोबार पर हम नजर डालें तो लगभग हर दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ और पिछला सप्ताह थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये सप्ताह निवेशकों की दृष्टि से अगर देखें तो लाल निशान उन्हें ज्यादा देखना पड़ा. कौन कौन से प्रमुख ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिली?
2: एकदम आपने सही कहा निखिल जी. अगर आप 5 दिन के ट्रेडिंग देखें तो करीबन 2% की गिरावट रही और हर दिन हमने गिरावट देखी और उसका प्रधान कारण यही है कि और ये जो गिरावट जो है ये अगर आप देखें पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा साप्ताहिक गिरावट थी
1: जी.
2: और इसका प्रधान कारण ये था कि जो विश्व स्थिति जो है वैश्विक स्थिति उसमें जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और भी गंभीर हो चुकी है. जिस तरह से यूएस और ईरान का जो मसला चल रहा है वो एक समय तो ये लग रहा था कि ये शायद रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है पर वो और भी वातावरण और भी गंभीर हो जा रहा है और इसी कारण स्टॉक मार्केट एक तरफ और क्रूड ऑयल प्राइस दूसरी तरफ दोनों में जो जो एक टेंशन डर भी कह सकते हैं उसी के कारण हम जो पिछले 5 सत्र में जो हमने देखी जो गिरावट यही इसका प्रधान कारण है. कोई अंतर्देशीय कोई कारण इसमें नहीं है. ये पूरी तरह से एक एक एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर निर्भरशील ये डेवलपमेंट है. हालांकि हमने आज जो मार्केट में देखा
1: जी.
2: उसमें एक एक एक सिल्वर लाइनिंग नजर आई. वो ये लगा कि जब मार्केट नीचे आ गई तब आधे मार्केट में दिन के जो पिछले अंतिम समय में मार्केट इतनी नीचे आ गई कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वापस आ गए और खरीदना शुरू किया. उससे जो मार्केट की जो पहले हाफ में जो जो गिरावट थी वो उतनी गिरावट से वो बंद नहीं हुई. तो इसका मतलब यही मुझे दिख रहा है कि अगर मार्केट एक पॉइंट के नीचे आ जाए
1: जी.
2: तो जो इन्वेस्टर की जो एपेटाइट जो है वो अभी भी बरकरार है. हालांकि मैं ये नहीं समझता कि ये एक पॉजिटिव रीजन है पर ये दर्शाता है कि मार्केट में एक स्टेबल लेवल जो है आज की तारीख में जो मार्केट में जो आया है वो लगता है कि एक स्टेबल लेवल है. अगर उसके नीचे जाए तो हमें ये शंका होगा कि मार्केट शायद एक और भी एक बेरिश फेज में जा सकती है. पर अगर इसी लेवल में रुका रहे तो अगले समय में अगले दिनों में अगर इसमें कोई

0: non-performing assets are also coming down marginally. But the news that I want to bring to your mind is information technology. They have seen a fall in valuation before. They saw a rise in valuation today. To what extent do you see the US dollar index, which is at a 101.43, actually influencing, you know, short covering in this sector, the IT sector?
1: Well, to a great extent, the IT sector is influenced by what is happening in the technology space, which is the AI, the artificial intelligence space. Most of India's tech companies are battling that demon, if I may use that expression. Yes, the dollar index does play a role, but I think the bigger factor is how AI will impact its margins. One associated point that you raised about the banks and the financial sector, they have done well, but they are not doing well in the stock market. It's a very, very interesting phenomenon that we are witnessing, and that is the reason. The reason is probably that going forward, and the stock market is not a lagging indicator, is a forward-looking indicator. Going forward, the banking sector might see its margins under squeeze. So today's stock market, when if you look at the banking sector stocks, they have haven't done well at all compared to the rosy the results that they came out with last week. And the reason is that their margins are likely to come under squeeze, and which is why the stock market is not giving them a thumbs up, rather they're giving them a thumbs down.
2: AKB, अगर स्मॉल कैप या मिड कैप की हम बात करते हैं तो आजकल मुनाफा वसूली कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगी है, तो इसके पीछे क्या है? ये रीजन है कि लोग अब जोखिम लेने की बजाय सेफ ट्रेडिंग करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिसमें लार्ज कैप में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ और कारण?
1: नो, आपने एकदम सही फरमाया कि जो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, पहले तो स्मॉल कैप इंडेक्स से जो एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है, और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी पिछले चार महीने में, और पर इस हफ्ते में हमने मिड कैप्स में भी काफ़ी प्रेशर में वो स्टॉक्स रहे, और उसका कारण आपने एकदम ठीक कहा कि लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तीसरी कारण जो मैंने अर्जुन जी को भी नहीं मैं बता सका, तीसरा कारण ये है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे IPOs की लाइनअप है और बड़े बड़े IPOs आने वाले हैं, और जो स्टॉक मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त क्या करते हैं कि वो जब भी वो स्टॉक मार्केट में मौका देखते हैं वो प्रॉफिट बुक करके वो अपने आप को पोजीशन में लाते हैं, जिस तरह से वो किस तरह से नए IPO में इन्वेस्ट करके उन IPO में से और भी पैसा निकाल सके, तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट ने जो नरमी देखी हमने उसका एक कारण है।
2: आगे बढ़ते हैं, अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों ने जोखिम नहीं उठाया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.7% गिरा, जापान का निक्केई 2.7% से ज्यादा टूट गया, ताइवान का ताइएक्स लगभग 2.7% नीचे आ गया, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.6% लुढ़क गया, और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1% के नुकसान में रहा। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% लाभ में रहा। आर्थिक मोर्चे पर जापान का कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में सालाना आधार पर 1.6% हो गया, जो मई में 1.4% था। यह बढ़ोतरी मार्च के बाद कोर महंगाई दर में पहली तेजी थी। जापान के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार प्रमुख महंगाई दर भी जून में सालाना आधार पर 1.7% थी, कि मई में ये 1.5% थी। एकेबी, कल अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख था, आज अचानक से नकारात्मक रुख देखने को मिला।
1: सही कहा आपने, एक टेक अवे जो है वो है जापान की जो प्राइस इंडेक्स की जो डेवलपमेंट, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के लिए भी। हालांकि निकी गिर गया है मार्केट में, पर उसकी जो प्राइस इंडेक्स, वो जापान में दाम बढ़ना एक बहुत बड़ी एक घटना है, क्योंकि जापान में इन्फ्लेशन का नामो निशान नहीं है बहुत दिन से। अगर इन्फ्लेशन आता है तो

0: कि आम जनता को क्षति पहुंचती है, टेंशन होता है हम लोगों को, पर जो इन्वेस्टर जो है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर जो है, सर्विसेज सेक्टर के जो इन्वेस्टर हैं, उनको एक प्रॉफिट की एक एक एक एक डायरेक्शन मिलती है, प्रॉफिट अर्निंग की एक इंडिकेशन होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन जो 1.6% की जो इन्फ्लेशन जो बढ़कर 1.4% से आ गई है, ये भी दर्शाता है कि जापान में डिमांड की विजिबिलिटी आई है। और ये मैं समझता हूँ जापान विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थनीति है, उसके लिए ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट में कहूंगा, हालांकि स्टॉक मार्केट ने आज इसका ठीक तरह से वेलकम नहीं किया।
1: इन मोर न्यूज, द यूएस हैज इंपोज्ड अ 10% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड 16 अदर कंट्रीज ओवर कंसर्न अबाउट द यूज ऑफ फोर्स्ड लेबर इन सप्लाई चेन्स। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर जेमिसन ग्रियर सेड द न्यू टैरिफ्स ऑर्डर्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टारगेट 60 कंट्रीज अंडर सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट फॉर फेलिंग टू इफेक्टिवली बैन इंपोर्ट्स मेड विद फोर्स्ड लेबर। The tariff replaces temporary 10% worldwide levies that expired yesterday after the US Supreme Court struck down Trump's earlier reciprocal tariffs. So what's your take on this? Because now we have an idea of the baseline tariff and what is being imposed as well based on this Section 301 of the Trade Act. What would be the next step? Because there seemed to be a variation across sectors.
0: Well, I think this is limited positive news for India. Limited because we still don't know what awaits the Indian economy in terms of the US-India Trade Pact negotiations that are still going on. But it's positive because we are earlier slapped with a notice at 12.5%. Now we are being bracketed along with 60 other countries at 10%. In terms of the impact on India's exports, it will be less than what was earlier feared. Please remember that this was possible because the government came out with a DGFT notification that said that India will also levy taxes on imports from countries that use forced labor. Now, India had not done it earlier. Now, this was done to essentially assuage and ensure and convince the US that India is also very, very concerned about forced labor, and that is what is happening right now.
2: हर्षदा, आपको बता दें, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने आज देश में 3 विशिष्ट केमिकल पार्क बनाने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, जिसे हम भव्य रसायन योजना भी कह सकते हैं, उसको स्वीकृति दे दी है। इस योजना की घोषणा 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना का कार्यकाल फिलहाल 5 साल के लिए रखा गया है। केंद्र सरकार हर पार्क के लिए 1,000 करोड़ रूपये तक की सहायता देगी, जबकि संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 500 करोड़ रूपये का योगदान देना होगा। इस योजना का भारत के लिए कितना महत्व होगा, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम काफी चीजें विदेशों से आयात करते हैं।
0: देखिए, हमारी जो आत्मनिर्भरता का जो एक प्रोजेक्ट है, उसी का ये मैं एक समझता हूँ कि एक उसका एक ही एक कड़ी है ये। और ये केमिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इसके अंदर शायद अंतर्गत होगा
2: जी।
0: और इससे जो हमारी जो आयात के ऊपर निर्भरशीलता जो है, उसमें कमी होगी, और वो हमारे लिए, देश के लिए, अर्थनीति के लिए एक सुविधाजनक बात है।
1: In more news, India's foreign exchange reserves rose by $1.08 billion to over $676 billion for the week ended 17th of July. According to the data released by the RBI, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased over $4.5 billion to over $551 billion. The RBI said gold reserves declined by $3.48 billion to over $101 billion. President Draupadi Murmu had said regarding India and Romania, after delegation level talks with a Romanian counterpart, Nicuso Dan, President Murmu said India and Romania have set a target of doubling bilateral trade over the next 3 years.
3: India-EU free trade agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation

0: are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
1: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices retreated today after surging earlier in the session. Brent crude was trading 3.1% down at $97.58 per barrel in intraday trade. Earlier, Brent crude rose above $100 a barrel for the first time since May amid concerns over global energy supplies stemming from West Asia conflict. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading over 2.6% down at $89.74 per barrel when reports last came in. And now moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.1% up at 1,43,670 rupees per 10 grams, while silver was trading over 1.2% up at 2,22,490 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना मामूली बढ़त के साथ 1,42,909 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.1% ऊपर आकर 2,21,901 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एकेबी गोल्ड और सिल्वर पर आपके क्या कमेंट्स होंगे?
3: देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है थोड़ी बहुत उनमें लोगों की रुचि भी बढ़ जाती है। हालांकि वो रुचि थोड़ी कम हो गई थी पिछले कई दिनों पर, जब स्टॉक मार्केट में जो थोड़ी बहुत हलचल मचती है, थोड़ी बहुत बिकवाली होती है, उससे मार्केट में नीचे आता है, दबाव में आता है मार्केट, तब गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड भी ज्यादा एक वृद्धि होती है और वही आज की गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में दिख रहा है।
2: जी, एक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices extend their losing streak. Sensex declines over 300 points. Nifty settles below 23,800. Most Asian stock market indices end in the negative territory. And the cabinet approves a Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in India. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
2: Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, प्रोग्राम आपका पसंदीदा लेकर एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूं रोहिणी। जी हां, प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत, सदाबहार गीतों की बहार तो इसमें आप तक पहुंचाऊंगी ही, साथ ही बड़े प्यारे ख्याल भी आपसे साझा करूंगी। कहते हैं जो कभी न भर पाए ऐसा भी एक घाव होता है और उसका नाम लगाव होता है। कहते हैं ना कि दिल की अधूरी बातें भी खूब होती हैं जिनमें यादें पूरी डूबी होती हैं। गुलजार की शायरी सी लगती है ये जिंदगी जहां खामोशियां भी खूब बोलती हैं। जी हां, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सदाबहार गीतों का ये अंदाज आप तक पहुंच रहा है। आज के गीत मेरे मनमीत का आगाज करते हैं इस प्यारी सी आवाज में जो कि लता जी की प्यारी आवाज

से सजा गीत है। और आपको बता दूं कि प्रेम पर्वत फिल्म का ये गीत आप सुनेंगे, जानेसार अख्तर साहब ने इस गीत को अल्फाज दिए हैं और जयदेव साहब का मधुरमयी प्यारा संगीत।

खामोशी तो कभी इंतजार है। ये इंतजार खत्म करते हैं और आप तक अगला गीत पहुंचाते हैं। मौसम फिल्म से ये गीत है लता जी और भूपेंद्र जी की आवाज में। इस गीत को गुलजार साहब ने गुलजार किया है और जी हां संगीत दिया है मदन मोहन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

कहते हैं भूली बिसरी यादें जब आती हैं, वक्त ठहर जाता है, जिंदगी मुस्कुराती है। चलिए अगर ऐसा है तो उम्मीद यही करते हैं कि जिंदगी को मुस्कुराने दीजिए। 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल आप सुनते रहिए। इस गीत के साथ फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत। 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत को यहीं समेटती हूँ। शुभरात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत अधिकारी सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरोफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे। जिद्दी वहशी अल्हड़ चंचल मीठे लोग रसीले लोग। होंठ उनके गजलों के मिसरे आंखों में अफसाने थे। रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। तो भाई जब रात गहराती है तो दिल की आवाजें बहुत साफ सुनाई देने लगती हैं। चांद खामोशी से मुस्कुराता है, तारे अनकही बातें कहते हैं और हवाएं यादों की खुशबू साथ ले आती हैं। एक ऐसी ही खूबसूरत रात में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ। जी हां, अगले कुछ लम्हों तक हम और आप रहेंगे साथ प्यार एहसास और दिल को छू लेने वाले गीतों के साथ। चलिए आगाज करते हैं रफी साहब की आवाज में जंगली फिल्म के इस गाने के साथ।

शाम-ए-गम की सहर नहीं होती, शाम-ए-गम की सहर नहीं होती, या हमी को खबर नहीं होती। चांद है कहकशां हैं तारे हैं, चांद है कहकशां हैं तारे हैं, आह यूं बेअसर नहीं होती। दोस्तों इश्क है खता, लेकिन क्या खता दरगुजर नहीं होती। रात आकर गुजर भी जाती है, रात आकर गुजर भी जाती है, एक हमारी सहर नहीं होती। तो भाई सहर भी होती है, खबर भी होती है, और इश्क भी हो जाता है। तो चलिए अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म है नया दौर, आशा भोसले और शमशाद बेगम और साथियों की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कभी कभी दिल जानता है कि उसे ठहर जाना चाहिए, फिर कभी किसी की एक मुस्कान, एक झलक सारी कोशिशें बेअसर कर देती हैं। हमने भी कई बार अपने जज्बातों को रोकना चाहा, खुद को समझाया कि अरे रुक जाओ, ये बस एक एहसास है। लेकिन हकीकत तो यही है कि जब दिल को और निगाहों को कोई पसंद आ जाए तो फिर ये दिल कहाँ किसी की सुनता है। चांदनी रात हो या फिर तन्हाई हो, वही चेहरा बार बार याद आता है और लगता है जैसे मोहब्बत ने खामोशी से अपनी जगह बना ली है। तो आइए चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही दिलकश नगमा। फिल्म है मेरे सनम, रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में।

कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जबानी कह देंगे। जब प्यास जवां हो जाएगी एहसास की मंजिल पाएगी। खामोश रहेंगे और तुम्हें हम अपनी कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे।

कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार देखो, दो बार देखो या बार बार देखो, ये मन भरता ही नहीं है। नजर बार बार वहीं ठहर जाती है, जैसे चांद को देखकर हर रात नई सी लगती हो। शायद मोहब्बत की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, जब किसी को देखने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, बस उसे देखते रहने का मन बस करता ही रहता है बार बार बार बार। तो इस हसीन रात में चलिए दिल के इन्हीं मासूम एहसास को हम और आप सुनते हैं गीत के माध्यम से।

जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

और इसी का गीत के साथ निशिगंधा में हमारा आपका सफर यहीं तक, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष नाका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराध की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों की मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा को अपने जीवन की सबसे परिवर्तनकारी शक्ति बताया। अपने गांव की पहली लड़की के रूप में कॉलेज जाने से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक के अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा समावेशी समाज का सबसे मजबूत आधार है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोरगोहिन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीन ट्री से हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐ जिंदगी हम तुम से मुलाकात करेंगे, ऐ जिंदगी हम तुम से मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही हम बात करेंगे। तुम सोच के रखना दोगी जवाब क्या, जब हम सवालात की बरसात करेंगे। ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही हम बात करेंगे।

कहते हैं मोहब्बत की सबसे खूबसूरत जुबान आंखें होती हैं, कुछ निगाहें बिना एक भी लफ्ज कहे दिल की हर बात पढ़ लेती हैं। चांदनी रात में जब किसी की चंचल आंखें याद आ जाएं तो तारे भी जैसे मुस्कुराने लगते हैं। उन आंखों की मासूम शरारत और अपनापन दिल पर एक ऐसा असर छोड़ जाता है कि फिर हर नजर में, हर निगाह में बस वही चेहरा दिखाई देने लगता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म

वेबसाइट्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कहते हैं कि मोहब्बत नसीब वालों को ही मिलती है, जिसके साथ कोई अपना हो उसके लिए हर रात चांदनी बन जाती है और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। दुनिया की सारी दौलत भी उसे एक सच्चे इंसान के आगे छोटी लगने लगती है, जो हर खुशी और हर दुख में, हर खामोशी में आपका हाथ थामे रहता है। शायद इसीलिए तो कहा है कि दुनिया उसी की होती है जिसके दिल में प्यार हो और मोहब्बत समाई हो। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं इसी खूबसूरत एहसास के साथ।

रात की खामोशी में कभी कभी किसी की आंखें याद आ जाती हैं, ऐसी आंखें जिसमें शरारत भी हो, अपनापन भी और एक अनकहा जादू भी। उनकी एक नजर दिल की धड़कनों को बदल देती है, जैसे चांदनी अचानक और उजली हो गई हो। शायद इसी एहसास को मोहब्बत कहते हैं। जब किसी की आंखों में पूरी दुनिया नजर आने लगे, तो इस हसीन रात, चांद, तारों और दिल के जज्बात को हम समेटते हुए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक दिलकश नगमा।

कुछ रिश्ते धीरे धीरे दिल में जगह बनाते हैं और फिर एक दिन एहसास होता है कि ये दिल अब सिर्फ अपनी धड़कनों का नहीं रहा। चांदनी रात में जब किसी की याद मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाए तो लगता है जैसे जिंदगी ने अपना सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया। मोहब्बत शायद यही है, जब दिल अपनी हर धड़कन किसी एक के नाम और उसके नाम के हवाले कर दे।

और देखिए गीत सुहाने प्रोग्राम में चलते चलते हम अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं और चलते चलते सुनवाएंगे आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत। फिल्म है फागुन और रफी साहब और आशा भोसले की आवाज है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जिंदगी की बात करें, मोहब्बत की बात करें, तो मोहब्बत जिंदगी में कभी दस्तक देकर नहीं आती। बस एक मुलाकात होती है, एक मुस्कान एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है और दिल चुपके से किसी और का हो जाता है। फिर चाहे वो शख्स अपना शहर छोड़ दे या फिर दूर चला जाए, उसकी यादें चांदनी की तरह हर रात साथ रहती हैं। कुछ लोग जिंदगी में बस कुछ पल के लिए आते हैं, लेकिन उन पलों की खुशबू उम्र भर दिल में महकती रहती है। तो चलिए इस महकती रात, चांद और तारों की गवाही में सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

मेरे लिए तू खुद को यूं खुद से जुदा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। जितना भी हो सके तू कर लोगों की भलाई, अपनी तरफ से तू किसी का भी बुरा न कर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में

0: मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। यह कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत और तंजानिया ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। इनमें व्यापार एवं निवेश, विकास साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श बैठक इस माह की 22 तारीख को दार अस सलाम में आयोजित की गई। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोरगोहेन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीनट्री से हो सकता है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के खिलाड़ियों ने मस्कत ओमान में आयोजित FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की लड़कियों ने एलीट पूल में अपने मैच में चीन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया लेकिन 3-6 से हार गईं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message on Thursday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA has also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Prime Minister Narendra Modi has thanked country's youth for the response and suggestions following his video. In a social media post, Mr. Modi expressed gratitude to the youth for their overwhelming support. The video has now crossed more than 303 million views. It is the most viewed reel within its first 24 hours. UN ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation today. CJP spokesperson Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands. Both the Houses of Parliament were adjourned till Monday following ruckus for the fifth consecutive day over the issues of NEET paper leak and student protest. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leak case, the opposition continued its protest demanding the resignation of the Union Education Minister. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Ballari-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka.
3: Approval हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन.
4: Approval has been granted for the construction of the third and fourth railway lines between Guntakal and Ballari. Further ahead, the detailed project report for the third and fourth railway lines between Hospet and Hubli is already under preparation. This will create a complete economic corridor in North Karnataka, connecting both Karnataka and Andhra Pradesh. The project is scheduled to be completed within 3 years.
3: और 3 साल का ये project का duration है.
2: He also informed about Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in the country. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of her distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. Delhi Police has constituted a special task force, STF, to investigate offences relating to paper leaks and other examination-related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Delhi Police in a statement said that the task force will be responsible for conducting prompt, professional and comprehensive investigations into offences pertaining to public examinations conducted by different authorities. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर जिंदगी में हम किसी के लिए चांद नहीं बन सकते तो किसी की सुरमई रात की चांदनी बन जाइए, क्योंकि रोशनी वही नहीं है जो सबसे ज्यादा चमके, बल्कि वो है जो किसी के अंधेरे को कम कर दे।

0: कुछ मौसम सिर्फ बदलते नहीं, दिलों में उतर जाते हैं। ठंडी हवा का झोंका, चांदनी की नरम रोशनी और किसी खास की अपने की याद, बस इतना ही काफी है दिल को मुस्कुराहट से भर देने के लिए। शायद यही मौसम का जादू है जो हर धड़कन में मोहब्बत के रंग भर देता है।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं कि मोहब्बत हो जाए तो पूरी कायनात अपनेपन से भर जाती है और फिर ये धरती जमीन आसमान पहले से ज्यादा हसीन लगने लगते हैं। चांद थोड़ा और करीब और सितारे जैसे हर दुआ के गवाह बन जाते हैं। इंतजार भी तब शिकायत नहीं रहती बल्कि उस मुलाकात की उम्मीद बन जाती है जहां दो दिल बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ थाम ले। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई साथी है या ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप पूरी दुनिया और उसके साथ पाकर आप दुनिया से बढ़कर मानते हैं तो ये खूबसूरत नगमा जो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ये उसी प्यार के नाम।

राज सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात जितनी खामोश होती है दिल की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देती है। कुछ मोहब्बतें साथ नहीं छोड़ती चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं। चांद हर रात आसमान में लौट आता है लेकिन कुछ लोग सिर्फ यादों में ही मिलते हैं। तब दिल खामोशी से अपनी बात कहता है और तन्हाई का हाल सुनाता है कुछ इस तरह।

मंजिलें दर मंजिलें, फासले दर फासले, रास्ते दर रास्ते, हादसे दर हादसे, चलते चलते रुक गया हूँ मैं भी इस उम्मीद पे, लोग जो बिछड़े हुए हैं मुझसे शायद आ मिले। तो इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोराफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के लड़कों ने मस्कत ओमान में आयोजित एफआईएच युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की लड़कियों ने एलीट पूल के अपने मैच में चीन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया, लेकिन 3-6 से हार गईं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message on Thursday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the legacy that is being implemented in line with the recommendation of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Prime Minister Narendra Modi has thanked country's youth for a response and suggestions following his video. In a social media post, Mr. Modi expressed gratitude to the youth for their overwhelming support. The video has crossed more than 303 million views. It is the most viewed reel within its first 24 hours. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussions with the delegation today. Both the Houses of Parliament were adjourned till Monday following the ruckus for the fifth consecutive day over the issues of NEET paper leak and student protest. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leak case, the opposition continued its protest demanding the resignation of Union Education Minister. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Bellary-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 264 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka.
3: Approval hua hai Guntakal se Bellary third and fourth line.
4: Approval has been granted for the construction of the third and fourth railway lines between Guntakal and Bellary. Further ahead, the detailed project report for the third and fourth railway lines between Hospet and Hubli is already under preparation. This will create a complete economic corridor in North Karnataka, connecting both Karnataka and Andhra Pradesh. The project is scheduled to be completed within 3 years.
3: Aur 3 saal ka ye project ka duration hai.
2: He also informed about Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in the country. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of her distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. Delhi Police has constituted a special task force SDF to investigate offences relating to paper leaks and other examination related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Delhi Police in a statement said that the task force will be responsible for conducting prompt, professional and comprehensive investigations into offences pertaining to public examinations conducted by different authorities. And India's Chandu Kumar secured the country's first medal at the Commonwealth Games 2026. That is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ।

सच्चा प्यार किसी ऐलान का मोहताज नहीं होता, वह तो दिल की हर धड़कन में चुपचाप अपना घर बना लेता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है हम राही। किसी अपने का हाल पूछना केवल एक सवाल नहीं, बल्कि दिल से निभाई जाने वाली सबसे प्यारी परवाह है।

कभी एक नजर ही दिल की धड़कनों का नया सुर दे देती है। यही तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत अंदाज है।

और इस समय कह रहे हैं कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, छोड़कर जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज में से सजाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। तो मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, नमस्कार। और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के

0: खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्रवाई में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। यह कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जलक्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। भारत के झंडू कुमार ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक है। झंडू कुमार ने 181 और 190 किलोग्राम भार वर्ग में सफलतापूर्वक उठाकर 130.9 अंक हासिल किए, पोडियम पर जगह बनाई। नाइजीरिया के रिलवान इद्रीस ने स्वर्ण पदक जीता जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने रजत पदक हासिल किया। मौजूदा चैंपियन भारत के सुधीर 114.1 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures is being implemented in line with the recommendations of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said They gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth 3 main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation today. Both the Houses of Parliament were adjourned till Monday following ruckus for the 5th consecutive day over the issues of NEET paper leak and student protest. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leak case, the opposition continued its protest, demanding the resignation of Union Education Minister. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the 3rd and 4th rail line of Ballari-Guntuka section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka.
2: Approval hua hai Guntukal se Ballari 3rd and 4th line.
3: Approval has been granted for the construction of the 3rd and 4th railway lines between Guntukal and Ballari. Further ahead, the detailed project report for the 3rd and 4th railway lines between Hospet and Hubli is already under preparation. This will create a complete economic corridor in North Karnataka, connecting both Karnataka and Andhra Pradesh. The project is scheduled to be completed within 3 years.
2: Aur 3 saal ka ye project ka duration hai.
1: He also informed about Cabinet's approval for Bharat Udyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in the country. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of her distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. Accepting the honor, the president dedicated the award to the 1.4 billion people of India and said it reflected the enduring friendship between the people of the two countries. All 28 Indian crew members aboard the Mozambique-flagged LPG tanker Disha are safe following an attack on the vessel in Iranian territorial waters, the Embassy of India in Tehran confirmed. In an official statement, the embassy acknowledged the incident involving the LPG tanker Disha and stated it has been maintaining active contact with local officials to ensure the crew's well-being. And India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall in parts over Gujarat, Konkan and Goa, Madhya Pradesh, Odisha and Rajasthan today. Parts of northeast India, coastal Karnataka, Gangetic, West Bengal, Haryana, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, South Interior Karnataka and Uttarakhand are also expected to receive moderate to heavy rainfall today. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। ये वादा रहा फिल्म के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार RD बर्मन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म भाई भाई से गीता दत्त की आवाज में। गीतकार राजेंद्र कृष्णन और संगीतकार मदन मोहन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर और इलारून की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिव हरी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है अरुणिमा और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म मौसम से भूपेंद्र और लता मंगेशकर की आवाज में. संगीतकार मदन मोहन, गीतकार गुलजार.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आपने गीत सुना याराना से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार अनजान, संगीतकार राजेश रोशन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म सितमगढ़ से आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार मजहू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म हम दोनों से, आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरटी बर्मन।

और मैं छोड़ के जा रही हूँ आपको प्रोग्राम अरुणिमा के आखिरी गीत के साथ। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। गीत है फिल्म जख्मी दिल से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। तो मैं लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार

0: संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंगटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 18 जुलाई को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिक सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। एफआईएच युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी के बालकों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से मात दी। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की बालिकाओं को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक है। झंडू कुमार ने 181 और 190 किलोग्राम का भार उठाकर सफलतापूर्वक ये पोडियम पे स्थान बनाया। नाइजीरिया के रिलुवान इद्रीस ने स्वर्ण पदक जीता जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मैच में जीत दर्ज करके श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures are being implemented in line with the recommendations of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth 3 main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation today. Both the Houses of Parliament were adjourned till Monday following ruckus for the 5th consecutive day over the issues of NEET paper leak and student protest. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leakage, the opposition continued its protest demanding

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। समय हो गया है 5:11 और 7 सेकेंड। समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सुर संगम के इस भजन के साथ।

जिस तरह मधुबन बिना किसी भेदभाव के अपनी खुशबू बांटता है, उसी तरह हमारा जीवन भी प्रेम, दया और सद्भाव की सुगंध से महकना चाहिए।

हर कठिन समय के बाद खुशियां की नई सुबह आती है, इसलिए विश्वास बनाए रखें, मेहनत करते रहें और मुस्कुराते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।